0: उत्तर प्रदेश अब निवेश प्रदेश के रूप में बना रहा है अपनी पहचान।
1: चौथे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से बढ़ेगा प्रदेश का मान।
0: इस महामंच पर 80 से अधिक देशों के 550 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार होंगे शामिल।
1: ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर इन मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले इस आयोजन में व्यापार के साथ दिखेगी यूपी की सांस्कृतिक विरासत की झलक। तो आइए जुड़िए और बनिए यूपी की सक्सेस स्टोरी का हिस्सा।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार्क मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: लेकिन खाटू वाले की सबसे बड़ी खासियत सबको खुश रखने वाले का,
1: खुश रखने वाले का।
0: सारी दुनिया दावा करती है कि बाबा हमारा है, फ्लाइट से आने वाला भी बोलता है बाबा हमारा है, पेट पलंगिया आने वाला भी बोलता है बाबा हमारा है, लेकिन बाबा की खासियत देखो, कोई खाटू आकर बोले ना बोले कि बाबा हमारा है, लेकिन बाबा शाम पूरी दुनिया का आज हो रखा है, बाबा बोलता है तू मेरा है।

विश्व की सबसे सुंदर आवाज मैं कहूंगा। हम उन्हीं के आशीर्वाद से चल रहे हैं। मेरे बाद वो आएंगे। कोई वक्त होता था आज से 22 साल पहले जब मैं भी वहां खड़ा होकर देखता था कि इस सूरज को कब नजर से देखूंगा। यह उसी की कृपा है कि उस सूरज के साथ खड़ा हूं।

अभी रोहतक गया मैं कीर्तन के लिए, तो वहां एक भाई मिले, बोले मेरे को एक बुजुर्ग माता जी मिली। मैंने उसको पूछा, माता जी कहां जा रहे हो? बोली, मैं वहां जा रही हूं जिसके भजन कन्हैया मित्तल गाता है। तो मैंने शब्द बदल दिए,

0: उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बन चुका है।
1: इसी का सुखद परिणाम है उत्तर प्रदेश और जापान की साझेदारी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जापान यात्रा से ये संबंध और सुदृढ़ हुए।
0: यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रा और पर्यटन के क्षेत्र में खुलेंगे निवेश के नए द्वार। साथ ही हजारों रोजगार का मिलेगा सशक्त आधार। ईड़ा में 500 एकड़ की जापानी सिटी से यूपी जापान औद्योगिक साझेदारी को मिलेगी नई ऊंचाई।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: प्राण।
1: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
0: 500 से अधिक संस्थागत निवेशक वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। भारत ने दुबई में महिला T20 क्रिकेट एशिया कप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा वित्त कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर के हों। कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि आज भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
2: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है जो उसकी आर्थिक क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है और दुनिया देख रही है कि भारत सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन में 9% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान वाहनों की बिक्री 20% से अधिक बढ़ी है। उन्होंने बताया कि स्मार्टफोन का निर्यात अब 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है और घरेलू रक्षा उत्पादन लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मिलकर देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे।
2: मुझे विश्वास है हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। आने वाले समय में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा। आने वाले समय में रिसर्च एंड इनोवेशन का हब हिंदुस्तान होगा। भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की सुपर पावर होगा।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह आज गृह मंत्रालय की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे।
3: अमित शाह का आज का दौरा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से जुड़ा है। गृह मंत्रालय की बैठक में गोवा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बाद में बीजेपी के नए राज्य कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन किया जाएगा। दिन के अंत में पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक भी होगी। कल अमित शाह पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान लेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
4: जो निर्देश होगा जो भी प्रधानमंत्री जी का वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ। जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की ये सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण, जल तथा कृषि उपमंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। वे सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
7: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: नई दिल्ली में इस महीने की 12 और 13 तारीख को आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। ये आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समानांतर होगा। सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, भरोसेमंद बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। एक रिपोर्ट।
1: संप्रभु धन कोष, पेंशन कोष और परिवार कार्यालय कुल मिलाकर $1 ट्रिलियन मूल्य की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमेरिकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितम्बर को होगा। दिल्ली में नकली दवा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली पुलिस की अपराध नियंत्रण शाखा ऐसी आपराधिक गतिविधियों की पहचान के लिए लगातार निगरानी कर रही है, जिससे गलत लेबल वाली और नकली दवाओं के निर्माण और वितरण को रोका जा सके।
8: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी मिलने पर दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। इसी लगातार निगरानी और कार्रवाई के तहत दिल्ली अपराध शाखा ने इस साल अप्रैल में दिल्ली में बिना लाइसेंस वाली जगह से गलत लेबल वाली और खराब गुणवत्ता की रेबीज वैक्सीन जब्त की थी। पिछले महीने की 27 तारीख को एक सूचना के जरिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने सभी राज्यों के ड्रग्स कंट्रोलर से कहा कि वे अपने इंस्पेक्टर स्टाफ को अलर्ट करें और दवा के गलत लेबल वाले बैच की आवाजाही, वितरण और उपलब्धता पर कड़ी नजर रखें। DCGI ने यह भी पुष्टि की है कि संबंधित बैच का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश में निर्यात नहीं किया गया था। अस्पतालों, क्लिनिकों और सरकारी हेल्थ केयर सेंटरों में दी जाने वाली वैक्सीन सिर्फ लाइसेंस वाली फार्मेसियों के जरिए ही दी जाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र के मेलाघाट और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के पुनर्वास मामले में देश के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं। इन केंद्रों में गिद्धों को पाला गया और उनके जीवित रहने की दर उत्साहजनक रही है। एक रिपोर्ट।
9: बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के अनुसार दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच दोनों अभयारण्यों में कुल 29 गिद्ध छोड़े गए थे। BNHS ने कहा है कि यह सफलता दर्शाती है कि गिद्धों को पर्याप्त शिकार और कम मानवीय हस्तक्षेप वाले बाघ अभयारण्यों में छोड़ना एक प्रभावी तरीका साबित हो सकता है। ये परिणाम देश में घटती गिद्ध आबादी के संरक्षण और पुनर्स्थापना के प्रयासों को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देते हैं। प्रार्थना के साथ माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का दिल का दौरा पड़ने से गिरिडीह के मर्सी अस्पताल में निधन हो गया है। देर रात तबीयत खराब होने के बाद उन्हें रात करीब 2 बजे अस्पताल लाया गया, जहां सुबह करीब 4 बजे उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुदिव्य कुमार सोनू के निधन को अपनी व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन झारखंड की अस्मिता, अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई को समर्पित कर दिया। ईरान की नौसेना ने होर्मुज जलडबरू मध्य से गुजर रहे 3 तेज

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: विकास का प्रदेश की बातचीत थोड़ी ज्यादा खास है। हम सभी के जीवन में कभी न कभी किसी किताब की तरह कुछ पन्ने पलटते हैं और फिर शुरू होती है एक नई कहानी। हमारे वो सभी सपने सच हो जाते हैं जिनके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। ऐसे ही एक युवक के सपनों की दास्तान मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज के कार्यक्रम में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ जानने के लिए कि कैसे उत्तर प्रदेश और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा संचालित सीएम युवा उद्यमी विकास योजना ने वाराणसी के चोबेपुर के सतीश के सभी सपनों को साकार कर दिया।
1: फिल्मों में हम अक्सर देखते हैं कि कैसे हीरो रातों रात अमीर हो जाता है और उसका देखा हर एक सपना हकीकत बन जाता है, पर वास्तविक दुनिया में ऐसी बातें महज एक कल्पना है।
0: वाराणसी के एक डिग्री कॉलेज से इंजीनियरिंग में स्नातक करने के बाद सतीश के सारे दोस्तों का लक्ष्य दिल्ली बम्बई में ऊँचे औहदे की नौकरी पाना था, पर हमारे सतीश की अभिलाषा कुछ और ही थी।
1: मैं अपने घर का इकलौता बेटा हूँ और मेरे लिए अपने माता पिता और गांव को छोड़कर जाना तर्कसंगत फैसला नहीं होता। बाबूजी ने मेरे लिए हमेशा अपनी हैसियत से ज्यादा किया था और अब मेरी बारी थी कि मैं अपने अभिभावकों के बुढ़ापे की लाठी बनूं।
0: सतीश का मन लगातार अपने और परिवार के भविष्य को लेकर बोझिल रहता था।
1: मेरी रातों की नींद बस इन्हीं ख्यालों को सोच सोच कर उड़ सी गई थी। आखिर ऐसा क्यों होता है कि सपनों को पूरा करने के लिए अपनों का साथ छोड़ना पड़े या उनसे कहीं बहुत दूर जाना पड़े।
0: दोस्तों, सतीश जैसी दुविधा हमारे देश के हजारों युवाओं के मन में होती है, जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर संसाधनों की कमी के चलते उनके सपने बस उनकी कल्पना में ही रह जाते हैं।
1: महीनों बीत गए थे अपने शहर में इंटरव्यू देते देते, मेहनत के हिसाब से कहीं पर भी पैकेज नहीं जमा। फिर एक दिन सुबह अखबार खोला तो उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के बारे में पता चला।
0: और दोस्तों, यही है सतीश की कहानी का वो पन्ना जिसने पूरी दास्तान बदल कर रख दी। इससे पहले कि सतीश आपको आगे की कहानी बताए, मैं आपको बताता हूँ कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना आखिर है क्या। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है जिससे वह अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
1: जैसे ही मैंने इसका इश्तेहार को देखा तो फटाफट से मोबाइल पर इसके बारे में मैंने सर्च किया और मुझे पता चला कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसकी आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, अप्लाई करने के लिए कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है।

0: ने की ठान ली थी। सबसे पहले हम इस योजना से संबंधित बैंक गए और वहाँ के कर्मचारियों ने हमें लोन मिलने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया।
1: साथियों, हमारे देश के सर्वाधिक युवाओं वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश के युवाओं की असीमित क्षमता को गति देने और माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन को साकार करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अति महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान CM युवा की मिशन रोड से शुरुआत की गई। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को उत्पाद सेवा संबंधित उद्यम स्थापित कराकर स्वरोजगार से जोड़ना, प्रतिवर्ष 100,000 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना तथा 10 वर्षों में कुल 1,000,000 स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है।
0: जितनी जानकारी मैंने प्राप्त की थी उसके हिसाब से मुझे योजना को लेकर काफी कॉन्फिडेंट फील हो रहा था, पर मेरे साथियों के मन में थोड़ा डाउट था, कहीं हमारे दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो जाएगा। पर डॉक्यूमेंट को लेकर सभी का ये संकोच जल्दी ही क्लियर भी हो गया। जब हमने हमारे उम्र के एक नौजवान को बैंक में मिठाई बांटते देखा, उससे बात हुई तो पता चला कि वो भी युवा उद्यमी विकास योजना के जरिए अपना बिजनेस चला रहा है और जोरों शोरों से व्यवसाय चलाने के बाद उन्होंने अपनी बहन की शादी भी तय कर दी है। फिर क्या, हमने हमारे भी सपनों को अपनी आँखों के सामने सच होते हमें भी दिख रहे थे।
1: अब सतीश और उसके दोस्तों की गाड़ी तो चल पड़ी, पर आप सभी के लिए योजना के चरणों के बारे में जानना भी बेहद जरूरी है। साथियों, इस योजना के पहले चरण में 500,000 तक की परियोजना हेतु 4 वर्षों तक 100% ब्याज तथा गारंटी मुक्त ऋण मिलता है और दूसरे चरण के लिए पहले चरण में लिए गए मूलधन पैनल इंटरेस्ट की पूर्ण वापसी करने वाला अभ्यर्थी पात्र होता है। साथियों, सतीश की इस कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए हम सुनते हैं संबंधित विभाग के अधिकारी का ये मुख्य संदेश।
2: उपायुक्त उद्योग मुरादाबाद, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु उद्योगों को गति प्रदान करने के लिए युवाओं को रोजगार प्रदान करने का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 1,000,000 युवा उद्यमी बनाए जाने हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की जो प्रमुख एलिजिबिलिटी है वो है कि कोई भी युवा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हो और न्यूनतम 8वीं पास हो और 21 से 40 साल का अगर वो युवा आयु है उसकी, तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत लाभ ले सकता है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत 500,000 रुपए तक का कोलेट्रल फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन उस पर मिलता है, जिस पर युवा को कोई भी ब्याज अगले 4 वर्ष तक नहीं देनी है। ऊपर से उसको 10% उसको सब्सिडी उसको मिलेगी। अब तक जनपद मुरादाबाद में इस वित्तीय वर्ष में 25 से 26 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत 2230 युवाओं का ऋण स्वीकृत हो चुका है, जिसमें कि 2,000 युवाओं को ऋण प्राप्त भी हो चुका है। तो इस योजना के अंतर्गत कोई भी युवा अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस एक्टिविटी अपना कार्य शुरू करना चाहता है तो हमारी इस योजना के अंतर्गत बैंक के माध्यम से 500,000 रुपए तक का कोलेट्रल फ्री इंटरेस्ट फ्री बिना किसी गारंटी के बिना किसी ब्याज के ये ऋण प्राप्त करके अपना व्यवसाय अपना उद्योग स्थापित कर सकता है, जिसपे उसको 10% जो ऋण है उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 10% उसको सब्सिडी के रूप में भी मिलेगा। महिलाओं के लिए और SC/ST के लिए जो परियोजना लागत का जो ओन कंट्रीब्यूशन होता है स्वयं का अंशदान होता है वो सिर्फ 10% उनको लगाना होगा, सामान्य वर्ग के लिए 15% उसको लगाना होगा। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत जनपद मुरादाबाद के लोगों से युवाओं से मैं अपील करना चाहता हूँ कि रोजगार सीकर न बन के जॉब गिवर के बारे में सोचें और अपना स्वयं का व्यवसाय उद्योग इस योजना के अंतर्गत लाभ लेकर अपना उद्योग स्थापित करें।
3: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया था तो मन में सिर्फ नौकरी करना यही विचार आता था। मेरा खुद का बिजनेस होगा और मैं अपने साथ दूसरों को भी

0: नौकरी देने में सक्षम बन पाऊंगा, ऐसा मैंने और मेरे परिवार वालों ने कभी नहीं सोचा था।
1: साथियों, इस योजना के तमाम फायदे हैं पर कुछ लाजमी शर्तें भी हैं, जैसे डिजिटल लेन देन के सापेक्ष रूप 1 प्रति ट्रांजेक्शन तथा अधिकतम 2,000 रूपए प्रति वर्ष के अतिरिक्त अनुदान प्रति लाभार्थी दे होता है। योजना के अंतर्गत सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित बैंक, ग्रामीण बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत सभी वित्तीय संस्थान ऋण वितरण हेतु पात्र है। तंबाकू उत्पादक जैसे गुटखा, पान मसाला, अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, कार्बोनेट पेय पदार्थ, पटाखे, प्लास्टिक कैरी बैग 40 माइक्रोन से कम तथा भारत राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रतिबंधित श्रेणी में रखे उत्पाद योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होते हैं। योजना का क्रियान्वयन मिशन मोड में होता है। जिला स्तर पर जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है। अधिक जानकारी के लिए आप cmyuva.org.in विजिट कर सकते हैं।
0: जब हम सभी ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम एक कंप्यूटर और डिवाइस सर्विस सेंटर खोलना है, तो बिना देरी के हम अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पहुंचे और वहां जाकर हमें पता चला कि आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है। अप्लाई करने के लिए MSME पोर्टल को लिंक पर ऑनलाइन आवेदन किया कि पोर्टल पर लिंक आवेदन किया जाता है। जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र में ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जाता है। परीक्षण के उपरांत आवेदनों को बैंक में भेजा जाता है, जहां समयबद्ध रूप से ऋण स्वीकृति एवं वितरण की व्यवस्था की जाती है। साथ ही बैंकों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से मार्जिनी मनी, ब्याज उत्पादन तथा CGTMSE प्रतिपूर्ति प्राप्त किए जाने की व्यवस्था भी होती है। आज मेरी इस उपलब्धि का पूरा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है, जिन्हें महज वादे ही नहीं किए बल्कि धरातल पर कोशिशों को साकार भी किया। आज ये उन्हीं की देन है कि मैं और मेरे साथी काम करने वाले पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने और अपने परिवारों का भरण पोषण कर रहे हैं। सचमुच लीडर हो तो ऐसा, योगी जी इसी दूरदर्शी सोच के लिए उन्हें मेरा सल्यूट है।
1: दोस्तों, वाराणसी के चौबेपुर निवासी सतीश और उनके बिजनेस पार्टनर्स रवि, निर्भय और उन सभी के परिवार वालों को आज महत्वपूर्ण चीजों पर खर्च करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। आज वो आर्थिक रूप से मजबूत भी हैं और अपने शहर में रहकर अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम भी हैं।
0: मेरे लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी ही असली फ्रीडम है और हम सभी युवाओं के लिए यही बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी है। ये नया यूपी है जहां अब युवा रोजगार के लिए भटकेगा नहीं बल्कि अपने रास्ते खुद तय करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार और युवाओं के हित में सोचने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को ढेर सारा धन्यवाद। और साथ ही रेडियो के माध्यम से मैं अन्य लोगों को भी ये बोलना चाहूँगा कि खूब सपने देखिए, क्योंकि आपके सपने और लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश आपके साथ है।
1: साथियों, बदलते और प्रगति की ओर बढ़ते उत्तर प्रदेश की और भी कहानियाँ हम लेकर आएंगे आपके पसंदीदा प्रोग्राम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश में। साथ ही अगर आप चाहें तो अपनी कहानियाँ हमारे माध्यम से जनता तक पहुँचा सकते हैं। सुनते रहिए और बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं हूँ आपका दोस्त आरजे राज। जल्दी ही मिलूंगा ऐसी और बहुत ही खूबसूरत कहानियों के साथ।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट, रामनगर, नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। आप सुन रहे हैं आपका नया कार्यक्रम सोच बदलो और मैं हूं आपकी दोस्त खुशी। आज का विषय शायद आपको सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर करेगा। कभी आपके मन में किसी को देखकर ऐसा विचार आया है कि यार इसकी जिंदगी कितनी अच्छी है, इसकी नौकरी मुझसे अच्छी है, इसके नंबर मुझसे ज्यादा है, इसकी शादी हो गई, इसके पास अपना घर है, ये मुझसे ज्यादा सफल है। और फिर हम बिना जाने अपनी जिंदगी को किसी और की जिंदगी से कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि क्या दूसरों से तुम हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है या अंदर ही अंदर मान दबाव पैदा कर देती है? तो मेरे साथ में रीना भी है यहाँ पर और रीना से भी कनेक्ट करते हैं। तो रीना बताइएगा आप क्या कहना चाहते हैं?
4: मैं आरजे रीना और आज इसी टॉपिक पर हम खुलकर बात करेंगे। और एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी यात्रा किसी की यात्रा से अलग है, इसीलिए आपकी रफ्तार भी अलग हो सकती है। तुलना होती क्यों है दोस्तों? तुलना कोई नई चीज नहीं है। बचपन में देखो शर्मा जी के बेटे के कितने नंबर आए हैं, स्कूल में उसने तुमसे ज्यादा अंक हासिल किए हैं, कॉलेज में उसकी नौकरी लग गई, तुम्हारी कब लगेगी? और बड़े होते होते तुलना बदल जाती, तनख्वाह, गाड़ी, घर, रहन सहन, शादी, बच्चे और आजकल सामाजिक माध्यमों पर दिखाई जाने वाली जिंदगी, मतलब जिंदगी के हर पड़ाव पर कोई ना कोई तुलना हमारा इंतजार कर रही होती है। एक बात हमेशा याद रखिए, तुलना तब खतरनाक हो जाती है जब हम दूसरों की सफलता को अपनी असफलता समझने लगते हैं। किसी का आगे बढ़ना, आपका पीछे रहना, यानी कि ये मेहनत पर निर्भर करता है। आप जैसा मेहनत करेंगे आपको फल भी वैसा ही मिलेगा। इसीलिए मुझे तो ये लगता है श्रोताओं कि देखिए किसी से हमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, जेलस फील नहीं होना चाहिए। उसको उसकी मेहनत का परिणाम मिल रहा है, आपको आपकी मेहनत का परिणाम मिलेगा। बेटर ये होगा कि आप दूसरों को बारे में कम सोचे, खुद के बारे में ज्यादा सोचे, खुद को ज्यादा ग्रो करे, खुद पर ज्यादा काम करे। जब आप खुद पर ज्यादा काम करेंगे तो शायद आप जितना समय दूसरों के बारे में सोचने के लिए लगा रहे हैं ना, उससे ज्यादा समय आप अपने ऊपर काम करेंगे तो आप उससे भी ज्यादा ऊंची सफलता पर और ऊंची ऊंचाई पर जा सकते हैं। इसीलिए अपने आप से हमेशा मैं कहती हूँ कि वादा करिए, दूसरों के बारे में आप जितना सोचेंगे ना उतना ही आपको टेंशन होएगा, डिप्रेस होंगे आप, बीमारियां बढ़ती जाएगी बॉडी में। इसलिए दूसरों के बारे में कम सोचिए, खुद के ऊपर ज्यादा काम करिए।
3: और श्रोताओं से मेरा सवाल भी है रीना, मैं अपने श्रोताओं से पूछना चाहती हूँ, आप सबसे ज्यादा किस चीज को लेकर अपनी तुलना दूसरों से करते हैं? काम और नौकरी, पैसा, सुंदरता, रिश्ते, रहन सहन या सफलता? मुझे संदेश जरूर भेजिएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। तुलना कब प्रेरणा बनती है? अब सवाल ये है कि क्या तुलना हमेशा गलत होती है? नहीं, अगर किसी को देखकर आपके मन में आए अगर ये कर सकता है तो मैं भी कोशिश कर सकती हूँ, तो ये तुलना नहीं प्रेरणा है। उसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं, ये तुलना मानसिक दबाव बन जाती है। फर्क बहुत छोटा है लेकिन सोच बदल देता है। प्रेरणा कहती है मैं भी कोशिश करूंगी और तुलना कहती है मैं उसके जैसी क्यों नहीं। बस सोच का यही छोटा सा फर्क हमारी पूरी भावना बदल देता है। तो दोस्तों अभी और भी बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: सुनते हैं ना, कभी कभी मैं भी आ जाती हूँ उसके साथ, लेकिन आज मैं और खुशी आए हैं, यानी कि पहली बार ऐसा शो हो रहा है कि हम दो सोच बदलों में आ रहे हैं ना,
1: वरना हम अक्सर महिला मंच में ही सुनाई देते हैं।
0: हाँ, अरे हमने सोचा कि जब मौका मिल रहा है तो आ ही जाते हैं।
1: बिल्कुल, कोई भी चांस नहीं छोड़ना चाहिए।
0: हाँ, तो अब हम बात करने वाले हैं सामाजिक माध्यम और तुलना। अब सामाजिक माध्यमों की बात ना हो तो आज का विषय अधूरा है। मोबाइल खोलिए, किसी की घूमने की तस्वीरें, किसी की नई गाड़ी, किसी की शादी, किसी का सुंदर घर, और हम दूसरों की जिंदगी का सिर्फ अच्छा हिस्सा देखकर अपनी जिंदगी की तुलना करने लगे। तो श्रोताओं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, इसीलिए ज्यादा ध्यान नहीं देना है आपको दूसरों पर। और याद रखिए, सामाजिक माध्यमों पर हर किसी की कहानी नहीं दिखाई जाती, सिर्फ चुना हुआ हिस्सा दिखाई देता है। इसीलिए किसी के कुछ सेकंड की वीडियो देखकर अपनी पूरी जिंदगी को मत परखिए। आप नहीं जानते कि उस तस्वीर के पीछे कितनी मेहनत और संघर्ष है, और दूसरे लोग भी आपकी पूरी कहानी नहीं जानते। जैसे कि मैंने आप सभी को बताई है, श्रोताओं, का चमकता चीज सोना नहीं होता है, वो छोटे छोटे क्लिप होते हैं। और आजकल एडिटिंग इतनी स्मार्ट हो गई है ना कि झुग्गी झोपड़ी वाले जो घर होते हैं ना, झोपड़ी वाले, उसको भी ऐसे महल की तरह एडिट कर देंगे ना, आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि वाकई में ये घर कैसा चमकता है, कि क्या चीज है क्या चीज नहीं। तो हमें इसीलिए वीडियो पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों, सही कह रही हूं मैं खुशी?
1: आपने जो कहा कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, एक्चुअली दोस्तों देखिए, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सब सुपर फास्ट हो गए हैं आज के टाइम में। तो कुछ चीजें ऐसे भी हैं जो लाइक हमारी, हम खुद अपनी लाइफ से ही ले लेते हैं एवरीवन, कि हम भी वो जिंदगी के ना उसी मोमेंट को कैप्चर करते हैं जो हैपनिंग वाले होते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो संघर्ष होता है, जो तकलीफें होती है, जो मेहनत होती है, हम कई बार उसको स्किप कर देते हैं, राइट ना? तो और इंसान उसी को देखकर खुश हो जाते हैं, अरे यार ये तो बहुत इजी है, हम भी कर सकते हैं।
0: ऐसा नहीं होता है।
1: उसके पीछे बहुत मेहनत होती है।
0: अब तुम यही देख लो, पता क्या बोल देंगे, अरे शर्मा जी का लड़का, देखो उसकी नौकरी लग गई है। पर कोई ये नहीं कहता यार वो पढ़ा कैसे होगा,
1: उसने कितनी स्टडी की है, रात दिन जाकर पढ़ाई की है।
0: हर कोई देता है तेरी लाइफ तो बड़ी अच्छी है, लेकिन लाइफ के पीछे क्या खिचड़ी पकी है
1: वो हर कोई नहीं समझ पाता है। और मेरा एक सवाल भी है अपने श्रोताओं से, क्या कभी सामाजिक माध्यमों पर दूसरों की जिंदगी देखकर आपको लगा है कि मेरी जिंदगी में कुछ कम है? अगर हाँ या ना, मुझे संदेश करके जरूर बताइएगा, मुझे मैसेज जरूर भेजिएगा कि कभी या कभी सामाजिक माध्यमों पर दूसरों की जिंदगी देखकर आपको लगा है कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी है, हाँ या ना में अपना मैसेज हमें जरूर पहुंचाइएगा एवरीवन। एंड अपनी कीमत किसी और की सफलता से तय मत कीजिए। दोस्तों, हम अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम किसी और की उपलब्धि देखकर अपनी कीमत तय करने लगते हैं, लेकिन आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि आप कोई आपसे आगे है या पीछे। आपकी कीमत आपकी मेहनत, आपके संस्कार और आपकी इच्छाओं, आपकी अच्छाइयों और आपके संघर्ष से है। हो सकता है कोई आपसे पहले सफल हो गया हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कहानी खत्म हो गई है। किसी की कहानी 10वां अध्याय चल रहा है और आपकी कहानी का 4वां, लेकिन किताब दोनों की अपनी अपनी है। अभी देखो बहुत सारी बातें बाकी हैं, अभी तो हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे हम कनेक्ट कराने वाले हैं, रूबरू कराएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक प्यारा सा छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है, आपको भी अपनी लाइफ में थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए काम से। लेकिन हम काम नहीं ले रहे हैं, हम आपको एक म्यूजिकल ब्रेक सुनवा रहे हैं। प्यारा सा गाना भी तो होना चाहिए ना, जो माइंड को एकदम फ्रेश कर दे। चलिए सुनते हैं।

0: हाँ जी, एक बार और आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए श्रोताओं। बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है सोच बदलो शो में। और देखिए, सोच बदलना आज के टाइम में बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है और आप सोच रहे हैं कि अभी भी हम पीछे हैं, तो आप यहाँ पर गलत है। अब कल ही मैं एक अंकल से मिली जो कि लाइव बता रही हूँ मैं, उनका मोटिव है कि जो मेरे बच्चे हैं वो बहुत अच्छे अच्छे एजुकेशन प्राप्त करे, आगे बढ़े, सबसे बातें करे। लेकिन एक जो उनकी सोच है, मतलब मैं सोचने पर मजबूर हो गई उनकी सोच पर, उनका कहना ये है कि 12वीं के बाद बच्चों की शादी कर देनी चाहिए, यानी कि लड़की की शादी कर देनी चाहिए। अब आप सोचिए कि तुम पढ़ाना भी चाहते हो और ये भी चाह रहे हो कि बच्चों की शादी यानी कि लड़की की शादी है वो 12वीं के बाद कर दे, और उनका ये भी कहना था कि शादी के बाद पढ़ लेगी। अब भैया, हर फैमिली ऐसी नहीं होती कि पढ़ने शादी के बाद अलाउ कर दे कि पढ़ो। बहुत से ऐसे हो जाते कि घर के कामों में इतने बिजी हो जाते कि अपने बारे में, आगे के बारे में सोच नहीं पाते हैं। इसीलिए जैसे जैसे दुनिया बढ़ती जा रही है आगे, आप भी अपना सोच बदलिए, बच्चों को पढ़ाइए, लड़कियों को पढ़ाइए, क्योंकि लड़कियां आज के टाइम में हर क्षेत्र में आगे है, वो पीछे नहीं है किसी भी क्षेत्र में। बस अपनी सोच को बदलने की हमें जरूरत है। सो इसी सोच बदलो में अब हम बात कर रहे हैं परिवार की तुलना। अब एक ऐसी तुलना की बात करते हैं जिस सामना बहुत से लोग बचपन से ही करते हैं, परिवार में होने वाली तुलना। उसके बच्चों को देखो, उसकी बेटी कितना अच्छा कर रही है, उसका बेटा सरकारी नौकरी में है, तुम कब कुछ करोगे। कभी कभी ये बातें हमें आगे बढ़ने के लिए कही जाती है, लेकिन सामने वाले के दिल पर बहुत दबाव डाल देती है। इसीलिए माता पिता और परिवार के सदस्यों से भी एक छोटी सी गुजारिश है, बच्चों की तुलना दूसरों से करने के बजाय उसकी आज की तुलना उसके कल के लिए कीजिए। कल से आज थोड़ा बेहतर हुआ, बस यही प्रगति है। इसीलिए कभी भी अपने बच्चों को ये मत कहिए कि उसके बच्चे को दो, वो आगे बढ़ रहा है, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। अरे, हर बच्चे का जो मेंटेलिटी है वो अलग होता है। कोई बच्चा आपके जो बातें है उसको गहराई से लेकर डिप्रेस हो जाता है, जो कि वो जो कर भी रहा होता है ना वो भी नहीं कर पाता है। वो सोचने लग जाता है, यार मैं अपने मन का करूं या घर वालों के मन के करूं। मुझे लगता है यहाँ पर बच्चों की बातें हमें सुननी चाहिए, वो क्या करना चाह रहा है, क्या नहीं करना चाह रहा है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जिसमें वो आपका बेटा बेटर कर सकता था, लेकिन आपकी बातें सुनकर उसने वो काम करा जो वो नहीं कर पाना चाहता था, लेकिन ना वो वहां करा ना यहाँ करा, तो इसमें लॉस आपका तो है ही, बच्चे का और भी ज्यादा है, क्योंकि बच्चे के भविष्य अभी बहुत आगे पड़ी है। तो इसीलिए कभी भी बच्चों के ऊपर, कभी भी बच्चे के दिमाग के ऊपर ये तनाव मत डालिए, उसके इतने मार्क्स आ गए हैं, वो आगे बढ़ रहा है, वो ये कर रहा है। बस अपन बच्चों की सुनिए और उसी के साथ आगे बढ़िए। जो उसकी सपना है, जो वो करना चाह रहा है, उसको अप्रिशिएट करिए, वो आगे बढ़ाइए। क्योंकि कहते हैं ना, पूरी दुनिया भी खिलाफ हो लेकिन जब फैमिली साथ होती है ना, तो पूरा कायनात भी एक क्यों ना हो पार लगी जाती है। नहीं है तो आपका साथ होना बहुत जरूरी है, मोटिवेट करना आपका बहुत जरूरी है। तो अपने बच्चों के साथ रहिए, मोटिवेट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।
1: बिल्कुल रीना, बहुत अच्छा बोला है आपने कि पेरेंट्स अगर सपोर्ट करते हैं तो बच्चा वो भी कर पाता है जिसमें वो ना करने की हार मान लेता है। तो इसलिए फैमिली को हमेशा बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। और छोटी छोटी अगर वो चीजें अचीव कर रहे हैं, कुछ जीत हासिल कर रहे हैं, लाइक जैसे किसी गेम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, या फिर उनके मार्क्स अच्छे आए, उन्होंने छोटे छोटे घर में भी अगर आपकी काम में हेल्प की है, तो उसके लिए भी आप उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए, ताकि आगे चलकर वो और भी अच्छा करें। क्यों? और दोस्तों, अभी नेक्स्ट हमारा जो मतलब सेगमेंट है, वो भी हम आपसे अभी कनेक्ट करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं, खुद से तुलना करना सीखिए। दोस्तों, आप सोच बदलो में एक आसान सा मंत्र याद रखिए, दूसरों से कम तुलना, खुद को बेहतर बनाने पर ज्यादा ध्यान देना। दूसरों से तुलना करने की बजाय खुद से पूछिए, क्या मैं कल से आज बेहतर हूँ? क्या मैंने आज कुछ नया सीखा? क्या मैंने अपनी किसी बुरी आदत को सुधारने की कोशिश की? क्या मैं अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब पहुंची हूं? अगर जवाब हाँ है तो पूरा विश्वास रखिए, आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको पूरी दुनिया से दौड़ नहीं लगानी है, आपको बस अपनी यात्रा जारी रखनी है, आपको अपनी जर्नी कंटिन्यू रखनी है। तो चलिए दोस्तों, इस शो को थोड़ा और मजेदार बनाते हैं। एंड मैं आपसे पूछना चाहती हूँ दोस्तों, एक ऐसी कौन सी चीज है जिसे लेकर आपने कभी खुद की तुलना दूसरों से की है? सुंदरता, पैसा, नौकरी, शादी, रहन सहन, स्वास्थ्य या कोई टैलेंट? नाम बताने की जरूरत नहीं है, बस अपनी सच्ची बात मेरे साथ साझा कीजिएगा। और साथ में भी बात याद रखिए, आज अगर आपको अपने छोटी वाले रूप से एक बात कहनी हो तो क्या कहेंगे, बताइएगा जरूर। चलो अभी लेते हैं एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आएंगे, फिर और भी बातें करनी है जो आप तक शायद आपकी जिंदगी को और ज्यादा बेहतर से बेहतरीन बना दे।

0: देखिए हम अपने वादे के अनुसार लौट कर आ चुके हैं आप ही के अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है सोच बदलो और दोस्तों तुलना से बाहर कैसे निकलें ये हम आपको बताने वाले हैं। अब थोड़ी काम की बातें भी कर लें कि दोस्तों अगर आप बार बार दूसरों से अपनी तुलनाते हैं तो कुछ छोटी छोटी आदतें अपनाइए। पहली बात, सामाजिक माध्यमों पर से थोड़ा कम कीजिए, दूसरों की बातें अपनी उपलब्धियों की एक सूची बनाइए। तीसरी बात, हर दिन एक छोटा लक्ष्य पूरा कीजिए। और चौथी बात, किसी और की सफलता देखकर जलने की बजाय खुद से पूछिए मैं इससे क्या सीख सकती हूँ या सीख सकता हूँ। और पांचवी बात और सबसे जरूरी बात, अपनी जर्नी का सम्मान कीजिए, अपनी जर्नी की रिस्पेक्ट कीजिए। प्रगति भी प्रगति होती है एवरीवन, जब आप कंटिन्यू धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहते हैं तो वो भी एक जर्नी होती है, बड़ी खूबसूरत सी। कहते हैं ना कि मंजिल से ज्यादा सफर खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि जब सफर खूबसूरत होगा ना तो मंजिल भी यकीन मानिए बहुत ब्यूटीफुल होगी।
1: अब मैं एक मजेदार बात करने वाली हूँ आप सभी के साथ। कभी कभी हम अपनी जिंदगी की खूबसूरती सिर्फ इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम सामने वाले की जिंदगी देखने में बहुत व्यस्त होते हैं। आपके पास जो
0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड सिविल लाइंस मुरादाबाद।
4: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
5: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

아시가나? 아시가나 늘!

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बन चुका है।
2: इसी का सुखद परिणाम है उत्तर प्रदेश और जापान की साझेदारी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जापान यात्रा से ये संबंध और सुदृढ़ हुए।
1: यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रा और पर्यटन के क्षेत्र में खुलेंगे निवेश के नए द्वार, साथ ही हजारों रोजगार का मिलेगा सशक्त आधार। ईड़ा में 500 एकड़ की जापानी सिटी से यूपी जापान औद्योगिक साझेदारी को मिलेगी नई ऊंचाई।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी
3: है। यूर ट्यून इन टू FM मुरादाबाद 89.6 FM।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सर, श्रीकाल, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपके दोस्त आरजे खुशी लेकर आई हूँ आपका अपना फेवरेट शो संडे मॉर्निंग मस्ती। जी हाँ, जहाँ पर हम करने वाले हैं ढेर सारा फन, बहुत सारी एक्टिविटीज एंड बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है ढेर सारी। और संडे की सुहाना सा मौसम है। वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ 10:11 और तारीख है 6 सितंबर की। खुशी हाजिर हो गई है आपका अपना फेवरेट शो लेकर। एंड संडे का दिन कुछ मतलब ना अलग ही होता है, बहुत स्पेशल होता है ना। कुछ हमारे श्रोताओं के लिए रेस्ट करने का दिन होता है और कुछ घूमने फिरने का प्लान करते हैं। और कुछ मेरी तरह अपनी ड्यूटी पर भी आ जाते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं, ऑफिस मेरी तरह पहुंच चुके हैं। और सबसे ज़्यादा इस संडे का इंतज़ार ना छोटे बच्चों को होता है, क्योंकि उनके लिए संडे मतलब नो स्कूल, ढेर सारी मस्ती और मम्मी पापा के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम, राइट ना। तो आप चाहे घर पर हो, आराम कर रहे हो, या घूमने निकले हो, या फिर काम पर हो, मेरी बस यही दुआ है कि आपको ये संडे सुकून, मुस्कान और खूबसूरत यादों से भरा हो। एंड बहुत सारी बातें हम करने के लिए आपके साथ आ गए हैं। अब आप भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे आज की सुबह। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और आज का थॉट भी बहुत स्पेशल है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, केवल एक व्यक्ति तुम्हें आगे लेकर जाएगा, हाँ, केवल एक व्यक्ति तुम्हें आगे लेकर जाएगा और वो व्यक्ति कोई और नहीं है, खुद तुम हो। जिंदगी में ना हर मोड़ पर किसी के सहारे का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि आपकी मेहनत, आपका हौसला और आपका एक सही फैसला आपकी पूरी कहानी बदल सकता है। तो आज खुद से एक वादा जरूर कीजिएगा, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, बस आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी ताकत कोई और नहीं, आप खुद हैं। और भी बहुत सारी बातें करेंगे, अभी तो हम आए हैं ना। और क्या कुछ स्पेशल है सब आपको धीरे धीरे पता लगेगा। बस आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। हैप्पी संडे एवरीवन।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, संडे मॉर्निंग मस्ती में आपका वेलकम है। मैं आपके साथ आपकी होस्ट आरजी खुशी। और संडे अपने आप में, मैंने जैसे कहा पहले भी कि बहुत खूबसूरत होता है। और दोस्तों कहते हैं ना कि कल से करेंगे, लेकिन वो कल आखिर आता कब है? हाँ, कभी पढ़ाई कल से शुरू करनी है, कभी जिम कल से जाना है, कभी कोई जरूरी काम करना है, हाँ, और कभी अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ाना है, लेकिन हर बार एक ही बहाना, अभी नहीं बाद में करेंगे। तो दोस्तों आज 6 सितंबर को मनाया जाने वाला कौन सा डे है? वो है टालमटोल से लड़ने का दिवस। हमें एक बहुत ही प्यारी सी याद दिलाता है कि काम को टालने से वक्त नहीं रुकता, सिर्फ हमारा काम पीछे छूट जाता है ना, समझ रहे हैं ना आप? अभी बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं हमारे जो कहते हैं कि नहीं आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, टेंशन ना लो, हम कल आपका पूरा काम कंप्लीट करके दे देंगे, लेकिन वो कल कंप्लीट ही नहीं होता, कल आता ही नहीं है। आज की हमारी थीम भी बस यही है कि कल नहीं, शुरुआत आज से करें। आप भी सोचिए ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप काफी समय से टाल रहे हैं। हाँ हाँ, बताओ बताओ, किसी को फोन करना, कोई नया काम शुरू करना, अपने लिए वक्त निकालना, या फिर कोई ऐसा सपना जिसे आप बार बार कहते हैं कि एक दिन जरूर पूरा करूंगा। हाँ हाँ, बताओ दोस्तों, कौन सा ऐसा काम है जिसे आप कल पर टाल देते हैं, जरा मुझे बताइएगा। मैं भी तो जानूं कि हमारे श्रोता कौन कौन से काम है जो कल पर टालते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896, इस पर आप अपने मैसेज पहुंचाइएगा, मैं इंतजार कर रही हूँ। तो बहुत सारे श्रोता हमारे ऐसे भी है ना, जो कभी कभी आलस भी आ जाता है, बोलते हैं कि आज बिल्कुल भी मन नहीं, चलो कल को कर लेते हैं काम। बताइए कौन सा ऐसा काम है जिसको आप ज्यादातर कल पर टालते हैं। जब तक आप अपने संदेश में पहुंचाते हैं, तब तक हम आपको सुनवाते हैं एक शानदार सा ट्रैक।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर, नियर चड्डा सिनेमा।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
0: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
5: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और मैं आपके साथ आपके दोस्त आरजी खुशी लेकर आई हूँ आपका अपना फेवरेट शो संडे मॉर्निंग मस्ती, जहाँ पर ढेर सारा फन हम करने वाले हैं और आपके साथ गेम भी खेलने वाले हैं। गेम खेलेंगे आपके साथ, लेकिन उससे पहले मैंने आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था आज की मॉर्निंग। आज सेलिब्रेट किया जाता है टाल मटोल से लड़ने का दिन। जी हाँ, हम क्या करते हैं अक्सर अपनी जो चीज़ें होती हैं, जो अहम काम होते हैं हमारे, हम अक्सर कल पर टाल देते हैं कि आज नहीं करते हैं, कल कर लेंगे। तो उसी से आज लड़ने का दिन, कि आलस को छोड़कर जो भी आपके एक पेंडिंग काम है, जो भी चीज़ें हैं आपको लगता है कि ये हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है, तो हमें इन काम को करना चाहिए, ना कि कल पर टालना चाहिए। और मैंने आपसे पूछा था कि दोस्तों ऐसे कौन कौन से काम हैं जो जिस काम को आप कल पर टाल देते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, लेकिन वो कल होता ही कब है, आखिर वो कल कंप्लीट ही नहीं होता है। तो श्रोताओं, आपसे मैं अगेन ये क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे बताइएगा आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा किस काम को टालते हैं, बताइए। पढ़ाई, फिटनेस, पैसा बचाना, या कोई नया काम शुरू करना, या किसी को अपनी दिल की बातें कहना, बताइए किस काम को टाल आप कल पर टाल देते हैं, जल्दी जल्दी से बताइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896 और हमारे पास यहाँ पर कुछ खूबसूरत संदेश आए हैं, मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। आज की सुबह हमारे जो लिसनर्स हैं ना, बड़े ही प्यारे हैं, जैसे ही घड़ी में 10 बजते हैं ना, तुरंत अपना मैसेज पहुँचा देते हैं, उनको पता होता है कि खुशी आने वाली है। हाँ, थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैसेज आता है, यह हमें मैसेज पहुंचाते हैं धनूरी तीलीवाला उत्तराखंड से, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी जी। आज की सुबह प्रिय आरजी जी, आपको हमारा आदाब नमस्कार, आपको भी नमस्कार सर। नेक्स्ट मैसेज हमें पहुंचाते हैं आरजी खुशी जी को, नमस्कार, आपको भी नमस्कार। और हमारे पास ये मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह अजीत कसाना जी, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी हैं लदावली से। आज की सुबह इन्होंने बड़ी खूबसूरत सी लाइनें लिखी हैं कि हर परिस्थिति हमारे मन के मुताबिक नहीं होती, लेकिन उसे देखने का नजरिया हमारे हाथ में होता है। उम्मीद बनाए रखिए, अच्छे की तलाश कीजिए और हर दिन को एक नए संभावना के साथ जीजिए। एग्जैक्टली राइट सर, मैं भी तो यही करती हूँ और अपने श्रोताओं से भी कहती हूँ कि दोस्तों आपका जो ये वक्त है ना, देखिए हमारा ना डिपेंड करता है कि नजरिया कैसा है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव देखते हैं, तो आपके साथ अच्छा ही होता है, पॉजिटिव ही होता है। जब सोचना ही है तो पॉजिटिव सोचो ना, जो हमारी लाइफ को आगे बढ़ाए, हमें और इम्प्रूव करे, है ना, तो वो काम करना चाहिए। नेगेटिव सोचने के लिए क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं, अपने आप को तकलीफ ही देनी है और पीछे रह जाना है। तो आपको पीछे नहीं रहना है और ना ही खुद को तकलीफ देनी है, ठीक है। तो इसीलिए पॉजिटिव सोचिए, जब अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा सब कुछ। और हमारे पास अगला मैसेज यहाँ पर आया है, हाय स्वीट हार्ट, कैसे हो आप, मैं आपकी दोस्त अफरोज फातिमा, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग अफरोज, हम भी ठीक हैं। एंड नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है गुलाम जलानी पाशा जी का, गुड मॉर्निंग विश करते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमें पहुँचाती है, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। ये कहती है कि मैम मुझे सबसे बुरा काम लगता है कपड़े धुलना, जिसको मैं कल पर टाल देती हूँ। डियर देखिए, कपड़े वॉश करना आपको थोड़ा सा लगता है कि हाँ मुझे नहीं धोना, पसंद नहीं है, लेकिन आखिर में फिर तो धोने ही पड़ते हैं ना, तब तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। हाँ, तो कल पर नहीं टालना चाहिए। जो काम है उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। एंड ये मैसेज हमें पहुँचाती है शाबरीन मुलक से। अगला मैसेज हमारी, वैसे हम, मेरी भी एक दोस्त है, वो भी ऐसा ही करती है, उसको ना कपड़े वॉश करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बस उसको नए नए ड्रेसेस पहनना बहुत अच्छा लगता है। और जब कपड़े धोने की बारी आती है ना, तब वो क्या करती है पता है आपको,
कल पर टाल देती है, कहती है आज नहीं धोने का मन है कल दूंगी, और इस तरह से वो करते करते ना पूरा वीक उसका कंप्लीट हो जाता है, तब वो संडे में आज फाइनली वो कपड़े धोने वाली है। तो वो ऐसा करती है, मैं तो ऐसा क्या बोलूं नहीं करती हूँ। मैं तो कोशिश करती हूँ कि एवरी डे मैं अपने कपड़े वॉश करूँ, और करती भी हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे रख के इतने सारे कपड़े वॉश करके धोने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसलिए मैं तो एवरी डे वॉश करती हूँ। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन मुझे लगता है कि कल पर कोई भी काम को टालना नहीं चाहिए। जो भी कार्य करने हैं वो आज ही कीजिए। एंड अगला मैसेज मेरी पास यहाँ पर आया है, आरजे खुशी जी गुड मॉर्निंग, विकी सागर जी का मुरादाबाद से वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। तो चलिए दोस्तों, अब एक ऐसा गाना मैं आपको सुनवाने वाली हूँ जो आपके दिल को छू जाएगा, रियली बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है, और हम भी प्रभु से कुछ ना कुछ विश करते ही हैं, है ना। ये बहुत ही प्यारा ट्रैक है अदनान सामी जी की आवाज़ में, तो हम आपको सुनवाते हैं और उसके बाद लौट कर आएंगे। तब तक आप भी बने रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और अभी लौट कर आएंगे तो बताएंगे अपने मुरादाबाद शहर का मौसम कैसे रहने वाला है और क्या कुछ हुआ है मुरादाबाद में, वो सब अपडेट आपको मिलने वाली है ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, गुड मॉर्निंग।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी, और वक्त हुआ है अभी 10:49। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने मुरादाबाद शहर की एंड आज का वेदर कैसा रहने वाला है। दोस्तों, मुरादाबाद में आज मौसम का मिजाज सुहाना बना हुआ है। तापमान करीब 27 डिग्री सेल्सियस है और हल्की बारिश के साथ गरज चमक का दौर जारी है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक दिन भर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, लेकिन बारिश के इस सुहाने मौसम के साथ शहर में कुछ जगहों पर जल भराव की परेशानी भी देखने को मिल रही है। निचली बस्तियों और सड़कों पर पानी भरने से लोगों की आवाजाही में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं बात करें अगर मुगलपुरा थाना क्षेत्र में जामा मस्जिद के पास एक चर्च इमारत बारिश के दौरान गिर गई एंड राहत की बात यह रही है कि दोस्तों, प्रशासन ने इमारत को पहले ही सील कर दिया था, इसीलिए किसी तरह की जाना ही नहीं हुई और एक बड़ा हादसा टल गया। और बात करें शहर के माहौल की, तो अलग अलग स्थानों पर नंदोत्सव के कार्यक्रम भी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाए गए हैं। तो अगर आज आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो बारिश को देखते हुए थोड़ा सावधान रहिए, जल भराव वाले रास्ते से बचिए और सुरक्षित रहिए। दोस्तों, मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। और आज और कौन कौन सी डे सेलिब्रेट किए जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। एंड बॉलीवुड के एक बेहतरीन अभिनेता का भी बर्थडे है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो बस आप मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6। एंड एक मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया अभी राइट नाउ। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। ये मैसेज हमें पहुंचाती है लाइबा काजमी, और साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं, मोहम्मद कामिल, अफरोज फातिमा एंड दरक्षा फातिमा, शुभनम जी। हाय स्वीट हार्ट, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, मैं बहुत अच्छी हूँ। वेदर कैसा है आपके यहाँ का? मैं बहुत मिस कर रही हूँ आपको आज। आई रियली लव यू टू डियर। हाँ, मौसम हमारे शहर का बहुत ही खूबसूरत है। बाकी आप बताइएगा मुजफ्फरनगर का वेदर कैसा है। तो चलिए दोस्तों, मौसम की बात की है तो एक सुहाना सा गाना भी हो जाए आज की सुबह, उसकी बात करेंगे आपसे भी बातचीत। बस आप बने रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और मुस्कुराना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है? माना कि संडे है, थोड़ा काम ज्यादा है, कोई बात नहीं, आराम से कर लीजिए। देखिए, खुद को रेस्ट देना भी जरूरी है ना। तो आपको क्या करना है, एक काम को एक ही टाइम पे कीजिए। ये नहीं कि इधर भी ध्यान लगा रहे हैं, उधर भी ध्यान लगा रहे हैं कि सारे काम मैनेज कर लेंगे। उसमें क्या होता है, आप ना जब चारों तरफ ध्यान लगाते हैं ना, तो आपका जो एक काम है ना, वो भी ठीक से नहीं हो पाता, उसमें मिस्टेक हो जाती है। तो इसीलिए अगर आप कोई भी कार्य करें तो उसे एक काम को अच्छे से कीजिए, उसी पर फोकस कीजिए, ताकि वो काम आपका अच्छे से कम्प्लीट हो जाए, ठीक है? चलो अभी गाना सुनो, मैंने बहुत सारी बातें कर ली है, अभी लौट कर वापस आती हूँ।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
4: Hey, you're tuning to FM मुरादाबाद 89.6 FM।

हेलो एवरीबॉडी, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6। मैं आपके साथ आपकी खुशी। और दोस्तों, आज सिनेमा की दुनिया में कुछ लोग सिर्फ कैमरे के सामने नहीं बल्कि कैमरे के पीछे भी अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं, और ऐसे ही शानदार कलाकार हैं राकेश रोशन जी, जो आज यानी 6 सितंबर को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। 1949 में जन्मे राकेश रोशन जी ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत एक अभिनेता के तौर पर की। 70 और 80 के दशक में उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया और ज़्यादातर फिल्मों में सहायक भूमिकाओं के लिए जरिए दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाई, लेकिन उनकी असली पहचान बनी एक निर्देशक और निर्माता के रूप में। उन्होंने अपनी सोच, कहानी, कहने के अंदाज और बेहतरीन सिनेमाई विजन से बॉलीवुड में एक खास मुकाम हासिल किया। और फिर आया कहो ना प्यार है का दौर, जिसने उनके बेटे ऋतिक रोशन को रातों रात सुपरस्टार बना दिया और राकेश रोशन जी के निर्देशन क्षमता को भी एक नई पहचान मिली। इसके बाद कोई मिल गया और कृष्ण जैसी फिल्मों ने भारतीय सिनेमा में सुपर हीरो और साइंस फिक्शन को एक अलग पहचान दिलाई। संडे मॉर्निंग मस्ती की तरफ से, आरजे खुशी की तरफ से आज राकेश रोशन जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। और कामना करें कि उनका अनुभव, जुनून और सिनेमा के प्रति प्यार यूं ही बरकरार रहे। हैप्पी बर्थडे राकेश रोशन जी को एफएम मुरादाबाद की टीम की ओर से। और दोस्तों, उन्हीं की फिल्म का ना मैंने एक ट्रैक यहाँ पर सिलेक्ट किया है, फ्रॉम द मूवी कामचोर। बहुत ही खूबसूरत सा ये गाना है और इस खूबसूरत गाने को गाया है किशोर कुमार साथ में अलका याग्निक जी ने। अभी लौट कर आऊंगी ना तो आपसे एक सवाल भी पूछने वाली हूँ और मुझे पता है कि आप उसका जवाब जल्दी से दे पाएंगे। हमारा नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9883789689। ये वही नंबर है जिस पर आपको सही जवाब पहुंचाना है, तो नंबर को सेव कर लीजिएगा। ठीक है एवरीवन, और सुनिएगा ये शानदार सा ट्रैक।

हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आपका मुरादाबाद 89.6 पर। अच्छा दोस्तों, अभी देखिए मैं आपको समय बता देती हूँ, 11:12 हो गए हैं स्टूडियो की घड़ी में। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ आज की सुबह कि आप इस समय राइट नाउ क्या कर रहे हैं। दोस्तों बताए, संडे की सुबह है, आप इस वक्त क्या कर रहे हैं मुझे मैसेज करके बताइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9833789689। काम कर रहे हैं या फिर आराम से बैठ के हमें सुन रहे हैं। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज भी आए हैं खूबसूरत, एंड टेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है। अस्सलाम वालेकुम खुशी मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। ये नेहा हमें मैसेज पहुँचाती हैं फ्रॉम मुरादाबाद। अरे अच्छा, ये बात है, नेहा जी ने अपना मैसेज हमें पहुँचाया है। कहती हैं कि मैम मैं तो अपने सारे काम कंप्लीट कर लेती हूँ जल्दी, मगर मेरे हस्बैंड हैं ऐसे आज नहीं कल कर लेंगे, वो बहुत टालमटोल करते हैं। थैंक यू नेहा जी, आपने अपना मैसेज हमें आज की सुबह पहुंचाया है। हाँ वो होता है थोड़ा सा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें ना कोई भी काम को कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि कल किसने देखा है, किसी को नहीं पता होता है कि कल क्या होने वाला है, कुछ नहीं मालूम होता है। तो अपने जो भी काम हैं एंड आपको लगता है कि ये मोस्ट हैं, अहम हैं, तो उनको कर लेना चाहिए। एंड चाहे वो आपका ड्रीम हो, कोई भी यू नो आपका ड्रीम, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सोच रहे हैं कि मैं कल से यू नो ट्राई करूँगा, कल से मैं करूँगा। जैसे एक छोटी सी बात है, मॉर्निंग में ही उठने के लिए ही सोच लीजिएगा। कुछ श्रोता हमारे सोचते हैं कि बस मैं आज से नहीं, आज थोड़ा 5 मिनट और से सो लेता हूँ या सो लेती हूँ, कल से मैं सुबह 5 बजे उठूँगी और वॉक करने जाऊँगी, लेकिन वो क्या करते हैं, एवरी डे टालते रहते हैं। तो उस हैबिट को आपको नहीं अपनाना है, आपको जो भी अपने काम करने आज ही कीजिए। आलस को छोड़ो और अपनी अच्छी एक्टिविटीज में यू नो एक्टिविटीज को अपनाइए, अच्छा काम कीजिए जो भी आपकी। देखिए जब हम अच्छी आदतें अपनाते हैं ना, तो हमारा दिन भी अच्छा होता है, और जब दिन अच्छा होता है तो हमारा यू नो आने वाला कल भी ऑटोमेटिकली खूबसूरत हो जाता है। क्यों? और हम क्या करते हैं, आज को अपने ख़राब कर लेते हैं और कल के ऊपर चीज़ों को टाल देते हैं, है ना। अपने आज को क्या सोचते हैं कि अरे यार आज तो बहुत दिन है, आराम से कर लेंगे, ऐसे करते करते कब दिन बीत जाता है, समय निकलता रहता है, पता नहीं चलता है। तो इसीलिए अपने जो भी कार्य हैं, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये मोस्ट काम है, तो उनको आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। अभी चलो मैं ना आपको एक गाना सुनवाती हूँ, उसके बाद लौट कर आती हूँ, और एक मैं ना बहुत ही खूबसूरत सा डायलॉग आपसे मालूम करने वाली हूँ। काफ़ी पॉपुलर फिल्म है और आपको बताना है कि वो मैं आकर बताऊंगी, सब कुछ अभी बता देती हूँ। ना ना ना ना, आकर लौट कर आऊँगी तब बताऊँगी, थोड़ा सब्र कीजिए यार।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: उत्तर प्रदेश अब निवेश प्रदेश के रूप में बना रहा है अपनी पहचान।
4: चौथे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से बढ़ेगा प्रदेश का मान।
3: इस महामंच पर 80 से अधिक देशों के 550 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार होंगे शामिल।
4: ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर इन मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले इस आयोजन में व्यापार के साथ दिखेगी यूपी की सांस्कृतिक विरासत की झलक। तो आइए, जुड़िए और बनिए यूपी की सक्सेस स्टोरी का हिस्सा।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी, शो का नाम है संडे मॉर्निंग मस्ती। और चलिए अब थोड़ा सा हम फन कर लेते हैं, है ना। आपसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आज की सुबह हम पूछने वाले हैं। आप मुझे बताइए दोस्तों कि भारत में सबसे ज्यादा चावल किस राज्य में उगाया जाता है। जी हाँ, आज सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि भारत में सबसे ज्यादा चावल किस राज्य में उगाया जाता है। मैं आपको ऑप्शन भी देती हूँ, ठीक है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। जी बताइएगा सही जवाब अपना। भारत में सबसे ज्यादा चावल किस राज्य में उगाया जाता है। आपको मैं 4 ऑप्शन दे रही हूँ। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। सोचिए सोचिए और अपना जवाब हमें ज़रूर पहुँचाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। जल्दी जल्दी से अपने जवाब पहुँचाइएगा, तब तक हम आप तक पहुँचाते हैं एक और शानदार सा ट्रैक।

हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी आपने सुना है शानदार से गाना फ्रॉम द मूवी ओके जानू से, अरिजीत सिंह जी की खूबसूरत आवाज में ये ब्यूटीफुल ट्रैक। और दोस्तों, सच में रब ने आपको बहुत ही सोना बनाया है, इतने प्यारे आप लगते हैं। और हम आपसे बस यही कहेंगे कि जब भी आप घर से बाहर जाएं ना, तो काला टीका जरूर लगा कर जाएं, ताकि आपको नजर ना लगे। और आज की मॉर्निंग मैंने आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, चलो अगेन रिपीट कर देती हूँ एक बार, एक चांस और आपको दे देते हैं, ठीक है? बहुत सिंपल सा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो मैंने सोचा आज की सुबह क्यों ना अपने श्रोताओं से एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा जाए। और हमारे जो लिसनर हैं बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, बिना किसी देरी के अपने सही जवाब हमें पहुंचा देते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि हमारे जो अभी लिसनर्स हैं, जिन्होंने अभी रेडियो ऑन किया है, उनको भी एक मौका मिलना चाहिए ना। तो आज का मेरा क्वेश्चन आपसे है कि भारत में सबसे ज्यादा चावल किस राज्य में उगाया जाता है। जी हाँ, भारत में सबसे ज्यादा चावल किस राज्य में उगाया जाता है। ऑप्शन मैं आपको देती हूँ, ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी गुजरात। तो सोचिए सोचिए और जल्दी से अपना जवाब हमें पहुंचाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे मैसेज आपके बैक टू बैक आ रहे हैं, हम सभी को शामिल करेंगे, लेकिन एक गाना पहले हो जाए, इसके बाद हम आपके जो मैसेज आए हैं उनको भी शामिल करेंगे।

तो चलिए एक शानदार सा ट्रैक सुनवाते हैं आज की सुबह, उसकी बात करते हैं आपसे बातचीत और देखते हैं कि आज के हमारे शो के कौन बनते हैं लकी सुपरस्टार संडे मॉर्निंग शो के। एंड अभी सुनिएगा एक खूबसूरत सा ट्रैक क्योंकि मौसम है बड़ा ही सुहाना।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
5: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.

हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6। और आज की सुबह मैंने आपसे पूछा था एक सिंपल सा क्वेश्चन। वाओ, क्या बात है मेरे स्मार्ट लिसनर्स। आज के जीके क्वेश्चन का सही जवाब ज्यादातर लिसनर ने बिल्कुल सही दिया है, है ना। और राइट आंसर क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम अपने श्रोताओं के लिए क्लैपिंग तो बजा दें यार। इतना खूबसूरत सा उन्होंने क्लैप तो करें, इतना खूबसूरत सही जवाब पहुंचाया है। और आज की हमारी शो की लकी सुपरस्टार बनती हैं कौन कौन कौन, बताते हैं। हमें सही जवाब पहुंचाती है आज की सुबह लाइबा काजमी, मुजफ्फरनगर से। एंड ये बनती है आज की हमारी शो की लकी सुपरस्टार। तो आपके लिए जोरदार क्लैपिंग। लाइबा, कांग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत बधाइयां। आपने दिया है सबसे पहले सही जवाब और ये जोरदार तालियां आपके लिए हैं। एंड बाकी और श्रोताओं के भी सही जवाब आए हैं। राइट आंसर है पश्चिम बंगाल, एग्जैक्टली और हमारे पास सही जवाब हमें पहुंचाया है यहाँ पर हमारे पास सही जवाब नेक्स्ट पहुंचाते हैं। गुड मॉर्निंग खुशी जी, सबसे ज्यादा चावल उत्तर प्रदेश राज्य में, इससे पहले पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। एंड ये मैसेज अपना पहुंचाते हैं हमें सुभाष सैनी जी, रामनगर पंचायत, ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं मुजफ्फरनगर से। एंड अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है डी के अरोड़ा जी का, चंदन नगर मुरादाबाद से। गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। सबसे ज्यादा चावल पश्चिम बंगाल में पाया जाता है क्योंकि वहाँ के लोग मछली चावल का ज्यादा प्रयोग करते हैं। एग्जैक्टली राइट आंसर सर। विकी सागर जी ने सही जवाब पहुंचाने की जगह थोड़े से मिस्टेक कर दिए, इन्होंने पंजाब बताया है जबकि राइट आंसर है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, बट कोई बात नहीं सर। अगला मैसेज हमारे पास आया है, हाय गुड मॉर्निंग, रामपुर से शमा जी का मैसेज पहुंचाती है। शमा, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी डियर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, मैं पूजा प्रिया शर्मा लाइन पर सूर्यनगर से। एंड मैम, आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब है पंजाब, आपका आंसर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, बट कोई बात नहीं, आपने पार्टिसिपेट किया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज हमें पहुंचाती है अनुष्का एंड मुरादाबाद, नी मुरादाबाद से। और कहती है मैम राइट आंसर है पश्चिम बंगाल, एग्जैक्टली राइट। तो ऐसे ही मजेदार हम आपके साथ गेम खेलते रहेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6। और एक और सुनवाते हैं शानदार सा ट्रैक, उसके बाद लौटकर खुशी आती है। आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी है जो अभी बाकी है, तो बस आप सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6। थैंक यू सो मच एवरीवन, वंस अगेन आपने पार्टिसिपेट किया और अपने जवाब पहुंचाए।

बिल्कुल दोस्तों, खाओ पियो ऐश करो मित्रा, पर दिल किसी का नहीं दुखाना चाहिए और ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारी वजह से किसी सामने वाले इंसान को तकलीफ हो, ठीक है। बाकी जिंदगी को अच्छे से जीजिए, बहुत खूबसूरत लाइफ है। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी और एवरीवन, वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 11:57। और हमारे पास यहाँ पर कुछ और खूबसूरत संदेश आए हैं, मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है दुर्गेश सैनी जी का, कल्याणपुर मुरादाबाद से। गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री राम आपको भी। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, और साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं शहीद इरशादी कली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी। गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर, संडे में आपका शो मॉर्निंग मस्ती सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, सॉन्ग भी अच्छे प्ले कर रही हैं, उसके साथ साथ सवाल भी आप पूछ रही हैं। हाँ जी सर, मैंने सोचा चलिए, देखिए गाना इन्फॉर्मेशन सब चीज़ें चलनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा भी हमें क्वेश्चंस पूछने चाहिए ना जिससे हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा माइंड की एक्सरसाइज करवा देते हैं हम, थोड़ा सा है ना कभी कभी होता है, तो मैंने सोचा कि आज भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं। और हमारी श्रोताओं ने बहुत ही यू नो अच्छा ये शो में पार्टिसिपेट किया एंड अपने सही जवाब भी पहुंचाए। और अब जाते जाते आज मैं अपने श्रोताओं से दिल की एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगी, अगर आज कहीं आप जा रहे हैं ना, तो जाते हुए कहीं जरा मैं आपसे कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा ना रास्ते को महसूस कीजिए, चाय की पहली चुस्की को थोड़ा एंजॉय कीजिए, और अगर कोई अपना आपको सामने मिल जाए ना तो जल्दी में मत गुजरिए, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सा ठहर कर उनसे बात कर लीजिए, क्योंकि जिंदगी ना हमेशा बड़े बड़े पलों में नहीं, इन छोटे छोटे मोमेंट में अपना सबसे खूबसूरत रंग दिखाती है। और हाँ, आज खुद को किसी से कंपेयर मत कीजिए, आपकी कहानी आपकी है, आपका सफर आपका है, और यकीन मानिए आपकी स्टोरी अभी बाकी है। तो आज का दिन किसी खास वजह का इंतजार मत कीजिए, खुद ही अपनी वजह बन जाइए। मैं चलती हूँ, मुलाकात करूंगी आपसे, सी यू सून, तब तक के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और मुस्कुराते भी रहिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबने पार्टिसिपेट किया आज की सुबह। और अब मैं सुनवाती हूँ आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, ये ट्रैक फिल्माया गया है राकेश रोशन और साथ में जया पर्दा जी पर, बहुत ही शानदार सा ट्रैक है, किशोर कुमार साथ में लता मंगेशकर जी की आवाज में। तो एंजॉय कीजिएगा आप सब और मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, मैं मुलाकात करूंगी आपसे 3 से 5, तब तक के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपनों के साथ इस संडे को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।

0: मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
1: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपके साथ आपके दोस्त आरजे खुशी। आज तो हमारे गांव में कुछ अलग ही माहौल है। सुबह सुबह इतनी भीड़ और ये लाउड स्पीकर आवाज, सभी लोग ध्यान दीजिए। आज प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर है।
1: अरे भाई, ये HPV क्या होता है और इतनी भीड़ क्यों लगी है?
0: अरे सियतिया सिंह जी, जरा इधर आइए, आप तो हमेशा सही जानकारी देते हैं, जरा बताइएगा ये क्या चल रहा है?
2: आरजे साहिबा, आज बड़ा अच्छा दिन है गांव के लिए और भी हमारी बेटियों के लिए भी। आज जो कैंप लगा है ना, ये कोई साधारण टीकाकरण कैंप नहीं है, ये आगे चलकर एक बहुत बड़ी बीमारी से बचाने वाला टीका है। पर HPV के बारे में तो विस्तार से जानने के लिए आपको पहले कहानी बताता। यहाँ एक गांव था, गांव का नाम था बड़की टोला। सुबह का समय था, सूरज अभी पूरी तरीके से निकला भी नहीं था, लेकिन सावित्री देवी का दिन कब का शुरू हो चुका था। पहले चूल्हा जलाना, फिर पानी भरना, बच्चों को तैयार करना और उसके बाद खेत का काम भी अलग। सावित्री देवी एक 12 साल की बेटी थी, जो हम कह सकते हैं गुड़िया, गांव में गुड़िया कहा जाता। पढ़ने में तेज लेकिन थोड़ी शर्म। सावित्री चाहती थी कि उसकी बेटी बहुत कुछ बन जाए बड़े होकर, जिससे उसकी जिंदगी और बेहतर हो जाए। एक दिन गांव में आशा दीदी आई और उन्होंने बताया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर लगने वाला है। उन्होंने समझाया कि टीका लड़कियों को आगे चलकर एक खतरनाक बीमारी सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। सावित्री देवी पहले तो थोड़ी हिचकिचाई, फिर उन्होंने अपने पति रामपाल से बात। रामपाल पहले तो बोले, अरे हमारी बेटियां तो बिल्कुल ठीक है ना, तो क्या जरूरत पड़ी है इस टीके की? लेकिन आशा दीदी ने धैर्य से समझाया, भैया यही सही समय है, यह टीका बीमारी होने के बाद नहीं पहले काम करता है, अगर अभी लगवा दिया तो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचाव हो सकता है। रामपाल कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने आसपास के लोगों से भी पूछा, लेकिन किसी के पास पूरी जानकारी नहीं थी, बस अफवाहें थी जो सुनी सुनाई। तभी एक दिन उन्होंने रेडियो पर एक कार्यक्रम सुना, जिसमें मेरे जैसे ही एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता समझा रहे थे कि टीका सुरक्षित है और क्यों जरूरी है। उस दिन के बाद रामलाल का नजरिया ही बदल गया। उन्होंने कहा, अगर एक छोटा सा टीका मेरी बेटी की जिंदगी को बीमारियों से बचा सकता है तो हम पीछे क्यों रहे। अगले ही दिन सावित्री और रामपाल अपनी बेटी गुड़िया को लेकर कैंप पहुंचे। वहां कई और लड़कियां भी आई हुई थी। शुरुआत में गुड़िया थोड़ी सी डरी हुई थी, लेकिन जब उसने देखा कि बाकी लड़कियां तो बिल्कुल हिम्मत से टीका लगवा रही हैं, उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा मैं भी लगवाऊंगी। टीका लगने के बाद बस थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन 2 दिन में सब ठीक हो गया। धीरे धीरे गांव में और भी लोग इससे प्रेरित हुए। सावित्री देवी अब खुद दूसरी महिलाओं को समझाने लगी। रामपाल भी पंचायत में इस विषय पर बात करने लगे। कुछ महीने बाद एक बदलाव साफ दिखने लगा, ज्यादा लड़कियां टीका लगवा रही थी। लोग अफवाहों की जगह सही जानकारी पर भरोसा करने लगे और सबसे बड़ी बात, अब बेटियों की सेहत को लेकर गंभीरता बढ़ गई। सावित्री देवी अक्सर कहती थी, पहले हम सोचते थे कि ये सब शहरों की बातें हैं, लेकिन अब समझ आया ये हमारी बेटियों की भविष्य की बात है। ये कहानी सिर्फ सावित्री और गुड़िया की ही नहीं है, जो हर परिवार की कहानी हो सकती है जो सही समय पर सही फैसला ले।
0: अच्छा, लेकिन ये HPV नाम तो बड़ा भारी लगता है, जरा खुलकर विस्तार में बताइए।
2: चलिए आपको अच्छे से ही बता देता हूँ। HPV का मतलब है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। नाम बड़ा है पर बात आसान है। ये एक ऐसा वायरस है जो अगर शरीर में आ जाए और समय रहते हुए रोका न जाए तो महिलाओं के अंदर आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय में मुंह का कैंसर पैदा कर सकता है।
0: मतलब ये सीधे सीधे जानलेवा बीमारी तक ले जा सकता है?
2: हाँ जी बिल्कुल, और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है आर्य साहिबा?
0: जी सेहतिया जी, अब तो आप थोड़ा डरा ही रहे हैं।
2: डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए कह रहा हूँ। इस बीमारी की सबसे बड़ी चालाकी ये है कि शुरू शुरू में इसका कोई लक्षण नहीं होता, ना कोई दर्द, ना बुखार, ना कोई ऐसी परेशानी जिससे लगे कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है।
0: मतलब इंसान को पता ही नहीं चलता?
2: बिल्कुल, और यही वजह है कि जब तक लोगों को इसका पता चलता है तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है, बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है।
0: अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत खतरनाक बात है। तो फिर इससे बचने का कोई तरीका तो होगा ना?
2: यही अच्छी खबर है, जहाँ एक तरफ इसका इलाज मुश्किल हो सकता है वहीं दूसरी तरफ इसका बचाव बहुत आसान है।
0: सच में? कैसे?
2: HPV वैक्सीन से, एक छोटा सा टीका जो आगे चलकर आपको बड़ी बीमारी से बचा सकता है।
0: जरा इसे और आसान करके समझाइए ना, ताकि हमारे गांव के लोग भी अच्छे से समझ सकें।
2: चलो आप कहते तो समझा देता हूँ। ठीक, एक उदाहरण से समझिए। जब हम खेत में फसल लगाते हैं तो क्या करते हैं?
0: चारों तरफ बाड़ लगाते हैं ताकि जानवर अंदर ना घुसे।
2: बिल्कुल सही कहा, ताकि फसल सुरक्षित रहे। ठीक वैसे ही ये वैक्सीन हमारे शरीर के लिए सुरक्षा की बाड़ की तरह काम करता है। ये वायरस को अंदर आकर नुकसान करने से रोकता है।
0: ओह,
1: मतलब ये बीमारी को शुरू होने से पहले ही रोक देता है।
2: हाँ बिल्कुल सही समझा आपने, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कोई इलाज नहीं, यही बीमारी को जाने के बाद काम आए। ये तो पहले से ही सुरक्षा देता है ताकि बीमारी हो ही ना पाए।
1: तो फिर ये टीका किसे लगवाना चाहिए, कोई खास उम्र होती है?
2: हाँ इसकी सबसे ज्यादा फायदा तो तब होता है जब इसे सही उम्र में लगवाया जाए। आमतौर पर 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए ये टीका लगवाना सबसे अच्छा माना जाता है।
1: और अगर कोई इससे बड़ी उम्र का हो?
2: तो भी कोई चिंता की बात तो नहीं है, ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेकर बाद में भी ये टीका लगवाया जा सकता है, लेकिन जितनी जल्दी लग जाए उतना बेहतर है।
1: सेहतिया जी एक बात मेरे मन में आ रही है, ये तो लड़कियों का टीका है तो इसमें पुरुषों की क्या भूमिका होती है?
2: यही तो सबसे अहम बात है, महिलाओं की सेहत सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं, इसमें पूरे परिवार की खासकर पुरुषों की उतनी ही जिम्मेदारी होती है।
1: जरा विस्तार से बताइएगा।
2: जरूर, देखिए एक पिता की जिम्मेदारी है कि वह अपनी बेटी को समय पर सही जानकारी दे और उसका टीकाकरण करवाए। एक भाई का कर्तव्य है कि वो अपनी बहन को समझाए, उसे डर या अफवाहों से दूर रखे। और एक पति की फर्ज है कि वह अपनी पत्नी की सेहत का ख्याल रखे, उसे हर जरूरी सुविधाओं और सहयोग दे।
1: सही कहा आपने,
2: अगर घर का पुरुष ही पीछे हट जाएगा या ध्यान नहीं देगा आधी लड़ाई वह हारेगी, इसलिए पुरुषों की भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: मतलब ये सिर्फ महिला स्वास्थ्य का मामला नहीं है?
2: बिल्कुल सही आरजे साहिबा, ये पूरे परिवार का मामला है। जब एक महिला स्वस्थ रहती है पूरा परिवार स्वस्थ रहता है, और जब परिवार स्वस्थ होता है तभी गांव मजबूत बनता है।
1: लेकिन सेहतिया जी एक बात है, गांव में तो तरह तरह की बातें चलती रहती हैं। कोई कहता है कि ये टीका लगवाने से लड़कियां कमजोर हो जाती हैं, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आगे चलकर माँ बनने में दिक्कत होती है।
2: देखिए आरजे साहिबा, यही सबसे बड़ी समस्या है, अधूरी और गलत जानकारी। इस सब जो बातें आप सुन रही हैं ना, ये सच नहीं है बल्कि क्या है, अफवाहें।
1: मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं है?
2: बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको एक एक करके चलिए साफ साफ करके बता देता हूँ। पहली बात, लोग कहते हैं कि टीका लगवाने से कमजोरी आ जाती है, जबकि सच्चाई तो यह है कि टीका लगवाने के बाद बस हल्का सा बुखार आता है या हाथ में थोड़ा सा दर्द हो सकता है, क्योंकि मात्र 1 से 2 दिन में आप अपने आप ठीक हो जाएंगे, इसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
1: अच्छा, और जो लोग कहते हैं कि इससे आगे चलकर बच्चा पैदा करने में दिक्कत होती है,
2: यह भी पूरी तरीके से गलत। इस वैक्सीन में मां बनने की क्षमता से कोई लेना देना ही नहीं है, ये सिर्फ एक वायरस से बचाने के लिए होता है और कुछ भी नहीं।
1: और एक बात जो अक्सर लोग कहते हैं, अगर लड़की बिल्कुल ठीक है तो टीका लगवाने की क्या जरूरत है?
2: यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। देखिए ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं बल्कि बीमारी होने से पहले लगवाना है, और तभी ये काम करता है। अगर लड़की अभी स्वस्थ है तो वही सबसे सही समय है टीका लगवाने का। जैसे हम बारिश आने से पहले छाता रखते हैं ना, वैसे ये पहले सुरक्षा देता है। जरा सोचिए आरजे साहिबा, अगर एक छोटा सा टीका आपकी बेटी को एक बड़ी और जानलेवा बीमारी से बचा सकता है तो क्या हमें इंतजार करना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं, जब बचाव इतना आसान है तो देर क्यों करें? सेहतिया जी एक बात बताइए, क्या हमारे गांव में भी लोग इसे लगवा रहे हैं?
2: हाँ धीरे धीरे लोग समझने तो लगे हैं और आगे भी आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कई लोग डर और अफवाहों के कारण पीछे हटे जाते हैं। यही वजह है कि आज जैसे कैंप बहुत जरूरी है ताकि सही जानकारी हर घर तक पहुंचे। जहां जानकारी नहीं पहुंचती वहां ऐसी कुछ रानी जैसी केस हो जाते हैं। उसी इलाके के पास एक गांव था छोटा पुरवा, यही रहती थी कमला देवी और उनकी बेटी रानी। रानी भी गुड़िया की उम्र की ही थी, हसमुख चंचल और पढ़ाई में बहुत अच्छी। जब गांव में HPV टीकाकरण की बात आई तो आशा दीदी यहां भी आई थी और लोगों को समझाने लगी। उन्होंने कमला देवी से भी कहा, बहन अपनी बेटी को टीका जरूर लगवा देना। लेकिन कमला देवी के घर का माहौल थोड़ा अलग था, उनके पति महेंद्र इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया, ये सब नई नई बातें हैं, हमारे जमाने में कौन सा टीका लगता था और हम तो ठीक हैं। कमला

0: देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने वही दिन याद आया जब आशा दीदी ने समझाया था, जब रानी ने खुद पूछा था। महेंद्र भी चुप हो गए, अपनी आंखों में पछतावा सिर्फ साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीमे से पूछा, वो अगर उस दिन हमने टीका लगवा दिया होता तो शायद आज ये दिन देखना ना पड़ता। इलाज शुरू हुआ लेकिन अब रास्ता मुश्किल था। बार बार अस्पताल के चक्कर काटना, बढ़ता खर्च, परिवार की चिंता, दर्द, रानी की बीमारियों से सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं पूरे परिवार को झिंझोड़ दिया था। आज कमला देवी हर घर जाकर एक ही बात कहती है, अफवाहों पर मत जाओ, हमने अपनी गलती से बहुत बड़ा नुकसान देखा है, तुम ऐसा कभी मत करना। उनकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन आवाज में सिर्फ एक विनती, अपनी बेटियों को बचा लो समय रहते।
1: तो जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए?
0: इन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए, आज ही अपनी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं, आशा दीदी से बात करें और अपनी बेटियों का नाम टीकाकरण के लिए दर्ज करवाएं। और सबसे जरूरी बात, जो सही जानकारी आपने आज सुनी है उसे ही दूसरों तक पहुंचाएं, अफवाहों को नहीं सच्चाई फैलाएं।
1: तो दोस्तों आज हमने जाना कि HPV क्या है, ये कैसे एक गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है और एक छोटा सा टीका कैसे हमें बड़ी परेशानी से बचा सकता है।
0: और याद रखिए, महिलाओं की सेहत सिर्फ उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। और सही समय पर लिया गया एक छोटा सा फैसला जिंदगी भर का बड़ा बदलाव ला सकता है।
1: छोटी सी तैयारी बड़ी बीमारी से बचाव,
0: बेटी का टीका परिवार का भविष्य सुरक्षित बनाए।
1: तो चलिए जानने से पहले लेते हैं सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचाया जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए विषय और कुछ अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।

0: हेलो, दिस साइड आर्जेरीना, आई फ्रॉम मुरादाबाद 89.6। और श्रोताओं, आज भी आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूं मैं, यानी कि HPV टीकाकरण लगवाना, यानी कि टीका लगवाना हमारे लिए क्यों जरूरी है और ये आगे चलकर हमें किन किन बीमारियों से बचा सकता है। इसी टॉपिक पर हम बात करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए हुए हैं, तो मैम से मैं जानना चाहूंगी, आप ही अपने बारे में बताइए।
1: बिल्कुल, हेलो रीना जी मैम, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं डॉक्टर सोनम रस्तोगी हूँ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जिला महिला अस्पताल मुरादाबाद।
0: तो मैम, आज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि HPV टीकाकरण है वो लगवाना क्यों जरूरी है।
1: HPV टीकाकरण बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत सारे कैंसर्स होते हैं, जैसे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है जिसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, और जो प्राइवेट पार्ट से जननांग में कुछ वार्ट्स भी होते हैं, कैंसर के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं, इन सब से बचाव करता है। और इसका जो एफिकेसी है वो 90% तक है, अगर ये सही उम्र में लगवा लिए गए, सही डोज में, सही उम्र में लगवा लिए गए, तो आगे चल के इससे बहुत बचाव हो सकता है। और इंडिया के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडिया में सर्वाइकल कैंसर से मृत्यु बहुत ज्यादा होती है, इसका बर्डन हमारे देश में बहुत ज्यादा है।
0: तो मैम, इसकी कोई एज लिमिट होती है?
1: वैक्सीनेशन के लिए 9 साल से 14 साल की उम्र की लड़कियां और लड़के,
0: मतलब लड़कों में भी?
1: बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ ये सर्विक्स का ही कैंसर नहीं कॉज करता है, ये प्राइवेट पार्ट्स में वार्ट्स, जेनिटल वार्ट्स और ओरोफेरिंजियल कैंसर्स हैं, जैसे मुंह का, गले का, बहुत तरीके के और भी कैंसर्स हैं जो कॉज करता है, और वो लड़कियों में भी हो सकते हैं और लड़कों में भी हो सकते हैं। ये सब चीजें बहुत आगे चल के एज में पता चलती हैं, लेकिन उसके होने की शुरुआत पहले से ही हो जाती है, इसलिए 9 साल से 14 साल की उम्र के बीच में ये लगवा लिया जाए, जब तक बच्चे स्कूल गोइंग एज ग्रुप में है, स्कूल वाले में है, उनकी शादियां नहीं हुई है अभी, कोई किसी तरीके के फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं हुए हैं, उस

0: उम्र में ये लगवा लिए जाएं तो आगे चल के एक बहुत बड़ी जानलेवा बीमारी से बचाव कर।
1: मैम क्या 14 साल के बाद भी हम लगवा सकते हैं?
0: 14 साल के बाद भी लगवाए जा सकते हैं। जितनी उम्र बढ़ जाती है उतना उसका एफिकेसी थोड़ा सा कम हो जाता है। जब फिजिकल कॉन्टेक्ट हो जाते हैं उसके बाद एफिकेसी थोड़ी कम होने लगती है। इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप जितना जल्दी से जल्दी लगवा लें उतना ज्यादा बेटर इसका रहेगा इफेक्ट।
1: तो मैम हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि HPV टीका सही एज में लगवाना क्यों जरूरी है और इसका असर जो बच्चों के ऊपर पड़ने वाला है उसका असर क्या होगा?
0: देखिए वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है। 9 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन लगवाई जाती है, इसकी डोजेज होती है। कई सारे स्ट्रेन्स होते हैं अभी भी, आप देखिए गवर्नमेंट भी लगा रही है, प्राइवेट सेक्टर में भी इसका अवेलेबल है। 4 स्ट्रेन्स वाले वैक्सीन हैं, 9 स्ट्रेन्स वाले वैक्सीन है जो उनसे बचाव करते हैं, जो ये सब बीमारियां कॉज करते हैं। अगर कुछ 2 डोज में लगवाई जाती है।
1: अच्छा 2 डोज।
0: हाँ, और अभी जो गवर्नमेंट लगा रही है वो 14 साल की सभी बच्चियों को लगा रही है, वो 1 डोज भी इफेक्टिव है, ये देखा गया है रिसर्च में, वो सिंगल डोज भी इफेक्टिव है। तो वैक्सीनेशन सेफ है। थोड़ा बहुत इंजेक्शन से जो किसी को दर्द हो गया ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मली वैक्सीनेशन से बहुत साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। आप ये देखें कि आगे चल के कितनी बड़ी जानलेवा बीमारी से बच रहे हैं। अगर सही उम्र में लगवा लिया गया तो 90% चांस खत्म हो जाएगा वो बीमारी होने का।
1: मैम बहुत से घरों में भ्रांतियां भी है कि हम ये टीका नहीं लगवाएंगे, कभी लगवाने से कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो जाएगा, तो मैम कुछ ऐसा भी है क्या?
0: भ्रांतियां होती हैं लोगों को, जब भी कोई नई चीज लगती है लोग घबराते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले कोविड आया था, उसके लिए भी बहुत लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया कि हमारे शरीर में कुछ असर ना हो जाए। तो देखिए देश इतना आगे बढ़ गया है और विज्ञान जो है, टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी आगे बढ़ गई है, जितने भी वैक्सीन एडमिनिस्टर किए जाते हैं ये सब के ट्रायल्स होते हैं, बहुत फेजेस में ये वैक्सीन चेक की जाती है कि इनसे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। फिर बहुत सारे 4-5 स्टेजेस, फेज 1-2 बहुत सारे ऐसे ट्रायल्स होते हैं, वो जब सब फेजेस को वो वैक्सीन क्रॉस कर जाती है कि इससे कोई परेशानी नहीं हो रही है, तभी वो मार्केट में अवेलेबल होती है।
1: ओके।
0: और गवर्नमेंट, आप सोचिए गवर्नमेंट अगर कोई चीज लगा रही है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिना जांच पड़ताल के कोई चीज किसी को भी लगा दी जा रही है।
1: जी जी बिल्कुल।
0: वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए, इससे बिल्कुल मत डरिए। हाँ कभी कभी कुछ ग्रुप्स में ये सोच होती है, वो इसलिए क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है, अभी नई चीजें उन लोगों को पता, जानकारी का माध्यम नहीं है। तो अपने करीबी, आप गवर्नमेंट सेटअप्स में, प्राइवेट सेटअप्स में जहां भी जाना चाहें, अपने करीबी डॉक्टर्स से मिलिए, उनसे बात करिए, पूछिए, ये बिल्कुल सेफ है और आपके बच्चों को आगे आने वाले बहुत बड़े काल से ये बचाएंगे। शरीर में कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है, किसी कोई सोचे कि हमारे कहीं ऐसा ना हो कि सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी का जहां नाम आ जाता है लोग वैसे भी घबरा जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे चल के इनके बच्चे ना हो सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है और आप ये समझे कि आप लोगों को बचाने के लिए लगाया जा रहा है।
1: मैम हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या सिर्फ एक छोटा सा टीका आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों से हमें बचा सकता है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसमें स्ट्रेन्स हैं, सिर्फ कैंसर नहीं, बाकी भी जितने सिर्फ सर्वाइकल कैंसर ही नहीं, सर्वाइकल कई लोग असल में इससे भी, सर्वाइकल गले की हड्डी को भी कहते हैं ना, तो कई लोग उससे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सर्विक्स जो है वो बच्चेदानी के मुंह को भी कहा जाता है।
1: ओके।
0: तो ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है।
1: ओके, मुझे भी आज पता चला है।
0: अच्छा, तो ये बच्चे, ये वो गर्दन की हड्डी जो सर्वाइकल लोगों को गर्दन में दर्द हो जाता है, ये वो नहीं है, ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। और बाकी ओरोफेरिंजियल कैंसर होते हैं जो मुंह में, तो क्योंकि एक ही कैंसर में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे लोगों को आगे चल के बहुत परेशानी होती है, इसलिए लगवाना चाहिए।
1: मैम गांव में यानी कि HPV टीके को लेकर अलग अलग भ्रांतियां होती है, जो जैसे कि मैंने आप सभी से पहले ही पूछा आपसे कि माता पिता चाहते कि ये टीके ना लगवाएं, कभी ऐसा ना हो कि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम हो जाए।
0: इसके लिए जो ANM दीदी लोग हैं, आशा लोग हैं, बहुत सारे लोग वहां जाते भी हैं, उन लोगों से अगर किसी को भी कोई डाउट है तो जाएं, उन लोगों से पूछे, जब वो लोग घर में आते हैं पूरा इन्फॉर्मेशन लें। अधूरा ज्ञान बहुत डेंजरस होता है, आपके बच्चों को कोई बड़ी प्रॉब्लम में भी डाल सकता है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगवाएंगे तो होगा ही होगा, लेकिन इसको प्राथमिकता इसलिए दी जा रही है क्योंकि जब ये हो जाता है तब ये जिस स्टेज में पता चलता है, अगर ये हो गया किसी को तो ये जिस स्टेज में पता चलता है उस स्टेज में कैंसर बहुत आगे बढ़ चुका होता है। उस स्टेज में जब हमको पता चला तो कई बार तो सर्जरी संभव होती है लेकिन उसके बाद भी रेडिएशन है, कीमोथेरेपी है, दवाइयां लगवाई जाती हैं, लेकिन कई बार ये इतनी आगे स्टेज में पहुंच चुका होता है, इसके सिम्टम्स बहुत देर से आते हैं। तो जब तक इंसान को पता चलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है तब तक ये उसके शरीर में पूरा फैल चुका होता है। एक बार खून में आ गया या एक बार इसने आसपास के अंगों को उसमें ले लिया, जैसे हमारी आंतें हैं और यूरिनरी ब्लैडर है, आप बहुत सारी चीजें, वो जैसे जैसे कैंसर बढ़ता है वो अपने आसपास के सारे टिश्यूज को ले लेता है। एक स्टेज में कैंसर ऐसे भी स्टेज में आ सकता है कि जब आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकते, आप सर्जरी करके उसको निकाल नहीं सकते, सिर्फ आपको पता है कि ये मरीज जो है अब ये जाने वाला है, सिर्फ आप उसका दर्द कम करने के लिए उसको दवाई दे सकते हैं लेकिन आप उसके जीवन को रोक नहीं पाएंगे। तो जब तक आपको ये, जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि जब हमें कोई परेशानी नहीं है तो हम क्यों लगवाएं,
1: कभी कभी ये भी लगता है उनको कि अभी तो यार बीमारी छोटा ही तो है, हम बाद में देखने
0: लेकिन जब बाद में देख लेंगे वाली चीज है, उस स्टेज पे बहुत ज्यादा ये कैंसर बढ़ चुके होते हैं, तब पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। और उसमें दर्द भी होता है जब ये बहुत बढ़ जाता है, बहुत तरीके के शरीर में चेंजेस आते हैं और परिवार का वो सदस्य फिर जीवित ही नहीं रह पाता है। तो उससे अच्छा ये है कि आप अभी इसकी जानकारी लें और सही समय पे टीकाकरण करवाएं, जिससे आपके बच्चे आगे के लिए सुरक्षित रहें।
1: मैम एक छोटा सा मैसेज जो देना चाहें,
0: छोटा मैसेज, ये स्कूल्स में भी लगवाई गई है, स्कूल्स में भी मुझे पता चलता है कई बार कि माँ बाप जो है वो बच्चों को डर के मारे नहीं भेज रहे हैं। गवर्नमेंट ने बीच में इनिशिएटिव लिया था स्कूल्स में भी लगाने का, तो कई माँ बाप डर के कारण बच्चों को नहीं भेज रहे थे, लेकिन आप लोग जाइए, सब जगह लगवाइए, गवर्नमेंट सेटअप्स में जाइए, 14 साल की बच्चियों को लग रहा है, सिंगल डोज में भी लग रहा है और भी इसके डोजेज हैं, आप लोग लगवाइए, पता करिए इस चीज के बारे में। बिना पता हुए अधूरी नॉलेज से अपने बच्चों का फ्यूचर खतरे में ना डालें, क्योंकि अभी बच्चे इस स्टेज में नहीं है, 9 से 14 साल के बच्चे बहुत ही कम उम्र के बच्चे ही हैं, उनको तो अभी दुनिया का पता नहीं है, कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लाइफ में आ सकती है नहीं पता है, लेकिन आप लोग को पता है तो आप लोग की ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को आने वाले इस खतरे से बचाएं, उनको बताएं, आपस में आप लोग डिस्कस करिए, कंफ्यूजन है तो लोगों से बात करिए, डॉक्टर से इन्फॉर्मेशन सही तरीके से लीजिए, ये नहीं कि आपने जिससे पूछा है उसको भी नहीं पता है
1: जी।
0: अपने करीबी डॉक्टर्स के पास जाइए, आशा है, आंगनवाड़ी है, ENM है, वो लोग आपको सही सेंटर्स पे लेके जाएंगे, वहां से सही इन्फॉर्मेशन लीजिए और फिर ये डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जो इग्नोरेंस है, लापरवाही है, वो आगे चल के आपके बच्चे की जान को बहुत खतरे में डाल सकती है। तो आपके पास ये मौका है कि आप उस चीज से अपने बच्चों को बचाएं। सरकार भी इस चीज में पूरा ध्यान दे रही है, क्योंकि सब लोग यही चाहते हैं कि उस देश के नागरिक सुरक्षित रहें।
1: जी बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने बोला सिंगल डोज, ठीक है, जो डबल डोज अगर लगवाते हैं तो गैप कितना होना चाहिए?
0: डबल डोज के भी अलग वैक्सीन का अलग टाइमिंग है, वो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अलग स्ट्रेन की है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे।
1: तो चलिए श्रोताओ,
0: अभी जो सरकार दे रही है वो सिंगल डोज में भी बहुत इफेक्टिव मानी गई है, इसीलिए वो सिंगल डोज में भी लाए गए, क्योंकि कई बार लोग सेकेंड डोज के लिए नहीं आ सकते हैं, तो आप लगवाइए इसको।
1: अच्छा लगा,
0: थैंक यू रीना जी।
1: और मैम की आवाज भैया जितनी अच्छी है ना, वो इतनी बहुत प्यारी
0: आवाज आपकी भी बहुत अच्छी है और आपका रेडियो हम लोग सब सुनते हैं, और आपकी आवाज जब लोगों के पास, श्रोताओं के पास पहुंचेगी तो मुझे लगता है अगर उनमें हम लोगों के कुछ बताने से या आप लोगों के कुछ इनिशिएटिव लेने से हमारे देश के लोगों में कुछ पॉजिटिव चीज आए, लोग अपना सेहत इंप्रूव कर पाए, तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस आप लोगों के आगे के एंडेवर्स के लिए।
1: थैंक यू सो मच मैम। और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता जो भाई गलत धारणाएं थी उनको आज क्लियर हो गई होंगी कि भैया HPV टीकाकरण है ना, वो लगवाना बहुत जरूरी है। बाय मैम।
0: बाय बाय।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एफएम मुरादाबाद आप सुन रहे हैं और इस स्टेशन पर आप सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है सेहत सही लाभ कहीं। एक बार फिर से लौट कर आ गए हम आपके दोस्त। और दोस्तों आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। श्रोताओं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि कैसे एक फॉरवर्ड पूरे घर का मन डगमगा देता है, आज हम उसी डर के बीच दो सबसे बड़ी अफवाहों पर सीधा बात करेंगे। क्या HPV वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ सकते हैं? क्या इससे आगे चलकर बांझपन हो सकता है? ऐसे सवाल ने बहुत सी माओं को रोका है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये डर सच है या यह वही बात है जो बार बार दोहराई गई है इसीलिए सच जैसी लगने लगी है। हमारे साथ हैं टीकन भाभी और पिछली बार की हमारी श्रोता सुनीता भी लौट आई है। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपने पिछले एपिसोड के बाद क्या किया है। सुनीता जी आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, और आप हमारे श्रोताओं को बताएंगी कि आपसे जब हमने बात की थी उसके बाद आपने क्या किया।
1: शुक्रिया मुझे अपने सेहत सही लाभ कई के लाइव एपिसोड में जोड़ने के लिए। सबसे पहले मैं कहूंगी कि यह कार्यक्रम एक बार ही अच्छा कार्यक्रम है जो हमें सही राह दिखाता है, चेतावनी भी देता है और सही इलाज पर फोकस करता है। अब आपके सवाल के जवाब में कहना चाहूंगी कि ने अगले दिन ही स्वास्थ्य केंद्र जाकर बात की। डॉक्टर ने भी वही कहा जो कि टीकन भाभी कह रही थी। पर आपसे सच बोलूं, मन में एक गांठ अभी भी है क्योंकि हमारी बेटी की उम्र ही ऐसी है, शरीर बदल रहा है, पीरियड्स नए नए शुरू हो रहे हैं। ऐसे समय में कोई भी दखल डराती है।
2: और यही वजह है कि इस एपिसोड में आपका जुड़ना जरूरी है। माँ तो मैं भी हूँ, लेकिन मेरी बच्ची छोटी है। उन सब माओ को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है जिनकी बच्चियाँ अभी आपकी बेटी की उम्र की हैं, और आपकी इस बात को सही तरह से समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं गलत कल्पना से होती है। और आप इस बात को सही तरह से समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं गलत कल्पना से होती है। लोग सोच लेते हैं कि लड़की जवान हो रही है और कुछ हुआ तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा, फिर हर चीज को उसी डर से जोड़ देते हैं।
0: चलिए सबसे पहले वही सवाल रखते हैं जो हर दूसरे घर में पूछा जा रहा है, क्या HPV वैक्सीन मासिक चक्र को बिगाड़ देती है?
2: सीधा जवाब नहीं। उपलब्ध आधिकारिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती। इतना ही नहीं, पीरियड्स के दौरान भी इसे लेना सुरक्षित बताया गया है, यानी पीरियड्स रुक जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, अनियमित हो जाएंगे। ऐसी बातें वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित नहीं है।
1: पर लोग उदाहरण देते हैं, कोई कहेगा मेरी भाभी की लड़की को टीका लगा है, फिर 2 महीने गड़बड़ रही, तब क्या करें?
2: हर शारीरिक बदलाव को एक घटना से जोड़ देना आसान है। किशोरावस्था में शरीर खुद भी बदलता है। खान पान, तनाव, वजन, पढ़ाई, नींद, कई चीजें पीरियड्स को प्रभावित कर सकती हैं। पर हर उतार चढ़ाव को वैक्सीन पर डाल देना गलत है। विज्ञान यही देखता है कि बड़ी संख्या में लंबे समय तक क्या कोई स्थायी संबंध पाया गया, और जो आधिकारिक सामग्री उपलब्ध है वह साफ कह रहे कि पीरियड्स पर असर नहीं है।
0: यह फर्क समझना जरूरी है, किसी एक घटना का सुना जाना और वैज्ञानिक रूप से साबित होना एक बात नहीं, अब दूसरा सवाल, बांझपन शायद सबसे खतरनाक अफवाह है।
1: हाँ, यही बात घरों में सबसे गहरी चोट करती है। लोग लड़की की सेहत को नहीं, पहले उसका भविष्य, शादी, बच्चा होने की क्षमता, इस सब से जोड़कर देखते हैं। कोई कह दे कि आगे चलकर दिक्कत हो सकती है तो घर वाले एकदम पीछे हट जाते हैं।
2: बिल्कुल, और यही वजह है कि बांझपन वाली अफवाह तेजी से फैलती है। पर उपलब्ध मिथक तथ्य सामग्री साफ कहती है कि HPV वैक्सीन फर्टिलिटी पर असर नहीं डालती। उल्टा आधिकारिक प्रचार में ऐसे अनुभव भी साझा किए गए हैं कि जहां महिलाओं ने सालों पहले वैक्सीन ली है वे आज भी माँ हैं। एक गवाही तो साफ कहती है 2010 में वैक्सीन ली और आज गर्व से माँ है। यह अफवाह को सीधी चुनौती देती है।
1: यह सुनकर थोड़ी राहत मिली क्योंकि हम माओं को यही लगता है कि कहीं आज की जल्दी कल की मुसीबत ना बन जाए।
2: समझ में आता है, लेकिन सोचो अगर किसी चीज का उपयोग दुनिया भर में इतने साल से हो रहा है और लगातार सुरक्षा निगरानी हो रही है, तब भी हम बिना प्रमाण के डर को सच मान लें तो नुकसान किसका होगा? उसी बच्ची का जिसे हम बचाना चाहते हैं।
1: टीकन भाभी, तुमने कहा था कि वैक्सीन 2006 से दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, इतने साल हो गए तो फिर इतना शोर अभी क्यों?
2: क्योंकि सूचना का जमाना है, पर समझ का नहीं। पैफवा एक गली तक रहती थी, अब एक वीडियो हजारों घरों तक पहुंच जाता। ऊपर से स्वास्थ्य, शरीर, प्रजनन, ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर लोग खुलकर बातें नहीं करते। जहां चुप्पी ज्यादा होती है वहां अफवाह और तेज लगती है।
1: घर में यही होता है, पीडियर्स पर खुलकर कौन बात करता है। लड़की भी झिझकती है, माँ भी। ऐसे में बाहर से कोई डरने वाली बात आ जाए तो वह मन में बैठ जाती है।
2: इसलिए इस विषय पर साफ, सहज और सम्मानजनक भाषा जरूरी है। देखो, पीरियड्स को दी चीज नहीं, शरीर की प्रक्रिया है। फर्टिलिटी कोई शर्म की बात नहीं, पर स्वास्थ्य का हिस्सा है। जब हम इन बातों को छुपाते हैं तब झूठ इन्हीं अंधेरों में पनपता है।
0: यह बात तो सिर्फ चिकित्सा की नहीं, सामाजिक सोच की भी है। खासकर दक्षिण एशिया समाजों में लड़की के शरीर पर नियंत्रण, शर्म और अफवाह का जाल बहुत गहरा होता है। इसीलिए सही जानकारी को सिर्फ सूचना नहीं, सामाजिक हस्तक्षेप की तरह देखना चाहिए।
1: एक और डर बताऊं, कुछ लोग कहते हैं इतनी छोटी लड़की को ऐसा टीका क्यों?
2: पर आधिकारिक जन संदेश यही कहते हैं कि कम उम्र में सुरक्षा बेहतर होती है, यह बाद में देखेंगे वाली चीज नहीं है। 14 साल की लड़कियों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराया जाना इसी सोच का हिस्सा है कि सुरक्षा समय पर मिले। रोकथाम देर से नहीं, पहले की जाती।
1: और अगर कोई कहे कि हमारी बेटी तो बिल्कुल स्वस्थ है, उसे क्या जरूरत?
2: यही तो रोकथाम है। टीका बीमारी का इलाज नहीं, बीमारी से बचाव का साधन है। स्वस्थ बच्ची को इसलिए दिया जाता है कि भविष्य में गंभीर जोखिम कम हो। अभी तो ठीक है, कहकर बचाव टालना समझदारी नहीं है।
0: अब सवाल जो कई परिवार पूछते हैं, क्या सभी को एक जैसा असर होता है? अगर किसी को हल्का बुखार हो जाए तो? टीकन देवी,
2: इंजेक्शन के बाद हल्की स्थानीय प्रतिक्रिया, जैसे दर्द, लालपन, हल्का बुखार, ये कई टीकों में संभव होते हैं, लेकिन इन्हें स्थायी नुकसान या गंभीर खतरे की बराबर नहीं माना जा सकता। बड़ी बात यह है कि सुरक्षा निगरानी चलती रहती है और गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं। हमें संतुलित दृष्टि रखनी होगी, हल्की अस्थायी प्रक्रिया बनाम लंबे समय की सुरक्षा।
1: अब मुझे लग रहा है कि हमें कितनी सारी बातों को बहस, किसी ने कहा कि आधार पर सच मान लिया।
2: यही तो होता है, और खासकर लड़की के शरीर से जुड़ी बातें। हमारे समाज में लड़की के भविष्य को इतना जोखिम का मैदान मान लिया गया है कि कोई भी बातें सीधे उस पर असर डालती हैं। पर हमें ये पूछना चाहिए, जो लोग डर फैला रहे हैं, क्या उनके पास प्रमाण है? क्या वे डॉक्टर हैं? क्या वे आधिकारिक स्रोत बता रहे हैं? क्या उनका दावा बड़े अध्ययन से समर्थित है? अगर नहीं तो उनके शब्द क्यों हमारे घर का फैसला करे?
0: चलिए अब एक छोटा सा मिथक बेनाम तथ्य खंड करते हैं। मिथक, HPV वैक्सीन से पीरियड बिगड़ते हैं। तथ्य, उपलब्ध आधारिक सामग्री कहती है कि इसका मासिक धर्म पर असर नहीं होता, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। मिथक, HPV वैक्सीन से बांझपन होता है। तथ्य, आधारिक जागरूकता सामग्री इसे अफवाह बताती है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं बताया गया है। गवाही में ऐसी महिलाएं भी सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले वैक्सीन ली और आज भी माँ हैं। मिथक, अभी छोटी है, बाद में देखेंगे। तथ्य, समय पर सुरक्षा का ही महत्व है। 14 साल की लड़की के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्धता इसी सोच पर आधारित है। मिथक, मुफ्त है तो भरोसे के लायक नहीं। तथ्य, मुफ्त होना इसकी कमतर होना नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सभी के लिए उपलब्ध होना है।
1: जब आप ऐसे एक एक करके बताते है ना, तो बात बैठती है, नहीं तो घर में सब उथल पुथल हो जाता है।
2: इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, मुद्दों को टुकड़ों में समझो, एक झूठ को एक सच से काटो, तभी मन साफ होगा।
1: अच्छा, अगर मेरी बेटी खुद पूछे, अम्मा यह टीका मुझे क्यों लेना चाहिए, तो मैं क्या कहूँ?
2: ना, क्योंकि कुछ बीमारियों से बचाव पहले ही किया जा सकता है, पर टीका तुम्हें भविष्य में एक गंभीर बीमारी के जोखिम से बचाने का तरीका है। और अगर वह पूछे क्या इससे मेरे पीरियड्स पर असर होगा, तो कहो नहीं। डॉक्टर और सरकारी जानकारी यही कहती है कि ऐसा नहीं होता। अगर वह पूछे क्या मैं इससे आगे चलकर माँ भी नहीं बन पाऊंगी, तो कहो यह अफवाह झूठी है।
0: यह भी ध्यान रहे कि बच्चियों से बात करते समय भाषा डराने वाली नहीं, भरोसा देने वाली हो। उन्हें यह महसूस हो कि उनके शरीर के बारे में फैसला उनसे छुपाकर नहीं, समझाकर लिया जा रहा है।
1: हमारे यहाँ तो कई बार बच्चे पूछा भी जाता है, बस बड़े लोग आपस में तय कर लेते हैं
2: और फिर बच्ची डर जाती है। इसलिए संवाद जरूरी है। बच्ची को समझाओ कि यह सुरक्षा का कदम है, उसे अधिकार है पूछने का कि यह किस लिए है। यह भी सेहत शिक्षा का हिस्सा है।
0: और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, स्वास्थ्य लोकतंत्र होना चाहिए, विशेषकर स्वास्थ्य लोकतांत्रिक होना चाहिए, विशेषकर लड़कियों और महिलाओं के मामले में। जानकारी ऊपर से थोप दी जाए और सवाल की जगह ना हो तो भरोसा नहीं बनता।
1: टीकन, कल रात मैंने अपनी बेटी से खुलकर बात की। पहले तो वह हंस रही थी, कहती है, अम्मा आप तो हर बात पर डर जाती हो। फिर मैंने उसे कहा कि डरती हूँ क्योंकि दुनिया आसान नहीं है, लेकिन फिर मैंने यह भी कहा कि अब मैं सही जानकारी लेकर चलूंगी। वह बोली, ठीक है अम्मा, हम साथ चलेंगे।
2: देखा, जब माँ खुलकर बात करती है तो बच्ची भी मजबूत होती है, डर आधा हो जाता।
1: और मैं यह भी सोच रही हूँ कि मेरी ननद की बेटी के घर भी यही बात लेकर जानी चाहिए। वहाँ तो पीरियड्स का नाम लेते ही लोग भोहे चढ़ा लेते हैं।
2: तो यही बदलाव है, शर्म की जगह समझ। स्वास्थ्य की बातें जितनी खुलकर होंगी, अफवाह उतनी कम चलेगी।
0: अब अंत से पहले एक और उपयोगी बात, अगर परिवार में किसी महिला की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो नियमित सर्वाइकल जांच के बारे में भी जानकारी लेना आवश्यक है। आधारिक जन संदेशों में यह भी कहा गया है कि नियमित स्क्रीनिंग समय पर पहचाने और सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यानी एक तरफा किशोरियों के लिए वैक्सीन, दूसरी तरफा वैश्विक महिलाओं के लिए जांच, दोनों साथ चलने चाहिए।
1: यह बात मेरे मन में गहरी बैठ गई। हम अपनी बेटी के लिए टीका सोच रहे हैं, पर अपनी जांच के बारे में कभी नहीं सोचा।
2: यही तो, महिलाएं अक्सर सबकी चिंता करती हैं, अपनी नहीं। अब इस कहानी को उलटना है, अपनी देह की जिम्मेदारी लेना शर्म नहीं समझदारी है। और मेरी तरफ से जिस बात पर झूठ सबसे ज्यादा फैलता है उसी पर सबसे साफ बोलना चाहिए। शरीर, पीरियड्स, फर्टिलिटी, ये सब शर्म की नहीं स्वास्थ्य की बातें हैं।
1: और मेरी तरफ से अब मैं अगर किसी को पीरियड्स बिगड़े या बांझपन आ जाए कहते सुनूंगी तो डरूंगी नहीं, पूछूंगी, तुम्हारे पास प्रमाण क्या है?
0: यही है सही दिशा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मुफ्त उपलब्धता सरकारी केंद्र यूविन और बड़ी महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की अहमियत, यानी सिर्फ टीका नहीं, पूरी सुरक्षा श्रृंखला। तब तक याद रखिए, अफवाहें तेज होती हैं पर सच टिकाऊ होता है। और श्रोताओं, यही है एक सामाजिक परत और समझनी चाहिए। कई बार लड़कियों के स्वास्थ्य से जुड़े फैसलों में लड़की की आवाज सबसे कम होती है, लेकिन डर सबसे ज्यादा उसी पर थोपा जाता है। उसे कहा जाता है, ये मत पूछो, ये बात बाहर मत करना, ये शरीर की बात है, चुप रहो। ऐसी चुप्पी में सही स्वास्थ्य शा पनप ही नहीं सकती।
2: बिल्कुल, और जब चुप्पी होती है तब पड़ोस, रिश्तेदार, मोबाइल वीडियो, यही गुरु बन जाते हैं। जबकि गुरु डॉक्टर होना चाहिए, आशा होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, प्रमाणित जानकारी होनी चाहिए।
1: अब मैं समझ रही हूँ कि सवाल पूछना भी सेहत का हिस्सा है। पहले लगता था ज्यादा पूछना मतलब झगड़ालू होना, अब लग रहा है ना पूछना ही बड़ी गलती है।
2: और खासकर बेटियों के मामले में, हम उन्हें पढ़ाई के लिए कहते हैं, समझदार बनने को कहते हैं, पर शरीर और स्वास्थ्य पर सवाल पूछने का हक नहीं देते। यह दोहरा व्यवहार है। अगर हम सच में चाहते हैं कि बेटियां मजबूत हों तो उन्हें जानकारी भी देनी होगी।
0: यह बिंदु नीति और समाज दोनों के स्तर पर महत्वपूर्ण है। किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता सिर्फ उपलब्धता पर नहीं, सामाजिक स्वीकृति और भरोसे पर भी निर्भर करती है। और भरोसा तभी बनता है जब संवाद संपूर्ण हो।
1: एक बात और मैंने देखा है, जब भी महिलाओं की बीमारी की बात होती है लोग उसे धीरे से बोलते हैं, जैसे कोई पूछने वाली चीज हो। कैंसर शब्द आते ही लोग नजरें फेर लेते हैं।
2: हाँ, और यही कारण है कि देर होती है। डर, शर्म और चुप्पी बीमारी को बढ़ाते हैं, इसलिए सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी पर खुलकर बात करना जरूरी है, क्योंकि यह रोकी जा सकती है और महिलाओं की जान बचाई जा सकती है।
0: और यह सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं, परिवार और सामुदायिक का भी मामला है। जब एक महिला बीमार होती है तो उसका असर पूरे घर पर पड़ता है, कमाई, बच्चे की देखभाल, मानसिक बोझ, इलाज का खर्च सब। इसीलिए रोकथाम को महिलाओं का निजी मुद्दा समझना गलत है।
1: सही कहा, अगर माँ बीमार पड़े तो पूरा घर हिल जाता है, फिर भी हम माँ की सेहत को आखिर में रखते हैं।
2: इसलिए मैं कहती हूँ कि बेटी की सुरक्षा, माँ की जांच और घर की समझ तीनों साथ चले, तभी असली लाभ है, तभी सेहत सही लाभ कई सच में घर तक पहुँचे।
0: अब एक छोटा सा अभ्यास, मान लीजिए आपसे कहें, मैंने सुना है HPV टीका लगाने के बाद लड़की माँ नहीं बन सकी, आपका क्या जवाब होगा? पहला, एक घटना की कहानी विज्ञान नहीं होती। दूसरा, आधारिक सामग्री बांझपन के दावे को मिथक बताती है। तीसरा, ऐसी महिलाएं सामने आई हैं जिन्होंने साल में पहली बार टीका लिया है और आज माँ है। चौथा, स्वास्थ्य निर्णय डॉक्टर से पूछकर ही लें। यह चार स्तरीय जवाब हर श्रोता अपने पास रख सकता है। आज की मुख्य बातें, HPV वैक्सीन से पीरियड प्रभावित नहीं होते। दो, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। तीन, यह बांझपन का कारण नहीं बनती। चार, यह दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। पाँच, यह सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मुफ्त उपलब्ध है, खासकर 14 साल की लड़कियों के लिए। और छह, डर को दबाइए मत, पर उसका जवाब फॉरवर्ड से मत ढूंढिए। सात, बेटियों से खुलकर बात कीजिए, उन्हें जानकारी दीजिए, सिर्फ आदेश नहीं।
1: अब लग रहा है कि मैं भी ठीक से जवाब दे पाऊंगी। पहले सब घबरा जाती थी।
2: और यही आत्मविश्वास चाहिए। जानकारी का मतलब सिर्फ खुद समझना नहीं, जरूरत पड़े तो दूसरों को समझाना भी है। और हम सब मिलकर आज ही शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
2: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएं और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम कर अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
2: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
3: सेहत सही तो लाभ कई।
0: तो श्रोताओं, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। फिलहाल इस प्रोग्राम से अब लेता हूँ मैं जाने की इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और मोड़ पर एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सेहत सही तो लाभ कई। नमस्कार श्रोताओं।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बन चुका है।
3: इसी का सुखद परिणाम है उत्तर प्रदेश और जापान की साझेदारी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जापान यात्रा से ये संबंध और सुदृढ़ हुए।
2: यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रा और पर्यटन के क्षेत्र में खुलेंगे निवेश के नए द्वार। साथ ही हजारों रोजगार का मिलेगा सशक्त आधार। में 500 एकड़ की जापानी सिटी से यूपी जापान औद्योगिक साझेदारी को मिलेगी नई ऊंचाई।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 पे। हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद। और ऑफ कोर्स जब आप मुरादाबाद रेडियो सुनते हो तो यहाँ एंटरटेनमेंट के साथ साथ होती है ढेर सारी जानकारी। और आज का ये जो प्रोग्राम है बहुत ही स्पेशल है। आप सुन रहे हैं किसान भाइयों, आपका फेवरेट प्रोग्राम खेती किसानी। और आज इस प्रोग्राम में एक खास विषय पे चर्चा करने वाले हैं। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान भी उपस्थित है हमारे बीच में। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड से हमारे साथ एक सिंह वरिष्ठ प्रबंधक जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आज सर के साथ बहुत सारी बातचीत हम करने वाले हैं स्टूडियो में और ढेर सारी जानकारियां जो है किसान भाइयों आज आपको मिलने वाली है। तो आइए सर का स्वागत करते हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 के स्टूडियो में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? नमस्कार।
4: मैं बहुत अच्छा हूं आनंद जी, और जो आपने स्वागत किया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत जो धन्यवाद। और जितने भी श्रोता मुझे सुन रहे हैं उनको मेरा नमस्कार
0: जी। और आज का विषय बहुत ही स्पेशल है। आज की वार्ता का जो विषय है वो है घुलनशील पोषण उत्पाद एवं उनके लाभ। आज इस पर हम बात करेंगे। सर आपका स्वागत है हमारे स्टेशन में।
4: आनंद जी स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को मेरा और मेरी जो कंपनी चंबल फर्टिलाइजर की ओर से नमस्कार जी। और स्वागत इस कार्यक्रम में।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सबसे पहला प्रश्न होगा भारत सरकार की जो ये
4: पीएम प्रणाम योजना है,
0: पीएम प्रणाम योजना,
4: और पीएम प्रणाम खास तौर से जो जो हमारी खेती है, जो हम जो मतलब फसल उगाने का तरीका है
0: जी,
4: उसमें जो पोषण का तरीका है उसके उसका संज्ञान भारत सरकार ने वैज्ञानिकों के द्वारा लिया है। और उसमें प्रयास ये है कि जो जो जो उर्वरकों का इस्तेमाल हो रहा है
0: जी जी,
4: वो संतुलित हो और सही ढंग से हो, जिससे कि उनका जो अतिरिक्त इस्तेमाल है या सही ढंग से जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है उससे जो होने वाले नुकसान है उनसे हमारी खेती बचे, नंबर एक तो उसका ये उद्देश्य है
0: जी।
4: तो उसके लिए सरकार ओवरऑल बहुत सारी योजनाएं लेके आ रही है, जैसे कि शैक्षणिक योजनाएं हैं, बहुत सी ऐसी जानकारियां लोगों तक जो उपलब्ध जो हो रही है सरकार की तरफ से, जिससे उनको जो जानकारी मिल रही है कि संतुलित उर्वरक उपयोग क्या लाभ है। बहुत सारे उर्वरक ऐसे भारत सरकार की ओर से लाए जा रहे हैं जिनमें एक संतुलन के रूप में ही जो पोषक तत्व उपलब्ध है, जिनको कि हम एनपीके बोल देते हैं। बहुत से एनपीके ऐसे भी हैं जिनमें सल्फर का भी पोषक तत्व है। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर, ये सारे पोषक तत्व करीब करीब उसमें उपलब्ध होते हैं। तो ओवरऑल एक ही उर्वरक में हमें सारे पोषण उपलब्ध हो जाते हैं, तो हमें अलग से उर्वरक और किसी उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह की कुछ योजना है। इसके अलावा ये है कि ओवरऑल अगर हम जो देखें तो एक समग्र रूप में जो खेती में जो खर्चा है उसको कम करना का उद्देश्य है। तो वो ऐसा खर्चा नहीं है कि खाद के ऊपर ही, मतलब सरकार ये चाहती है कि जो अपना खाद है उसके ऊपर ही खर्चा कम हो, जो हमारे किसान है जो वो खेती पे खर्चा कर रहे हैं उसमें भी कमी आनी चाहिए, क्योंकि जब उनके खर्चे में कमी होगी तो उनकी आमदनी में उसी अनुपात में वृद्धि भी होगी। दूसरा ये है कि जो हमारे अपने जो संसाधन है, अपने संसाधन जैसे गोबर की खाद है
0: जी,
4: कंपोस्ट खाद है
0: जी,
4: इसके अलावा जो फसल अवशेष है, फसल अवशेष मान के चलो जैसे कि हमने धान उगाए, धान का ऊपर का हिस्सा हमने अनाज ले लिया, पुआल रह गया उस, ठीक है, अब जो वो है हम उसको सुधारे तो बेकार की चीज है, नहीं, जितना पौधे ने जो पोषण उसमें से खेत में से लिया है लगभग उसका 50 से 60% जो भी उसने उसमें से तत्व

0: लिए वो उस चीज में उपलब्ध होते हैं। 30-40% सिर्फ अनाज में गए, बाकी पौधे में। अगर वह पौधे का जो अवशेष है जिसको हम फेंक रहे हैं, अगर हमने उसको सड़ा के खेत में ही इकट्ठा किया या खेती जो मिट्टी उसमें मिला दिया, तो वो एक तरह से उर्वरक का ही काम करेगा, पोषण का ही काम करेगा। और अगर हम अच्छे से ध्यान देंगे, मिट्टी की जाँच कराएंगे, तो उसी अनुपात में हम जो उर्वरक का इस्तेमाल है उसमें कुछ कमी ला सकते हैं, जिससे हमारे खर्चे कम होंगे। तो भारत सरकार का बड़ा ही एक अहम जो एक तरह से मतलब प्रयास है कि कैसे भी टिकाऊ खेती की तरफ हम जाए, जो हमारी जो उर्वरक जो आयतित उर्वरक हैं उनके जो इस्तेमाल में जो मतलब जो है एक तरह से अंधाधुंध उनका जो इस्तेमाल हो रहा है उसमें जो कैसे कमी लगाई जाए, या जो उनका असंतुलित जो उपयोग हो रहा है उसको जो एक तरह से संतुलन में लाया जाए, और जो हमारे खेती में संसाधन अपने हैं जो कि पोषण है हमारी फसल के लिए, जो कि एक तरह से जो हमारे खेत की मिट्टी है उसके लिए आहार है, वह हम ज्यादा से ज्यादा जागृत करें, हम उसके बारे में जानकारी रखें और उसका हमारे किसान लाभ ले सकें, जिससे कि हम धीरे धीरे टिकाऊ खेती की ओर बढ़े। टिकाऊ खेती से अर्थ ये है कि ऐसा न हो कि हम इसी तरह से जो हमारे उर्वरक हैं या जो मतलब पोषण है उसका असंतुलित इस्तेमाल किए, और जो हम लगातार जो फसलें उगाते जा रहे हैं उससे बहुत अत्यधिक जो मतलब जो दोहन करते रहे, तो एक दिन ऐसा न हो कि हमारे खेत अच्छी फसल न उगा पाए। तो ये पीएम प्रणाम का एक अहम उद्देश्य जो ये है, इसके लिए सरकार हर स्तर पर कार्य कर रही है। हम लोग भी जागरूकता का अभियान अपनी ओर से जारी रखते हैं, किसानों को समझाते हैं, गांव गांव जाके मीटिंगें, अन्य कार्यक्रम इस तरह से आयोजित करके संतुलित उर्वरक उपयोग में हम अपनी जानकारी देते हैं। हमारी कृषि की प्रयोगशालाएं भी हैं, उनसे मिट्टी की जांच हमारे यहाँ पे जो फ्री होती है, लगभग साल के लगभग 3000 सैंपल हम जो चेक करते हैं और उसकी रिपोर्ट सीधे फार्मर तक पहुँचाते हैं, और उसके साथ साथ उनको समझाते भी हैं कि इस रिपोर्ट में क्या है और किस तरह से आपने जो उर्वरक है उनका इस्तेमाल करना है, पोषक तत्वों का इस्तेमाल करना है और अपने खेत को कैसे स्वस्थ रखना है।
1: इसी बीच मेरा प्रश्न रहेगा सर कि प्रधानमंत्री द्वारा उर्वरक उपयोग के बारे में जो संबोधन दिया गया है उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे श्रोताओं को भी दीजिए।
0: आनंद जी, वो जो संबोधन है वो खास तौर से जो प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी अच्छी सलाह दी है कि जो भी उर्वरक है उनका हम सही ढंग से इस्तेमाल करें। अगर सही ढंग से इस्तेमाल होगा तो उनकी सही मात्रा का इस्तेमाल होगा। अगर सही ढंग से हम जो है उसको जो है मतलब नहीं करते हैं तो ज्यादा मात्रा का हम इस्तेमाल करने लगते हैं। तो उसी के बारे में उन्होंने बड़ा अच्छा संबोधन दिया है और उसकी एक रिकॉर्डिंग है, तो आप मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वो आप अवश्य किसानों को सुनाएं, उससे उनको एक मार्गदर्शन जो आएगा कि वो उर्वरक के उपयोग में सावधानी बरतें और उसका सही जो इस्तेमाल हो उसके बारे में संज्ञा।
1: थैंक यू सो मच। तो श्रोताओं, बिना किसी देरी के आइए जरा सुनते हैं इस ऑडियो को।
2: मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी, और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है, और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दे, ये धरती माँ हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है, दो गोली की जरूरत है चार गोली खा लें तो शरीर को फायदा नहीं नुकसान हो जाता है, वैसा ही ये धरती माँ को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दूं, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती माँ हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है, ये हमारी माँ है। हमें उस माँ को भी बचाना है।
1: बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये जानकारी और मुझे उम्मीद है श्रोताओं आपको भी अच्छी लगी होगी। इसी बीच अनिल कुमार सर आपका स्वागत है एक बार फिर से,
3: और इसी बात के साथ बिना किसी देरी घुलनशील पोषण क्या है और इसके लाभ क्या है इसके बारे में बताइए।
0: जी हाँ, घुलनशील पोषण मतलब ऐसे मान के चलिए कि जो भी रासायनिक उर्वरक या और उत्पाद हम इस्तेमाल करते हैं वो स्थूल रूप में होते हैं, दाने के रूप में होते हैं या चूरे के रूप में होते हैं और उनको हम अपने खेत में फैलाते बिखेरते मिट्टी में मिलाते हैं। लेकिन पोषण की अन्य तकनीकियां भी हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे कि हम उनको घोलें और पानी में अच्छे से घोल के फिर हम उसका छिड़काव, उस समय ये क्यों आवश्यक है या इसकी क्यों आवश्यकता होती है, हमें इसके क्या लाभ हैं? इसके लाभ ये होते हैं कि जो हमारी खड़ी फसल है उसमें फसल हमारी अच्छी बड़ी हो गई, अच्छा साइज ले गई है, तो अगर उसमें हम कोई उर्वरक इस्तेमाल करते हैं जो हमें छींट के डालना है तो उसके आड़े क्या आता है, फसल के पत्ते आ जाते हैं और वो मिट्टी पर सही ढंग से नहीं आ पाती और जो है जो हमारी फसल है उसके पत्ते के ऊपर गिरती है तो वो पत्तों को भी खराब करती है।
3: हाँ जी,
0: नंबर एक ये है
3: जी।
0: दूसरा ये है कि जब भी इस तरह के हम उर्वरक प्रयोग करते हैं जो कि स्थूल रूप में होते हैं तो उनका बहुत सारा हिस्सा नष्ट भी हो जाता है, हवा में उड़ के है या जो पानी के साथ नीचे जो है आपका निकल जाता है, बह के चला जाता है। तो इन सारी जो स्थितियों से जो हम एक तरह से इस तरह का बचाव करें कि जो भी पोषण हम दें वो पौधे को सीधा मिले और पूरी पूरी मात्रा में मिल जाए। तो जो भी ये हमारे जो इस तरह के उर्वरक हैं जो कि पानी में घोल के इनका स्प्रे किया जाता है, उनके अंदर ये विशेषता होती है कि वो पूरी पूरी मात्रा में पौधे को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि जो पौधे की पत्तियां हैं उनके अंदर बहुत सारे छिद्र होते हैं जिनको हम अंग्रेजी में स्टोमेटा बोल देते हैं, वो इस को सोखती हैं और अपना जो उनका तंत्र है जाइलम फ्लोएम जो भी है उसके द्वारा जो पौधे के हर अंग में इसको भेजती है, हर एक सेल में हर एक कोशिका में इसको भेजती है, जिससे उसका अच्छा विकास होता है, अच्छे से पोषण मिलता है। और इसमें अच्छी बात यह है कि आप पौधे की मांग के अनुसार ही इस तरह के पोषक तत्व या इस तरह के उत्पाद चुन सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि हमें इसमें 5 तरह के सूक्ष्म तत्व देने है और एक मुख्य तत्व देना है तो उस तरह का उत्पाद भी आज की तारीख में उपलब्ध है बाजार में। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि कोई खास पोषक तत्व है उसका भी हो सकता है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, वो आप पूछ सकते हैं कि हम इसमें इसको ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये बहुत सारी सुविधाएं हैं। दूसरी बात यह है कि आपने सुना होगा कि एक हमारे पास एक तकनीक आई है ड्रोन तकनीक, आमतौर पर शादियों में भी हम देखते हैं फोटोग्राफी के लिए होता है, लेकिन इसका खेती में भी बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे ड्रोन है जिनके अंदर हम घोल की टंकी लगाते हैं, फिर उसमें GPS लगा होता है, फिर वो उस हिसाब से मार्क करके खेत में समान रूप से फसल के ऊपर छिड़काव करता है।
3: अरे वाह।
0: तो उससे क्या होता है कि हमारी समय की बचत होती है, पानी की बचत होती है और बिल्कुल सही मात्रा में पोषण हमारे पौधे को मिल जाता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप धीरे धीरे प्रयास ये करें कि ड्रोन तकनीकी का आप इस्तेमाल करें और ये जो इस तरह के जो मतलब अब मैं ये कहूँ कि आपकी जो ये है सिर्फ इसी के लिए इस्तेमाल नहीं, इससे कीटनाशक का भी इस्तेमाल जो स्प्रे कर सकते हैं और जो खरपतवार नाशी का भी स्प्रे कर सकते हैं, फफूंद नाशी का भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन पोषण में इसका खास महत्व है क्योंकि जब आप खेत में घुस नहीं सकते हैं तो ये ऊपर से ही आप एक जगह बैठे रिमोट से कंट्रोल करके ये आराम से काम कर। आजकल ऐसा भी है कि सपोज अगर आपके पास नहीं है तो बहुत से लोग रिमोट रखते हैं, भारत सरकार ने अपनी योजना लाई है उनसे आप उनको आप अनुरोध करेंगे वो आपके आएंगे, आपसे वो एक शुल्क लेंगे और आपके यहाँ पर वो ड्रोन से स्प्रे करके जाएंगे। तो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, आगे के समय में ये सब तकनीकियां हमारे और जो काम आएंगी और हमें सहायता करेंगी अच्छी खेती करने के लिए। तो ये जो ऐसे उत्पाद हैं, जो ऐसे पोषण उत्पाद हैं जो कि जो पानी में घोल के स्प्रे किए जाते हैं, इनके लाभ तो मैंने आपको बताई, इनके उपयोग की जो तकनीकियां हैं उनमें भी बहुत सारे सुधार हो रहे हैं। तो ये सारी जानकारियां मैं समझता हूँ किसान इनका संज्ञान लेंगे और इनको अपनी खेती में बढ़ावा देते रहेंगे।
3: क्या सर प्रश्न है, उत्तम प्रणाम क्या है?
0: उत्तम प्रणाम हाँ बिल्कुल। अब वो मैं अपनी कंपनी का एक उत्पाद है जिसका नाम है उत्तम प्रणाम। यह एक तरह से फास्फोरस युक्त उत्पाद है और इसके अंदर बहुत सारे और भी सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध हैं।
3: अच्छा,
0: अब ये जो उत्पाद है
3: जी,
0: यह हमारी फसल को एक सही समय पर जो मतलब पोषण होना चाहिए वह देता है। इसके दो समय पे इस्तेमाल हो जाते हैं। पहला होता है बीज उपचार, लेकिन अब बीज उपचार क्या है कि फसल हमारी खड़ी है, खड़ी फसल में अगर हम इसको देना चाह रहे हैं तो हम इसका स्प्रे कर सकते हैं और ऐसी अवस्था पे स्प्रे करें जबकि हमें लगे कि फसल को एक पोषण की जरूरत है, तो उस समय पर ये उत्तम प्रणाम है। काफी लाभदायक उत्पाद है, 250 ml की पैकिंग में भी आता है, तो ये 250 ml एक एकड़ के लिए है, तो उसी हिसाब से इसकी पैकिंग जो तैयार की गई है, आप इसका प्रयोग करके अनेक लाभ अपनी फसल में ले सकते हैं, उसका विकास अच्छा होगा और उसका तने वगैरह का विकास भी बड़े अच्छे से होगा।
3: अरे वाह जी, बहुत बढ़िया सर। इसी बीच मैं आपसे ये और पूछना चाहूंगा कि उत्तम प्रणाम का उपयोग कैसे और करें।
0: हाँ, उत्तम प्रणाम का कैसे और कब उपयोग करें
3: जी,
0: तो कैसे करें उसमें आप देखिए, इसका स्प्रे करना है जो फसल के ऊपर, सामान्यतः सभी फसलों के लिए 250 ml 200 लीटर पानी में घोल के आप छिड़काव कीजिए। अगर आपकी फसल आपको लग रहा है कि 200 ml पर वो आपके जो 200 लीटर पानी ज्यादा है तो 150 लीटर पानी ले सकते हैं, और आपको लग रहा है कि थोड़ा पानी की जाए तो 250 लीटर भी आप पानी ले सकते हैं, और जो फसल पे छिड़काव आपको करना है
3: जी जी।
0: आपने पूछा कि जो इसकी मतलब जो कैसे करें स्प्रे, इसके बारे में पूछा है
3: जी,
0: उपयोग कैसे करें और जो मतलब कब करें तो अलग अलग फसल की अवस्थाएं हैं, उनके बारे में मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। जैसे धान की जो फसल है उसमें जब शाखाएं जो निकलना शुरू हो जाती हैं और पौधा सघन होना शुरू हो जाता है उस समय पर इसका आप करें, और दूसरा अगर आपको लगता है फिर भी आपको आवश्यकता पड़ रही है तो जब इसकी जो है फूल बनने की अवस्था है, या जब आपको लग रहा है कि फूल बना अनाज भी बनना शुरू हो गया उस समय पर भी आप इसका एक स्प्रे कर सकते हैं। दो स्प्रे रिकमेंडेड है, लेकिन अगर आपको लगता है दो नहीं हो पाए तो एक स्प्रे करके भी इन बीच में कोई भी समय चुन के आप धान में स्प्रे कर सकते हैं। दूसरी फसल फिर आती है कपास है, इसका जो शाखा विकास है, फूल बनने की अवस्था है, इनमें से कोई भी अवस्था आप जो चुन लें उस अवस्था पर आप इसका स्प्रे करें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। फसल का जो तना है, फूल का जो विकास है, और जो भी इसका पूरा जो तंत्र है वो सशक्त हो जाता है, और फिर वो ज्यादा मात्रा में फल और उसका फूल का वो जो एक तरह से निर्माण करेगा
3: जी।
0: और जिससे कि हमें उपज अच्छी रहेगी। उसके बाद जैसे उड़द मूंग यहाँ पे अगर आप कर रहे हैं उसके लिए भी बड़ा जो है सही समय ये जब फूल आने वाली अवस्था हो और फूल से फली बनने के बीच की भी अवस्था है उसमें भी आप इसका स्प्रे करें और लाभ ले सकते हैं
3: जी।
0: मूंगफली के बारे में अगर हम आ जाए तो मूंगफली में जब फलियां आपको लग रहा है कि फलियां अब तैयार होनी शुरू हो गई हैं, नीचे कोई पौधा उखाड़ के देख सकते हैं, उस समय पे आप इसका स्प्रे करिए तो उससे फलियों का विकास अच्छा होगा, ज्यादा मात्रा में फलियां होंगी। जैसे कभी कभी आप देखते हैं ना कि कुछ फलियां छोटी सी रह गई या उसमें और लग सकती थी लेकिन नहीं लगी, तो वो कमी इससे पूरी हो जाएगी। इसके अलावा मक्का की फसल अगर हम ले लें तो उसमें जब मक्का आप अगर घुसें और आपके जो करीब करीब 4 फीट के आसपास की जब मक्का हो जाए तो उसमें आप उस समय एक स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा स्प्रे आप फूल आने की अवस्था जब उसकी ऊपर वाली मंजरी निकलती है उस समय पे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहली अवस्था चूक गए तो इसके बीच की कोई भी अवस्था आप चुन लें उस समय पे आपको उत्तम प्रणाम का इस्तेमाल करना है। जी हाँ आनंद जी।
3: जी ए के सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको करता हूँ हमारे किसान भाइयों की ओर से। आप बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ लगातार साझा कर रहे हैं। एक और प्रश्न जो मेरे जहन में आ रहा है, उत्तम प्रणाम का उपयोग कौन कौन सी फसलों में हो सकता है?
0: हाँ, लगभग सभी फसलों में हो, कोई ऐसी फसल नहीं है जिसमें नहीं हो सकता। खास तौर से अगर मैं आपको बताऊं तो उत्तम प्रणाम के जो जहां पर भी किसानों ने प्रयोग किए हैं, उन्होंने हर फसल में इसके बड़े शानदार परिणाम पाए हैं। सब्जी वाली फसलें हैं जहां पर लोग सब्जियां उगाते हैं और सब्जियां उगा के वो फिर जो है सेल करते हैं बाजार में, वह इसको हर सब्जी में जो मतलब प्रयोग करें। और उसकी दो ही अवस्था है, एक तो जब उसकी शाखाएं बन रही हो, दूसरा जब उसमें फूल और फल आने की बीच की अवस्था हो
3: जी।
0: उस समय पर इसका आप प्रयोग करें और जो उपयोग करें और अच्छा उत्पादन लें, उत्पादन अच्छा लें, क्वालिटी अच्छी लें। और क्वालिटी से अच्छा ये होता है कि जब कोई भी सब्जी हम ले रहे हैं तो उसका जो एक स्वाभाविक स्वाद होता है वह विकसित हो, तो वह विकसित होता है तो बाजार में भी जब लोग उसका प्रयोग करते हैं या जो लोग उसको बनाते हैं तो सोचते हैं हाँ यार ये सब्जी बहुत अच्छी लग रही है। सब्जियां हैं, इसके अलावा बहुत सारे जो फल हैं जो कि हमारे क्षेत्र में होते हैं उन पे हम इसका स्प्रे कर सकते हैं और वो फूल वाली अवस्था पे करें, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अनाज वाली सारी फसलों पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा गन्ना है उसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी फसल पे इसका आप जो इस्तेमाल करें उसके आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप फूल की खेती भी करते हैं, जैसे कि गेंदा भी आपने जो लगाया इस समय पर लगाते हैं गेंदा, जो कि उसके जो है फूल आते आज आसपास के शहरों में बेचते हैं और खास तौर से दिवाली के टाइम पे बहुत ज्यादा उनका इस्तेमाल होता है। मूल चूल बात यही है कि उत्तम प्रणाम को हर फसल पर आप प्रयोग करें। दो अवस्थाएं हैं, जब उसका विकास हो रहा हो और जब उसके फल फूल वाली अवस्था हो, इन अवस्था में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जी आनंद जी,
3: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक और प्रश्न है मेरा आपसे कि उत्तम प्रणाम के उपयोग की मात्रा के बारे में एक बार आप थोड़ा सा जरूर बताएं हमारे किसान भाइयों को।
0: हाँ आनंद जी, देखिए उत्तम प्रणाम के दो तरह से इस्तेमाल होते हैं, एक तो जो फसल के ऊपर छिड़काव करके
3: जी, जी।
0: दूसरा बीज उपचार। बीज उपचार के लिए जैसे कि सामान्य फसलें हैं तो उसके लिए जैसे अनाज वाली फसलें और सामान्य फसलें उनकी मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ तो उसमें एक एकड़ का जो बीज है उसमें 100 ml मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। 100 से 250 ml के हिसाब से बीज की मात्रा देख लें, जैसे किसी फसल में बीज ज्यादा लगता है, किसी फसल में बीज कम लगता है एकड़ में, उस हिसाब से आप डिसाइड कर लें। उससे जो आपका बीज है उसके ऊपर आप उत्तम प्रणाम का लेप करें, थोड़ी देर छाया में सुखाएं और फिर उसकी बिजाई। इसके अलावा आलू है, गन्ना है, उसमें कंद होता है तो उसका भी आप 250 ml मात्रा आपको लेनी है, क्योंकि इनकी जो संख्या ज्यादा होती है मात्रा भी ज्यादा होती है। 250 ml से आपको उपचार करना है, छाया में सुखाना है और फिर इसकी बिजाई कर देनी है। तो इससे क्या है, अंकुरण बहुत अच्छा होता है
3: जी।
0: अंकुरण होता है, इसके अलावा जो जड़े हैं उनका विकास और बड़ा स्वस्थ विकास होता है। इसके बाद फिर आता है खड़ी फसल में। खड़ी फसल में मात्रा 250 ml है एक एकड़ के लिए और जो सामान्य स्प्रेयर से अगर कर रहे हैं तो 250 ml पानी आपको चाहिए, 200 से 250 ml सामान्य स्प्रेयर, जो हाथ वाले हैं या जो ट्रैक्टर वाले उनकी बात में कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप ड्रोन के द्वारा छिड़काव करते हैं तो 250 ml मात्रा को ज्यादा से ज्यादा जो उसकी एक टंकी होती है उसको पानी चाहिए सिर्फ जो 10 लीटर, इससे ज्यादा पानी नहीं चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए कि 240 लीटर पानी की बचत है, फिर भी समान रूप से और बहुत ही जो है आपके जो है सही ढंग से और इफेक्टिवली उसका स्प्रे होता है। तो ड्रोन की जो तकनीक है बड़ी सार्थक तकनीक है और इसका प्रयोग करके आप अनेक लाभ ले सकते।
3: उत्तम प्रणाम उपयोग के क्या क्या लाभ हैं?
0: जी हाँ, लाभ की बात यह है तो एक समग्र उत्पाद है, समग्र लाभ देता है, समग्र विकास के लिए काम करता है
3: जी।
0: तो सबसे पहले जब बीज उपचार आपने किया है तो जो उसकी जड़ों का जो विकास है वो तेज होता है और काफी सघन होता है। जहाँ जहाँ पर पौधे की ये शाखाएं जाती हैं जो खेत के नीचे होती हैं, जिनको जड़ कहते हैं, जितनी ज्यादा फैलती है उतना ज्यादा पोषण वो लेती हैं उतना ज्यादा वो पानी लेती हैं। जब पोषण और पानी लेंगी तो पौधे का विकास बहुत अच्छा होगा, वो स्थायी रूप से और सशक्त रूप से खेत में खड़ा रहता है। ठीक है, नंबर एक ये हो गया। पौधों की जो भी उसको अपने ऊर्जा चाहिए उसके संचालन में जो है ये सहायक होता है, क्योंकि जब शुरुआत में इस्तेमाल हुआ है या जब इसको तो इसका जो जो जो आपके पौधे के अंदर तंत्र का तंत्र होता है उसको सशक्त करता है
3: जी।
0: तो जो एक आवश्यक ऊर्जा है या पोषण है उसको ये जो है

0: आसानी से उस फसल में रोग अपना असर नहीं दिखा पाते हैं। तो ये क्योंकि आप जैसे होता है ना, कोई आदमी स्वस्थ है तो भैया ये आदमी तो बिल्कुल फिट फाट है, तो इसको जुकाम बुखाम भी नहीं होता, बुखार भी नहीं आता या अस्वस्थ नहीं होता। इसी तरह से हमारे पौधों के साथ होता है। पांचवा है कि जो हम उत्पाद ले रहे हैं, जो उत्पादन आ रहा है फसल का, जो उपज आ रही है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छे से आती है, बहुत अच्छी क्वालिटी आती है, शाइनिंग होती है उसमें, स्वाद अच्छा होता है। और उसमें कोई जैसे होता है ना कि जैसे अमरूद है, अमरूद हम लेके उसमें चकत्ते ज्यादा है, लेकिन अगर उत्तम बना सके तो बड़ा अच्छा निखारा हुआ आपका जो फल होगा। तो उसको जब इस तरह की जो अच्छी क्वालिटी की चीजें आप लोगों को देते हैं तो लोग उनको पसंद करते हैं और भाव भी ज्यादा मिलते हैं, तो क्वालिटी को अच्छा करता है। दूसरा ये है कि ये जब इस्तेमाल होता है तो अन्य पोषक तत्वों का भी जो पौधा अच्छे से इस्तेमाल कर पाता है। जैसे सपोज मान के कोई आदमी स्वस्थ है
1: जी,
0: तो उसने जो भी खाता है वो उसके अंग लगता है। अब उसने घी खाया, घी भी उसके काम आ गया, उसने हरी सब्जी खाई वो भी उसके काम आ गई। तो हम ये कहें कि ये पौधे के को एक तरह से हर अवस्था में और हर चीज के लिए फायदेमंद है उत्तम प्रणाम। मेरा किसानों से अनुरोध है कि आप उत्तम प्रणाम का जो उपयोग करके अवश्य देखें, और अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो एक खेत में करें और दूसरे में न करें और फिर उसका अंतर देखें। लेकिन ध्यान ये रखें कि अगर बूंदाबांदी हो रही है तो उस समय पर ध्यान रखें कि जब आप स्प्रे करने जा रहे हैं तो उसके 8-10 घंटे तक कोई बारिश न हो, क्योंकि पौधे में उसका असर होता है, उसकी पत्तियों में सोखता है। अगर पानी ऊपर से इमिडिएटली आ जाता है तो वो उसका असर कम हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि जो उत्तम प्रणाम के बारे में या जो ऐसा पोषण जो कि स्प्रे के द्वारा, ड्रोन के द्वारा हमने देना है, वो जानकारी आपके लिए लाभदायक रहेगी।
1: तो श्रोताओं, आज के कम में जो है श्री एके सिंह जी ने जो है बहुत ही खूबसूरत जानकारी आपके साथ साझा करी, घुलनशील पोषण से जुड़ी और उत्तम प्रणाम के बारे में तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करी हमारे तमाम सुनने वालों के साथ। सर, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते आप हमारे किसान भाइयों को जो लिसनर्स हमें रेडियो पे सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से?
0: जरूर आनंद जी,
1: जी
0: कि पोषण जो हम जो इस्तेमाल करते हैं अपनी फसलों में,
1: जी जी,
0: हमारी सोच यही है कि भाई रासायनिक जो उर्वरक आते हैं कट्टे में, हम उन्हीं का ही प्रयोग करें। ऐसे ही है, अब काफी अनुसंधान हुए हैं और उससे ये आया है कि जो खड़ी फसल में अगर हम स्प्रे करते हैं तो बहुत कम मात्रा में, बहुत कम खर्चे में हम उसका उतना ही लाभ ले सकते हैं जितना कि हम स्थूल उर्वरक के प्रयोग से ले रहे हैं, और उससे कहीं ज्यादा ले सकते
1: जी।
0: तो मैं आशा करता हूं कि हम अपने यहाँ ऐसे संसाधन थोड़े से ठीक करें जिससे कि हम स्थूल उर्वरक की जगह जो इस तरह के उर्वरक आ रहे हैं उनको घोल के छिड़काव करें और ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें। स्थूल उर्वरक कभी कभी हम बहुत अत्यधिक मात्रा में या असंतुलित रूप में प्रयोग करते हैं तो उसका लाभ होता है लेकिन हानि भी हमें होती है। हानि पर्यावरण के रूप में होती है, हानि हमें अतिरिक्त खर्चे के रूप में होती है, हानि हमें एक तरह से ये होती है कि जो हम खेत में इस्तेमाल किए वो बहुत सारा हमारे और संसाधनों में जाके मिल जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो हम धीरे धीरे प्रयास करें कि जो इस तरह के जो उत्पाद आ रहे हैं जो कि पानी में घुलनशील हैं और उनका फसल पर छिड़काव होता है, उनका हम प्रयोग करना अपनी खेती में शामिल करें।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर एके जी, आप आए और आपने तमाम जानकारियां साझा करी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी रही होगी। और इसी बात के साथ मैं आर्य आनंद अब आपसे लूंगा इजाजत। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी नमस्कार, आप जुड़े।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और सभी श्रोताओं को मेरा धन्यवाद कि उन्होंने ये कार्यक्रम सुना।
1: बिल्कुल सर, नमस्कार सर, आपको भी श्रोताओं नमस्कार। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, पर जाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और फिर से आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए हैं श्रोताओं लेकर शो यानी कि महिला मंच, जहां हम बात करते हैं महिलाओं के बारे में। और मैं हूं आरजे रीना और मेरे साथ है आरजे खुशी, हम दोनों साथ में ही आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है महिला मंच शो में महिलाओं में बढ़ता वजन और खान पान। ये वजन अचानक नहीं बढ़ता, वजन तो धीरे धीरे बढ़ता है। कभी आईने के सामने खड़े होकर आपने खुद को कहा है, अरे यार वजन इतना कैसे बढ़ गया, कपड़े पहले जैसे फिट नहीं आते, सीढ़ियां चढ़ते हुए पहले से ज्यादा थकान, और फिर सबसे पहला फैसला बस अब खाना कम करना है। हर कोई यही सोचता है अपने मन में कि बस खाना कम कर दो तो हमारा वेट कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन बहनों जरा रुकिए, क्या वजन बढ़ने की वजह सिर्फ खाना है? क्योंकि एक महिला के जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव होता है, उम्र बढ़ती है, हार्मोन बदलते हैं, शादी के बाद रूटीन बदलता है, प्रेगनेंसी आती है, बच्चों की जिम्मेदारी आती है, काम का स्ट्रेस आता है, और इन सब के बीच हम अक्सर अपने शरीर को आखिरी नंबर पर रख देते हैं। तो आज हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि वजन कम करो, आज हम समझेंगे कि वजन बढ़ने से पहले हमारा शरीर हमें कौन कौन से संकेत देते हैं। और सबसे पहला सवाल यही है, क्या सच में कम खाना ही वजन घटने का रास्ता है? सो इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो खुशी तुम क्यों बैठी हो, बोलो तुम भी।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और सभी को ये कंफ्यूजन रहता है एवरीवन कि खाना कम खाएं या खाना सही खाएं। बहनों तो मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूंगी कि वजन बढ़ना और हमने क्या किया, रोटी कम, चावल बंद, मिठाई बंद, और कभी कभी तो हम खाना ही छोड़ देते हैं, है ना? लेकिन जरा सोचिए, हमारा शरीर कोई मोबाइल नहीं है कि बैटरी कम हुई तो बस स्विच ऑफ कर दिया

0: शरीर को एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए और वो भी हर दिन। अक्सर हम सोचते हैं जितना कम खाएंगे उतना जल्दी वजन कम होगा, लेकिन असल बात ये है कि हम क्या खा रहे हैं और कितनी मात्रा में खा रहे हैं ये समझना ज्यादा जरूरी है। एक महिला सुबह से रात तक घर संभालती है, नौकरी करती है, बच्चों को देखती है, ऐसे में शरीर को सही न्यूट्रिशन देना जरूरी है। तो आज से एक छोटा सा सवाल मैं आपसे कहना चाहती हूँ एवरीवन, कि अपने प्लीज से पूछिए क्या मेरा पेट सिर्फ भरा हुआ है या मेरे शरीर को पोषण भी मिल रहा है। और यहीं से हमारी अगली बात शुरू होती है, क्योंकि कई बार समस्याएं खाने की मात्रा में नहीं होती, समस्याएं हमारी प्लेट में छिपी होती है। तो दोस्तों अब हम अपने प्लेट को थोड़ा गौर से देखेंगे और शायद आपको अपनी रोज की एक ऐसी गलती दिखाई दी जाए जिस पर आपने कभी ध्यान ही ना दिया हो।
1: आपकी प्लेट क्या कहती है, बात इस टॉपिक पर करेंगे। आज रात का खाना खाते समय अपने प्लेट को जरा ध्यान से देखिएगा। रोटी या चावल तो है, लेकिन सब्जी कितनी है, दाल या कोई प्रोटीन वाली चीज है, सलाद है और तेल कितना है। हम अक्सर कहते हैं मैं तो बहुत कम खाती हूँ, लेकिन अगर प्लेट में पोषण का बैलेंस नहीं है तो सिर्फ कम खाना ही सॉल्यूशन नहीं है। एक और बात, खाना खाते समय मोबाइल चलाना, टीवी देखना या जल्दी जल्दी खाना, इससे भी हमें ये समझ मुश्किल हो जाती है कि हम कब पर्याप्त मात्रा खा चुके हैं। तो अगली बार खाना खाते समय थोड़ा रुकिएगा, धीरे धीरे खाइए, खाना चबा कर खाइए और अपनी प्लेट को देखिए, क्योंकि हेल्दी ईटिंग का मतलब भूखे रहना नहीं, हेल्दी ईटिंग का मतलब है अपने शरीर को समझ कर खाना। लेकिन अब सवाल ये है कि खाना तो हम दिन में 3 बार खाते हैं, लेकिन बीच में जो छोटी छोटी चीजें खाते हैं उनका क्या, एक बिस्किट, एक नमकीन, एक कप चाय, यहीं से असली कहानी शुरू होती है।
0: और वो छोटी छोटी चीजें होती हैं चाय के साथ 2 बिस्किट को क्या आप पूरा खाना मानती हैं? शायद नहीं। शाम की थोड़ी सी नमकीन, अरे बस थोड़ी सी तो थी, किसी के घर गई तो मिठाई का एक टुकड़ा एक ही तो खाया, लेकिन यही थोड़ी थोड़ी अगर रोज होता रहे तो हमारी ईटिंग हैबिट्स का हिस्सा बन जाता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आपको मिठाई या चाय हमेशा के लिए छोड़ देनी चाहिए, बात सिर्फ इतनी है कि हमें अपनी आदतों को पहचानना है। अगली बार जब बिना भूख के कुछ खाने का मन करे ना, तो खुद से पूछिए मुझे सच में भूख लगी है या बस आदत है। और हाँ, और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, कभी कभी हमें भूख नहीं होती फिर भी खाने का बहुत मन करता है, क्यों? क्या इसका कनेक्शन हमारे स्ट्रेस और मोशन से भी हो सकता है? इसका जवाब अगले लिंक में आपको रीना जी देने वाली है, तो बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। अभी आपको मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पार।

0: खाने पीने के बात हो और मुंह में पानी ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। साथ ही साथ आपने गाना भी इतना जबरदस्त वाला सुना ना श्रोताओं। सो चलिए बात करते हैं, भूख पेट की है या मन की? कभी बहुत तनाव हुआ और अचानक मीठा खाने का मन किया हो, कभी किसी बात से परेशान होकर लगा हो चलो कुछ अच्छा खा लेते हैं, इसे हम इमोशनल ईटिंग कह सकते हैं। यानी कई बार हम पेट की भूख से ज्यादा अपने इमोशंस की वजह से कुछ खाने लगते हैं। और महिलाओं की जिंदगी में स्ट्रेस की कमी तो नहीं, घर की जिम्मेदारी, बच्चों की चिंता, नौकरी, परिवार, रिश्ते, कई बार महिला सबको संभालते संभालते खुद को अंदर का तनाव दबा लेती है और फिर बिना सोचे कुछ खा लेना आसान लगता है। तो अगली बार जब अचानक खाने की बहुत इच्छा हो सिर्फ 10 सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, मुझे भूख लगी है या मुझे आराम चाहिए? शायद जवाब आपको खुद मिल जाएगा। लेकिन जब स्ट्रेस की बात निकलती है तो एक और चीज याद आती है, नींद, जो कि नींद बहुत मायने रखता है हमारे लाइफ में, क्योंकि कई महिलाएं तनाव तो झेलती है लेकिन आराम वो सबसे आखिरी में करती हैं। और नींद का हमारी ईटिंग हैबिट से क्या रिश्ता है इसके बारे में भी जानेंगे।
1: देखिए, नींद बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, और घर में सबके सोने का समय तय है, बच्चों का, पति का, ऑफिस का, लेकिन आपका नहीं। कई महिलाएं रात को सबसे आखिरी में सोती हैं और सुबह सबसे पहले उठती हैं और फिर दिन भर थकान रहती है। जब नींद पूरी नहीं होती हमारी एनर्जी, मूड और खाने की आदतों पर भी असर डाल सकता है। इसीलिए हेल्थ का मतलब सिर्फ डाइट नहीं, खाना सही, मूवमेंट सही और नींद भी सही। आज रात एक काम कीजिएगा, सोने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं अपने शरीर को आराम देने का मौका दे रही हूँ? क्योंकि शरीर दिन भर आपका साथ देता है, उसे रात में आराम देना भी आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन बहनों, महिलाओं की जिंदगी में ना एक और चीज है जो धीरे धीरे शरीर को बदलती है, उम्र के साथ आने वाले हार्मोनल चेंजेस, और कई महिलाएं इसे सिर्फ वजन बढ़ गया समझकर छोड़ देती हैं।
0: हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, हार्मोनल का भी यही खेल है। महिला का शरीर बहुत खास है और जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर इसमें बदलाव आते रहते हैं, पीरियड्स, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, और इनमें स्टेजेस में हार्मोनल चेंज होते हैं और इनके साथ वेट, स्लिप और बॉडी शेप में बदलाव भी महसूस हो सकते हैं। इसीलिए हर बार वजन बढ़ने पर खुद को दोष देना ठीक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर बदलाव को सिर्फ हार्मोन्स कहकर छोड़ देते हैं। अगर वजन तेजी से बढ़ रहा हो, पीरियड्स में बदलाव है या कोई और परेशानी लगातार बनी हुई है तो डॉक्टर से सलाह लेना ही समझदारी है, क्योंकि अपने शरीर को समझना कमजोर नहीं समझदारी है। और अब बात उस समय की जब बहुत सी महिलाएं कहती हैं, पहले तो मैं कितना भी खा लेती थी वजन नहीं बढ़ता था, अब थोड़ा खाती हूँ वजन बढ़ जाता है। आखिर उम्र के साथ ऐसा क्यों महसूस होता है?
1: उम्र के साथ बदलती जरूरतें, जो हमारी फीमेल्स इस समय हमें सुनिए वो जरा ध्यान से सुने, क्योंकि आपकी ही बातें हो रही हैं इसमें। आपने अपनी माँ या किसी बड़ी बहन को ये कहते जरूर सुना होगा, हमारे जमाने में तो इतना खाती थी फिर भी मोटी नहीं होती थी। ऐसा महसूस होना कई महिलाओं में देखा जाता है। उम्र बढ़ने के साथ हमारी एक्टिविटी कम हो सकती है, शरीर की एनर्जी नीड्स बदल सकती हैं और हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं। तो जो रूटीन 20 इयर्स की उम्र में ठीक था, जरूरी नहीं कि वो 40 या 50 में वही रहे। इसलिए उम्र के दोष देने के बजाय अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा समझना जरूरी है। लेकिन यहाँ एक खास पड़ाव है, प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद का समय, क्योंकि माँ बनने के बाद शरीर से लेकर रूटीन तक सब कुछ बदल जाता है और उसी समय महिलाओं को सबसे ज्यादा जरूरत होती है दूसरों की सलाह की नहीं बल्कि सही जानकारी और सही केयर की।
0: माँ बनना जिंदगी का खूबसूरत पड़ाव है, लेकिन प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद शरीर को रिकवरी के लिए समय चाहिए। कई बार महिला बच्चे में इतना व्यस्त हो जाती है कि अपना खाना, आराम और हेल्थ पीछे छोड़ जाती हैं और फिर कुछ समय बाद जब वजन कम नहीं होता तो वह खुद को दोष देने लगती हैं। अपने शरीर को थोड़ा वक्त दीजिए। सोशल मीडिया पर किसी और पोस्टम बॉडी देखकर अपनी तुलना मत कीजिए। हर महिला का शरीर अलग है, हर प्रेगनेंसी अलग है और हर रिकवरी में भी अलग है। इस समय जरूरत है बैलेंस न्यूट्रिशन, पर्याप्त आराम और अपनी स्थिति के अनुसार फिजिकल एक्टिविटी की। और अगर आप इमोशनल है तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है। लेकिन प्रेगनेंसी के बाद की बात से हमें एक और सवाल मिलता है, क्या घर की महिला सच में खुद की थाली पर ध्यान देती है?
1: और हमारी महिलाओं की ना एक बात बड़ी कहते हैं कि उनको ना शुरू से सिखाया जाता है कि आप सबका ख्याल रखो और जब आप सबका ख्याल रखेंगे तो सब आपसे खुश रहेंगे। और इसी चक्कर में वो क्या करती हैं, सबको खाना खिला देती हैं और सबसे लेट खुद खाना खाती हैं। सुबह सबसे पहले बच्चों का नाश्ता, फिर पति का लंच, फिर घर का काम और जब खुद खाने की बारी आती है तो खा लूंगी, अभी भूख नहीं है। फिर वो अभी कब दोपहर में बन जाता है पता ही नहीं चलता। कई महिलाएं पूरे घर का न्यूट्रिशन देखती हैं लेकिन अपनी प्लेट पर ध्यान नहीं देती। बच्चों को दूध चाहिए, पति को हेल्दी खाना चाहिए लेकिन खुद के लिए कभी बचा हुआ खाना, कभी जल्दी जल्दी खाना और कभी खाना स्किप कर देना। याद रखिए, अपने लिए खाना बनाना और समय पर खाना सेल्फिश होना नहीं होता है। अगर आप घर की जिम्मेदारी हैं लेकिन आप खुद भी एक इंसान हैं, आपका शरीर भी केयर डिजर्व करता है। अब बात करेंगे उस चीज की जिसे हम अक्सर बस पेट निकल आया कहकर हंसकर टाल देते हैं, लेकिन क्या पेट की बढ़ती चर्बी को इतना हल्के में लेना चाहिए?
0: मुझे तो लगता है कि बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, है ना?
1: Exactly.
0: क्योंकि हमारा अगर मोटापे की शुरुआत की बात करूँ तो पेट से ही शुरू होता है। कभी कपड़े पहनते हुए आपने कहा है बस पेट थोड़ा बढ़ गया है, वहीं से असली शुरुआत होती है। अगर वहां पर आपने कंट्रोल कर लिया खुद पर तो ठीक है, अदरवाइज वो चर्बी और भी ज्यादा बढ़ती जाती। हम अक्सर इसे सिर्फ लुक्स का मामला समझते हैं लेकिन शरीर में खासकर कमर के आसपास बढ़ती अतिरिक्त चर्बी को सिर्फ सुंदरता के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, ओवरऑल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए सिर्फ वजन मशीन पर नंबर मत देखिए, अपनी वेस्ट एक्टिविटी, एनर्जी और ओवरऑल हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए। और अगर वजन लगातार बढ़ रहा है या आपको कोई दूसरी परेशानी भी महसूस हो रही है तो मेडिकल एडवाइस जरूर लें। लेकिन वजन की बात करते करते हम एक्सरसाइज को कैसे भूल सकते हैं? अब महिलाएं कहेंगी हमारे पास एक्सरसाइज का टाइम ही कहाँ है, तो देखिए टाइम आपको खुद निकालना पड़ता है। टाइम कभी आपसे ये नहीं कहता कि मैं 6 बज गया हूँ उठ जाओ एक्सरसाइज करो, वो खुद आपके लिए और आपको अपना टाइम निकालना पड़ेगा।
1: जिम नहीं तो क्या हुआ, जरूरी नहीं है कि आप जिम जाकर ही फिट रह सकते हैं, आप घर पर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और एक्सरसाइज शब्द सुनते ही ना कई महिलाओं के दिमाग में जिम और भारी वर्कआउट आ जाता है और फिर मन कहता है मेरे पास तो इतना टाइम कहाँ है। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी का मतलब सिर्फ जिम जाना नहीं है, दिन में पैदल चलना, सीढ़ियां चढ़ना, लगातार घंटों बैठे रहने से बचना चाहिए और अपनी कैपेसिटी के अनुसार एक्टिव रहना भी मूवमेंट का हिस्सा है। जरूरी है ये कि आपकी एक्टिविटी आपकी उम्र और आपकी हेल्थ के हिसाब से हो। शुरुआत छोटी रखिए लेकिन उसे अपनी रूटीन का हिस्सा बनाने की कोशिश कीजिए। और एक बात, एक्सरसाइज को सजा मत समझिए, आप अपने शरीर को पुश करने के लिए नहीं मजबूत बनाने के लिए मूव कर रही हैं। लेकिन अब आते हैं उन डाइट्स पर जो इंटरनेट पर देखकर हर महिलाएं सोचती हैं शायद यही मेरे लिए भी काम कर जाए। क्या हर वायरल डाइट हमारे लिए सही होती है? इसका जवाब हम सुनने वाले हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। अब आप भी जानने के लिए तैयार है ना, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया तो हर कोई चलाता है ना और उस पर अच्छी अच्छी रील्स सबको देखनी पसंद होती है और कुछ भी हेल्दी डाइट आती है तो हमें लगता है हाँ यार ये तो मैं भी बनाऊंगी, मैं भी खाऊंगी। लेकिन दोस्तों पता है जरूरी नहीं है कि वो डाइट अगर उस पर काम करी तो वो हम पर भी काम करेगी। हर किसी की बॉडी अलग होती है एंड इसीलिए एवरीवन जरूरी नहीं है कि जो मैं खाऊं वो मेरे आपके लिए भी अच्छा हो। ऐसा भी हो सकता है ना कि आपको ना शूट करे। तो आगे हम जानेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, फिर आपसे बात करते हैं।

0: क्या बात है जी, शानदार गाने बाद आर्जुरी नाम सभी के साथ कनेक्ट हो गई हैं। और जैसा कि खुशी ने बताया ही है कि इंटरनेट वाली डाइट, अक्सर इंटरनेट वाली डाइट हर किसी के लिए सूटेबल भी नहीं होती है, क्योंकि खुशी ने बता ही दिया है कि हर किसी की बॉडी अलग होती है और जरूरी नहीं है कि जो आप खा रहे हो दूसरे को भी वही सूट हो, दूसरा एक्सरसाइज वो कर रहा है तो वही के लिए भी बेनिफिट हो और अभी वैसा ही एक्सरसाइज करने लग जाओ। इसीलिए कुछ चीजें हैं जो वायरल पे नहीं जाना चाहिए, आपको सोच समझ कर करना। आजकल फोन देखते ही डाइट की दुनिया सामने आ जाती है, कोई कहता है ये खाओ, कोई कहता है वो मत खाओ, कोई कहता है इतने घंटे खाना बंद करो। लेकिन जरा सोचिए, जिस महिला के लिए वो डाइट बनी है, क्या आपका शरीर भी बिल्कुल वैसा ही है? हर महिला की उम्र, एक्टिविटी, लाइफस्टाइल और हेल्थ नीड अलग हो सकती है, इसीलिए किसी की डाइट देखकर उसे कॉपी करना हमेशा सही नहीं है, खासकर प्रेगनेंसी, ब्रेकफास्टिंग या किसी मेडिकल कंडीशन में बिना एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। हमेशा एक्सपर्ट से ही सलाह ले, देखी सुनी सुनाई बातों पर भरोसा ना करे। वजन कम करना तो शॉर्टकट के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है, ऐसी आदत बनाना जिसे आप लंबे समय तक निभा सके। लेकिन अब सवाल ये है, क्या वजन कम करने के लिए हम अपनी पसंद की सारी चीजें छोड़ पाएंगे? उसके बारे में सोचना और कहना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कभी कभी होता है कि आपकी जो बहुत अच्छी फेवरेट डिश होती है उसको हमें छोड़ना भी पड़ता है। अगर आप अपनी रूटीन को, अपने आप को हेल्दी से मतलब ठीक करना चाहते हो तो थोड़ा सा तो चेंज करना पड़ता है,
1: कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है यार। हेल्दी रहने का मतलब जिंदगी से स्वाद निकाल देना नहीं है। अगर आपने तय कर लिया है कि आप कभी मिठाई नहीं खाऊंगी, कभी अपनी पसंद की चीज नहीं खाऊंगी, तो शायद कुछ दिन बाद वही चीजें और ज्यादा याद आएंगी। बेटर ऑप्शन ये है कि अपनी ईटिंग हैबिट्स को बैलेंस करें, घर का खाना ज्यादा खाएं, प्रोटीन पर ध्यान दें, रोज की छोटी छोटी अनहेल्दी आदतों को पहचानें और अपनी पसंद की चीजों को समझदारी से लें। और सबसे जरूरी, एक दिन कुछ एक्स्ट्रा खा लिया है तो ये मत सोचिए कि अब तो सब खराब हो गया, एक मील आपकी पूरी जर्नी तय नहीं कर सकता, अगला मील बेहतर हो सकता है। और अब बात उस चीज की है जिसे हम अक्सर वजन से भी ज्यादा गंभीरता से ले नहीं लेते, खुद को लेकर हमारी सोच।
0: ये तो बिल्कुल सही कहा, हमारी सोच पर डिपेंड होता है हर चीज। आईना आपका दुश्मन नहीं है। अक्सर हम जब भी आईने के आगे खड़े होते हैं ना, तो खुद से ये कहते हैं यार मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, और अपने आईना को ही दुश्मन समझ लेते हैं और उसे देखना ही बंद करते हैं। फिर तो छोटे छोटे मिरर में ही देखकर अपना मेकअप कर लेते हैं ना। कभी आईने में देखकर खुद को कहा है मैं कितनी मोटी हो गई हूँ? अगर कहा है तो आज खुद से थोड़ा प्यार से बात करके देखिए। आपका शरीर सिर्फ आपकी बॉडी शेप नहीं है, इसे शरीर ने आपको कितने साल संभाला है, काम किया है, परिवार संभाला है, प्रेगनेंसी और डिलीवरी झेली है, बीमारियों से लड़ा है, थककर भी आपको आगे बढ़ा है। तो बदलाव करना है तो जरूर करिए, लेकिन खुद से नफरत करके नहीं। हेल्थ का मतलब सिर्फ पतला दिखना नहीं है, हेल्थ का मतलब होता है खुद को बेहतर महसूस कराना, एक्टिव रहना और अपने शरीर का ध्यान रखना। और अब सवाल ये है, अगर आज से शुरुआत करनी है तो क्या करें? क्या एक साथ 10 चीजें बदलनी होगी?
1: नहीं नहीं बाबा, 10 चीजें क्यों बदलूंगी, आप एक ही बदलाव काफी है। आज से अपनी जिंदगी में 10 नियम मत बनाइए, बस एक चीज सुनिए। शायद सुबह का नाश्ता स्किप नहीं करना, शायद जो रोज थोड़ा सा चलना, शायद चाय बिस्किट की आदत कम करनी है। जब एक आदत टिक जाएगी तब दूसरी आदत जोड़िएगा, ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि बड़ा बदलाव अक्सर छोटी छोटी आदतों से ही बनता है। और अगर आपका वजन लगातार बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है या साथ में दूसरे सिम्टम्स भी हैं, तो खुद से डाइट एक्सपेरिमेंट करने की बजाय डॉक्टर से बात करना बेहतर है। लेकिन एक बात और एक चीज है जिसे महिलाएं अक्सर भूल जाती हैं, पानी। जी हाँ, वो बहुत जरूरी है। क्या आप सच में पूरे दिन पर्याप्त पानी पीती हैं?
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, अक्सर हम इसको ही भूल जाते हैं।
1: लेकिन मैं नहीं भूलती हूँ।
0: मैं भी नहीं भूलती हूँ यार। मैं भी पी लेती हूँ पानी,
1: दूसरे को देख के मोटिवेट होते रहते हैं।
0: हाँ, मैं देखती हूँ ये बोतल दोबारा भरने गई है, मैं भी फटाफट खाली करती हूँ, दोबारा भर के लेकर आती हूँ। तो मतलब पानी, देखिए एक टाइम के लिए आप खाना, जहाँ आपको दो रोटी भूख है एक रोटी खाइए, लेकिन पानी दो बोतल पीजिए, क्योंकि पानी आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है और फेस के लिए भी अच्छा होता है। अगर जितना जितना पानी पियेंगे फेस पर ग्लो भी उतना ही ज्यादा आएगा। सुबह से शाम तक हम कितने काम कर लेते हैं लेकिन पानी पीना याद नहीं रहता। एक बार फोन देख लिया, बच्चे को स्कूल भेज दिया, काम में लग गए और पूरा दिन निकल गया, यही रहता है। अपने शरीर की बेसिक जरूरतों को इग्नोर करना हमारी आदत बन जाती है। पानी की जरूरत हर व्यक्ति में अलग हो सकती है और मौसम, एक्टिविटी और हेल्थ के हिसाब से भी बदलती है, इसीलिए अपने शरीर के सिग्नल्स पर ध्यान देना जरूरी है। अगर किसी मेडिकल कंडीशन में फ्लूइड इंटेक को लेकर डॉक्टर ने कोई अलग सलाह दी है तो उसे फॉलो करना बिल्कुल ना भूले, उसे फॉलो करना बहुत जरूरी है। लेकिन आज का असली सवाल पानी से भी बड़ा है, हम अपने शरीर के सिग्नल्स को सुनते कितनी बार हैं? क्योंकि शरीर बार बार संकेत देता है, बस हम अक्सर उन्हें कल देंगे कहकर टाल देते हैं और यही हमारे लिए गलत हैबिट बन जाता है।
1: शरीर की सुनिए, थकान है फिर भी काम, नींद आ रही है फिर भी मोबाइल, भूख लग रही है फिर भी पहले सबको खाना, स्ट्रेस है फिर भी चुप, और फिर एक दिन हम कहते हैं पता नहीं मेरा शरीर इतना बदल क्यों गया है। शरीर अचानक नहीं बदलता, हमारी छोटी छोटी आदतें मिलकर धीरे धीरे बड़ा बदलाव लाती हैं। इसलिए आज से अपने शरीर को सुनना शुरू कीजिए। अगर कोई परेशानी लगातार बनी हुई है उसे इग्नोर मत कीजिए, जरूरत पड़े तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लीजिए। और सबसे जरूरी बात, अपने लिए समय निकालना लग्जरी नहीं है, लेकिन क्या हम सच में अपने लिए रोज थोड़ा समय निकाल सकते हैं?
0: बिल्कुल निकाल सकते हैं, अगर अपने हैबिट को खुद को चेंज करें तब।
1: खुद को इम्प्रूव करना है हमें तो हम हर चीज कर सकते हैं रीना।
0: बिल्कुल, और साथ ही साथ श्रोताओं आज का चैलेंज बहुत आसान है। अगर घर में किसी एक मील के समय सिर्फ अपनी खाने पर ध्यान दीजिए, मोबाइल एक तरफ रखिए, जल्दी जल्दी मत खाइए, खाना को हमेशा चबाल कर खाना चाहिए, अपनी प्लेट को देखिए और खुद से पूछिए मैं अपने शरीर को क्या दे रही हूँ। फिर रात को सोचिए आज मैंने अपने लिए क्या किया, शायद आपने थोड़ा वॉक किया हो, शायद समय पर खाना खाया हो, शायद पानी ज्यादा पिया हो, या शायद पहली बार खुद को आराम दिया हो। यही छोटी चीजें हमें अपने शरीर से जोड़ती हैं। और अब इस पूरे सफर का आखिरी पड़ाव पर हम आ चुके हैं, ऐसी बात जो मैं चाहती हूँ कि हर महिला अपने दिल में रखे और अपने आप से वादा करे। तो खुशी बताइए जरा।
1: तो एवरीवन, आप भी हमारे लिए जरूरी हैं और हमारी हेल्थ भी। आज हमने सिर्फ वजन की बात नहीं की, पता है आपको, हमने बात की है अपनी प्लेट की, अपनी नींद की, स्ट्रेस की, हार्मोन्स की, प्रेगनेंसी के बाद शरीर की, उम्र के साथ होने वाले बदलाव की, और सबसे जरूरी अपने लिए समय निकालने की। अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो खुद को दोष मत दीजिए, पहले समझिए कि आपके शरीर में क्या बदलाव हो रहा है, अपनी आदत को देखिए, छोटे बदलाव कीजिए और जरूरत हो तो डॉक्टर या क्वालिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल की मदद लीजिए। क्योंकि बहनों, वजन आपका पूरा परिचय नहीं है, आप सिर्फ एक नंबर नहीं है, आप एक माँ हैं, एक बेटी हैं, एक बहन हैं, एक पत्नी हैं, कामकाजी महिला हैं, और इन सबसे पहले आप खुद भी एक इंसान हैं जिसका ख्याल रखा जाना जरूरी है। तो आज घर जाते हुए खुद से एक वादा जरूर कीजिएगा, मैं सबका ख्याल रखूंगी, लेकिन खुद को भूल कर नहीं। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी, और अब हम लेते हैं आपसे जाने की अनुमति। सुनते रहिए ऐसे ही हमारा एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखिए। सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहां पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चल मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। तेज बारिश के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन यांग यू से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत के लोग दुनिया की बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, तो भारतीय कंपनियां भी दुनिया का नेतृत्व कर सकती हैं। उन्होंने युवाओं से यूनिकॉर्न बनाने, ड्रोन तकनीक में नवाचार करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ने आह्वान किया।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं, तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमताओं को दर्शाती है।
1: जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी, वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है।
0: श्री मोदी ने मेक इन इंडिया की सफलता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत अब प्रमुख निर्यातक राष्ट्र बन रहा है। स्मार्टफोन का निर्यात 2,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है, जबकि देश का रक्षा उत्पादन करीब 2,00,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री ने देश में तेजी से हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं को पूरा होने में पहले दशकों लगते थे, वे अब कुछ ही वर्षों में पूरी हो रही हैं। उन्होंने रेलवे के विद्युतीकरण का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 2014 तक 30% से भी कम रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ था, जबकि पिछले 12 वर्षों में लगभग 100% रेलवे विद्युतीकरण किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय गोवा दौरे पर हैं। वे कल रात गोवा पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री शाह आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
2: अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के साथ गोवा से जुड़े अहम मुद्दों पर समीक्षा बैठक की। इसके बाद वे जल्द ही मीडिया से बातचीत करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज बीजेपी के नए प्रदेश कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन भी करेंगे। वे पार्टी की स्टेट कोर कमेटी के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। कल 28वें वेस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 35 लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। इनमें कुछ की हालत गंभीर है। यह मामला बांदा थाना क्षेत्र के नौरोजा और घुघरा खुर्द गांवों का है। शुरुआती जांच में शराब में मिथाइल अल्कोहल होने की आशंका जताई गई है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। उन्होंने कहा कि भारत के संप्रभु क्षेत्र, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल है, उन्हें भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए। किसी भी गलत या भ्रामक चित्रण को भारत स्वीकार नहीं करेगा। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट तथा अडिग है। उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रस्ताव किसी खास मानचित्र, प्रक्षेपण या किसी देश की सीमा के चित्रण का समर्थन नहीं करता। होर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास अमेरिका ईरान संघर्ष में इस सप्ताह एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों पक्षों ने होर्मुज जल डमरू मध्य और उसके आसपास जहाजों पर हमले किए हैं। कल के ताजा घटनाक्रम में अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा कि उसने ईरान के 3 तेल टैंकरों को निष्क्रिय कर दिया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने भी दावा किया है कि उसकी नौसेना ने होर्मुज जल डमरू मध्य के संरक्षित क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रही रिमोट से संचालित अमेरिका की एक नाव को निशाना बनाया है। अमेरिका के दूत आज यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे। शांति प्रक्रिया के तहत अमेरिकी दूतों की यह यूक्रेन की पहली यात्रा है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल क्रेमलिन में अमेरिकी दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर से मुलाकात की थी। बातचीत के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने कीव पर रूसी हमलों को 3 दिन के लिए रोकने का आदेश दिया। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन भी सोमवार तक मॉस्को पर हमले रोकने के लिए तैयार है। नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 1,344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5,000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13,100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। मृतकों की पहचान के लिए DNA परीक्षण की सहायता ली जा रही है। 1,270 अज्ञात शवों का विवरण नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर दिया गया है। भारत और चीन की टीमों की सहायता से कई पनबिजली परियोजनाओं में बचाव अभियान अब भी जारी है। उधर चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई। तूफान सॉडेल से कई दिन की मूसलाधार बारिश के कारण यह दुर्घटना हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट जिले में स्थिति और राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया।
4: राज्य की कई नदियां अभी भी उफान पर हैं। बदायूं, गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और फरुखाबाद में खतरे के निशान के नजदीक पहुंच गई है। वहीं लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में शारदा तथा अयोध्या और तुर्तीपार बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। चित्रकूट के राजापुर में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में वरुणा नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ राहत शिविर में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री बांटी। उधर मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्से और आगामी 2 दिनों तक पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार के कई हिस्सों में भी बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल तक बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली में भी लगातार दूसरे दिन बारिश हो रही है। इसके चलते कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, झारखंड और छत्तीसगढ़ में कल बिजली गिरने की भी संभावना है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ये विशेष सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आयोजन की सुरक्षा तैयारियों के अंतर्गत आज सुबह दिल्ली पुलिस ने मोटर काफिले की रिहर्सल की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
5: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर NDMC क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के अनुसार यमुना नदी के किनारे सुरक्षा उपायों की भी समीक्षा की गई है। इस बीच NDMC नई दिल्ली के प्रमुख इलाकों में सौंदर्यकरण और सड़कों के स्वरूप में सुधार से जुड़े कार्य कर रही है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के नेताओं, आउटरीच देशों तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को एक मंच पर एकत्रित करेगा। समर्थ के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारे संवाददाता ने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आईब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आईब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा तथा डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है।
6: सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की UPI भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमरीकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम दूसरे अल अलामीन अंतरराष्ट्रीय एयर शो में भाग लेने के लिए मिस्र पहुंच चुकी है। ये एयर शो 8 से 10 सितंबर तक अल अलामीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि टीम सुनियोजित प्रदर्शनों की श्रृंखला के माध्यम से सटीकता, पेशेवर अंदाज और उड़ान कौशल का प्रदर्शन करेगी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि सारंग टीम देश में ही डिजाइन और निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव का संचालन करेगी। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
7: जो निर्देश होगा, जो भी प्रधानमंत्री जी का, वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ। जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
0: आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के साधारण चुनाव कराने के लिए सांविधिक नियम जारी किए हैं। ये नियम महापौर, अध्यक्षों और वार्ड सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव के साथ साथ उप महापौर और उपाध्यक्षों के अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए बनाए गए हैं। संशोधित कानूनों के तहत नगर निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर किया जाएगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। भारतीय जोड़ी का मुकाबला चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से होगा। विश्व के पांचवें नंबर की भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद, अजरियन अयूब और टेन वी कियोंग को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व करने का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जलडमरों मध्य में अमरीका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से। इसके साथ ही

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। कैसे हैं आप मेरे प्यारे श्रोताओं? उम्मीद है बारिश की इन खूबसूरत बूंदों के बीच आप भी बिल्कुल मस्त होंगे। बारिश का मौसम है दोस्तों, कहीं खिड़की के पास बैठकर गर्मा गर्म चाय की चुस्कियाँ ली जा रही है, कहीं अदरक वाली चाय के साथ पकौड़ों की प्लेट सज चुकी है, तो कहीं बच्चे बारिश देखकर बस यही सोच रहे हैं आज स्कूल जाना ना पड़े या बस आज तो छुट्टी मिल जाए। लेकिन इस सुहाने मौसम के साथ एक छोटी सी जिम्मेदारी भी आती है अपना ख्याल रखने की, क्योंकि मानसून जितना रोमांटिक लगता है ना, उतना ही थोड़ा सावधान रहने वाला मौसम भी है। कभी अचानक बारिश, कभी जल भराव, कभी उमस और फिर मच्छरों की अपनी अलग ही मेहमान नवाजी होती है। तो आज की महिला मंच में हम बात करेंगे बिल्कुल आपकी और आपके परिवार की। बात होगी बारिश के मौसम में क्या खाना चाहिए और किन चीजों से थोड़ा परहेज करना चाहिए, बच्चों को कैसे सुरक्षित रखें, हमारे घर के सीनियर सिटीजन का कैसे ख्याल रखें और महिलाएं खुद को सबसे आखिर में रखने की आदत को थोड़ा बदल कर अपने लिए भी वक्त कैसे निकालें, क्योंकि अक्सर घर की महिलाएं सबकी चिंता करती हैं, बच्चों ने खाना खाया या नहीं, पति ने छाता लिया या नहीं, सास ससुर ने दवा ली या नहीं। लेकिन जब बात खुद की आती है तो कहती है, अरे मेरा क्या है, मैं तो ठीक हूँ। बस अब महिला मंच में इतना ही कहना है, आप भी इम्पोर्टेंट हैं, आपका स्वास्थ्य भी जरूरी है। और हाँ, मानसून में सिर्फ अपने घर का ही नहीं, अपने आसपास के माहौल का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं पानी जमा ना हो, घर के आसपास साफ सफाई रखें और मच्छरों को अपना परमानेंट एड्रेस बनाने का मौका बिल्कुल भी ना दें। और इस बारिश में प्रकृति के लिए भी एक छोटा सा काम कीजिए, अगर जगह है तो एक पौधा जरूर लगाइए, लेकिन सिर्फ फोटो खिंचवा कर छोड़ मत दीजिए, उसे पानी दीजिए, उसकी देखभाल कीजिए और उसे बड़ा होते हुए देखिए। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए खास महिला मंच, क्या और इसमें इंटरेस्टिंग होने वाला है उसे सुनने के लिए आप बने रहिए खुशी के साथ। एंड मेरे साथ में यहाँ पर रीना भी है, जो कि करने वाले हैं हम कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें, कुछ मजेदार। बस आप बने रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6।
1: हां जी, की हाल चाल है? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और महिला मंच शो में कनेक्ट हो गए हैं आप सभी के बीच। और मेरा नाम आप सभी को पता ही है कि मैं आरजे रीना हूँ खुशी के साथ। मतलब हम दोनों आ जाते हैं महिला मंच शो में आप सभी के लिए कुछ अटपटे चटपटे लेकर, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मानसून के बारे में। मानसून के फुहारे भला किसको अच्छी नहीं लगती, आसमान में बादल, मिट्टी की सौंधी खुशबू, खिड़की से आती ठंडी हवा और बाहर गिरती बारिश। मौसम अपने आप में खूबसूरत हो जाता है, लेकिन दोस्तों बारिश के इस सुहाने मौसम के साथ हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, खासकर अपनी और अपने परिवार की सेहत को लेकर। मानसून में मौसम बदलता रहता है, कभी तेज बारिश, कभी उमस और कभी अचानक धूप। ऐसे में हमें अपनी दिनचर्या और खान पान का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो आज महिला मंच में इसी खूबसूरत मौसम की बात करेंगे, कैसे मौसम का पूरा मजा ले, कैसे मौसम का पूरा मजा ले, लेकिन अपनी सेहत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना करे, क्योंकि खुशहाल परिवार की शुरुआत होती है एक स्वस्थ इंसान से। और अक्सर उस स्वस्थ परिवार की जिम्मेदारी घर की महिला अपने कंधों पर उठाती है, इसीलिए आज सबसे पहले खुद का ख्याल रखना, कैसे हम खुद का ख्याल रख सकते हैं बात करेंगे।
0: हाँ रीना, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है। एक्चुअली मैं अब बात करने वाली हूँ, पता है आपको, साफ और सुरक्षित पानी की, क्योंकि मानसून में ना पानी का बहुत ज्यादा रोल होता है और बारिश के मौसम में सबसे जरूरी चीजों में बारिश के मौसम में सबसे जरूरी चीजों में से एक है पानी। पानी जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसका साफ और सुरक्षित होना। मानसून में पानी दूषित होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, इसीलिए पीने के पानी को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। कोशिश करें कि घर में साफ फिल्टर किया हुआ पानी या जरूरत के अनुसार उबला हुआ पानी ही इस्तेमाल हो। बाहर कहीं जा रहे हों तो अपनी पानी की बॉटल साथ रखें। और एक छोटी सी बात, सिर्फ पीने का पानी ही नहीं बल्कि पानी से जुड़े बर्तनों की साफ सफाई भी ध्यान रखें। पानी की बोतल, गिलास और फिल्टर को समय समय पर साफ करना जरूरी है।

0: खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए पानी की स्वच्छता पर ध्यान दें। तो बारिश कितनी भी हो, बादल कितने भी घने हो, पानी के मामले में हमारी सावधानी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए।
1: ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि पानी से ही जीवन है, जल है तभी जीवन है। और जल को हम साफ सफाई रखेंगे, बल्कि बहुत से ये कहते हैं कि फिल्टर का पानी जो आरओ का पानी है वो पी नहीं पाते, तो आप अपने घर पानी बॉईल करके रख सकते हैं, वो ठंडा होने के बाद पी सकते हो, तो फिल्टर से भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसी के साथ साथ हम खाने का भी ध्यान रखेंगे, बाहर के खाने से थोड़ी दूरियां बनाकर रखनी चाहिए। आज बात आती है उस चीज की जिसे देखकर मानसून में दिल कहता है बस आज तो खा ही लेता हूँ, गर्मा गर्म समोसा पकौड़े चाट गोलगप्पे। बारिश और स्ट्रीट फूड की दोस्ती बहुत पुरानी है, लेकिन दोस्तों इस मौसम में बाहर का खुला और लंबे समय तक रखा हुआ खाना खाने से बचना बेहतर है। खासकर कटा हुआ फल, खुले में रखी चटनी या ऐसी चीजें जिनकी साफ सफाई को लेकर हमें भरोसा ना हो। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बारिश में स्वादिष्ट खाना बंद कर दीजिए। घर पर ही गर्मा गर्म पकौड़े बना लीजिए, साथ में अदरक वाली चाय और परिवार के साथ बैठकर बारिश का आनंद लीजिए। स्वाद भी रहेगा और हाइजीन भी। तो अगली बार बारिश देखकर स्ट्रीट फूड खाने का मन करे तो खुद से पूछिए, मजा 2 घंटे का है या मौसम पूरे मौसम की? फैसला अब आपके हाथ में है कि आप कैसे मैनेज करते हैं।
0: रीना, पकौड़े की बात की है तो यार मेरा भी बहुत मन कर रहा है क्योंकि देखो ना बाहर का मौसम कितना सुहाना है और इस सुहाने से मौसम में गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और पकौड़े, आए हाय हाय, मुझे तो मतलब मेरा दिन तो बन जाएगा भाई। पर ये पकौड़े हमें खिलाएगा कौन, लेकर आएगा ये बताओ आप? आप बनाने जाओगी? नहीं, मैं भी नहीं जा सकती हूँ।
1: नहीं, एक्चुअली मैंने बहुत अवॉइड किया है, मतलब तली हुई चीजें खाने को।
0: अच्छा, ऑयली
1: फूड। अभी मैं हाँ रक्षाबंधन पे भी घर गई थी तो हमारे घर में भैया पकौड़े सकौड़े बनने थे, लेकिन मैंने अपने आत्मा के ऊपर कंट्रोल कराया।
0: दिल को संभाले इन्होंने, दिल संभल जा जरा।
1: और मतलब अब तक के सफर में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब मैं घर गई हूँ और घर से आई हूँ, बाहर का मैंने कुछ भी नहीं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम किया है रीना। इसके लिए हम आपको एक चॉकलेट देते हैं, ये लीजिए।
1: जल्दी दे दो।
0: तो देखिए, लड़की ने बहुत अच्छा काम किया है, ये ट्रैवल करती है एंड इन्होंने कहा है कि इस बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने इतना लंबा सफर तय किया है मुरादाबाद टू हरियाणा, लेकिन मैंने बाहर की एक भी चीज नहीं खाई है, मैं अपने घर से ही बनाकर लेके गई थी अपने लिए फूड।
1: इनफैक्ट मैंने पानी तक नहीं पिया है बाहर का।
0: अरे वाह, कमाल कर दिया, लड़की ने धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। चलो दोस्तों, अब हम करते हैं मानसून का पौष्टिक खान पान। ठीक है, बारिश के मौसम में हमारा खान पान थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। घर के खाने में दाल, हरी सब्जियां, मौसमी फल और पर्याप्त प्रोटीन शामिल करें। सब्जियों और फलों को अच्छी तरह से वॉश करें, उसके बाद ही उसका इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा ऑयली और हैवी खाना रोज रोज खाने से बचें। कोशिश करें कि ताजा और अच्छी तरह पका हुआ खाना ही खाएं। अगर सुबह जल्दी आपको काम पर जाना है तो रात में थोड़ा प्लानिंग कर लें। सुबह का नाश्ता स्किप ना करें, पोहा, उपमा, दलिया, बेसन का चीला या घर का साधारण पौष्टिक नाश्ता लीजिए। और हाँ, बारिश के मौसम में पानी पीना कम मत कीजिएगा। कई बार ठंडे मौसम में प्यास कम लगती है, लेकिन शरीर को पानी की उतनी ही जरूरत होती है, इसीलिए अपनी वाटर बॉटल को अपने साथ रखना ना भूलिए, उसको अपने साथ हमेशा रखिएगा,
1: एक अपने साथी बनाकर।
0: हाँ, वो बहुत जरूरी, जैसे हमारी साथी हमारे साथ रहती है, देखो कितनी क्यूट बॉटल है हमारी तरह। चलो अभी गाना सुन लेते हैं यार, इतनी सारी हमने बारिश की बातें की है, बारिश का गाना भी तो हो जाए।
1: अच्छा, कौन सा गाना सुनोगी तुम?
0: ओ, गाने तो बहुत सारे हैं। एक बारिश का गाना है बहुत ही प्यारा सा, मैं नाचूं आज छम छम छम।
1: ओ चलो, अच्छी बात है, ये गाना
0: थोड़ा सा
1: अच्छा,
0: इस बहाने थोड़ा डांस भी कर लेंगे और हमारे श्रोताओं को भी डांस करने का मौका मिल जाएगा।
1: अरे वो तो ऑलरेडी डांस कर रहे होंगे।
0: नहीं, वो डांस करने के लिए तैयार ही रहते हैं कि खुशी जी बस एक बार गाना चला दो। तो चलो अभी लौट कर आते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के इस पर।

0: तो श्रोता बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय है कि नाचू मैं आज छम छम छम। देखिए छम छम नाचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बरसात के मौसम में ज्यादा देर तक गीले कपड़ों में बिल्कुल ना रहे, क्योंकि ईचिंग शुरू हो जाती है, फिर कुछ नहीं पता, हम बाहर जाते हैं तो पानी इकट्ठा तो हो ही जाता है, तो हमें नहीं पता वो पानी कितना साफ है कितना साफ नहीं है, उससे हमें कीटाणु भी लग जाते हैं हमारे अंदर और फंगल्स फिर शुरू वहीं से होता है। इसीलिए ज्यादा देर तक गीले कपड़े में, गीले जूतों में बिल्कुल ना रहे। कोशिश करें कि आप घर पहुंचते हैं तो जल्दी से जल्दी जो भी आपने पहन रखा है उसको चेंज करें। बारिश में सबसे आम परेशानी होती है गीले कपड़े और गीले जूते। कई बार हम सोचते हैं कि थोड़ी देर तो पहन ही लेते हैं, लेकिन लंबे समय तक गीले कपड़ों में रहना अनकंफर्टेबल हो सकता है। इसीलिए जैसे ही घर पहुंचे गीले कपड़े बदले और पैरों को अच्छी तरह सुखाए। बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी यही आदत अपनानी चाहिए। जूते को भी पूरी तरह सुखा दे। अगर घर में कई लोग बाहर से भीग कर आते हैं तो एंट्री के पास एक छोटा सा स्पेस रखें जहां अम्ब्रेला रेनकोट और वेट वाटर फूड व्यवस्थित तरीके से रखे जा सके। इससे घर भी साफ रहेगा और फर्श पर पानी फैलने से फिसलने का खतरा भी कम रहेगा। ये तरीका बिल्कुल परफेक्ट
1: हाँ
0: है।
1: हाँ यार, कई बार होता है ना कि हम जल्दी जल्दी आते हैं गीले कपड़ों में गीले शूज पहनकर और फिर हमारा पैर भी स्लिप हो जाता है।
0: हाँ। और वैसे भी पहले के टाइम में मतलब घरों में इतना फर्श नहीं होता था, मिट्टी का होता था, थोड़ा बहुत सूख भी जाता थोड़ी देर में, लेकिन जब फर्श पे अगर पानी गिर जाए तो एक तो वो दिखता कम है और उस पे जिसकी पैर पड़ गई भैया वो गिर ही जाता है। तो इसीलिए ये पैर जो था ये पैतरा अपनाना बहुत जरूरी है।
1: और बच्चों का भी खास ख्याल रखें इस बारिश के मौसम में। बारिश शुरू होते ही ना बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है दोस्तों। पानी देखकर मन करता है कि बस छपाछप उसमें कूद जाए, लेकिन माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चों को सुरक्षित रखें। कोशिश करें कि बच्चे गंदे या जमे हुए पानी में ना खेलें। बाहर से घर लौटने के बाद उनके हाथ पैर अच्छी तरह धुलवाएं। गीले कपड़े और जूते ज्यादा देर तक पहने ना रहने। स्कूल जाने वाले बच्चों के बैग में जरूरत के अनुसार एक्स्ट्रा कपड़े या छोटा टॉवल रखना भी उपयोगी हो सकता है। और बच्चों को प्यार से समझाइए कि बारिश का मजा लेना है लेकिन सेफ्टी के साथ। उन्हें ये भी सिखाइए कि सड़क पर जमा पानी में उतरना या खुले बिजली के तारों के आसपास जाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। क्यों रीना, कई बार छोटे बच्चे इस तरह की गलतियां कर देते हैं ना।
0: खुशी, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही है कि बच्चों को नहीं पता होता है कि कौन सा तार मतलब नुकसान पहुंचा सकता है। और बारिश के मौसम में वैसे भी चाहे घर में भी कोई प्लग हो, बच्चे बड़े मतलब मासूम होते हैं, उनको नहीं पता, वो बार बार फिंगर भी डालते बोर्ड के अंदर, तो उनसे
1: कभी वो वायर छू रहे हैं, कभी वो स्विच को ऑन कर रहे हैं ऑफ कर रहे हैं गीले हाथों से,
0: और उनको नहीं पता होता है। कुछ तारे भी घर में होती है जिसको लापरवाही की वजह से हम छोड़ देते हैं
1: जी,
0: तो उसका भी ध्यान रखिए। और बच्चे छत पर जाते हैं, छत पर भी बिजली के तारे होती हैं, तो वो भी मतलब मोस्टली ये है कि बच्चों की देखरेख बहुत जरूरी है बरसात के मौसम में। साथ ही साथ बुजुर्गों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
1: बुजुर्गों का ध्यान बिल्कुल। अब आपने सीनियर सिटीजन की बात ही की है तो अब बात हमारे घर के बड़े बुजुर्गों की। बारिश के मौसम में सीनियर सिटीजन का थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए। फर्श गीले होने पर फिसलने का खतरा बढ़ सकता है, इसीलिए घर का फ्लोर जितना हो सके सूखा रखें एंड बाथरूम में भी विशेष सावधानी रखें। और अगर घर में बुजुर्ग अकेले चलते हैं तो रास्ते में सामान या पानी जमा ना रहने दें। उनकी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें ऐसी जगह रखें जहां उन्हें बार बार झुकना या ऊंचाई पर हाथ ना लगाना पड़े। मौसम के अनुसार हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन दें और पानी पीने की याद दिलाते रहें। और सबसे जरूरी, उनके साथ थोड़ा समय बिताइए। कभी उनके पास बैठकर चाय पी लीजिए, पुरानी बातें सुन लीजिए। बुजुर्गों को दवा जितनी जरूरत होती है ना, उतना ही अपनापन भी जरूरी होता है, तो उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अच्छा लगता है ना जब हम अपने सीनियर सिटीजन के पास बैठते हैं, उनसे उनकी पुरानी बातें सुनते हैं और उनसे बहुत सारी चीजें हमें सीखने को भी मिलती है। क्यों रीना, देखो अब आप भी मुझे बता रही थी अपनी दादी जी के बारे में कि मैं जब घर जाती हूँ तो दादी जी के पास ही सोती हूँ।
0: हाँ, ये तो है।
1: और उनकी वो चुलबुली सी बातें, वो बड़ी खूबसूरत सी आपने बारे में बताया।
0: मैं बताती हूँ, वहाँ पर ना जीरो नेटवर्क होता है,
1: हाँ,
0: फोन से दूर,
1: हाँ,
0: और उनकी जर्नी उनकी कहानियां सुनना कि हमारे जमाने में ऐसे होता था
1: और हमें और इंटरेस्ट आता है, हाँ, कि और बताओ ना दादी जी,
0: हाँ,
1: है ना।
0: हम पूछते रहते हैं, मतलब हमें ना मतलब दिलचस्पी हो जाती है कि हाँ। भाई इस चीज के बारे में जानना है, क्योंकि जो वो चीज हमने नहीं देखी
1: नहीं देखी है,
0: तो हम उस चीज को बारीकी से सुनना पसंद करते हैं।
1: हाँ, हमें अनुभव मिलता है उन चीजों का कि अच्छा पहले ऐसे भी हुआ करता था, और पहले की लाइफ बहुत सिंपल सिटी थी पहले।
0: हाँ, की अरे अब पता है क्या है यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फोन।
1: फोन भी है रीना, और आजकल के टाइम में ना लोग दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं।
0: ये बिल्कुल सही कहा है
1: ना, तो इस चीज में ना इंसान की जो रियल खुशी है ना वो भी गायब हो जाती है।
0: और जो इंसान परेशान रहते हैं ना, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगी कि अपने घर के बड़े बुजुर्ग के साथ बैठिए, उनसे बात करिए। जब आप उनसे बात करेंगे ना, बात कहाँ से निकलती निकलती भैया कहाँ पहुंच जाएगी पटरी, ना आपको भी नहीं पता चलेगा,
1: और टेंशन और दूर हो जाएगी।
0: बिल्कुल माइंड ऐसा होता है यार रिलैक्स, मतलब एक अलग ही सुकून की अनुभूति होती है।
1: हाँ।
0: ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल रिलैक्स कर रहा हूँ। तो आप में से बहुत से ऐसे होंगे कि परेशान भी रहते हैं, डिप्रेस भी रहते हैं, तो ये वाला जो पैतरा है बड़े बुजुर्गों के पास बैठने का, वो जरूर अपनाइए।
1: कभी उनकी गोद
0: में देखिएगा, आपको आप खुद अनुभव करिएगा।
1: हाँ।
0: कि मुझे कैसा फील हो रहा है,
1: और कभी उनकी गोद में सर रख कर देखना, जब वो प्यार से आपके बालों को सहलाएंगे है ना, आपके सर दबाएंगे, तो आपको इतना अच्छा फील होगा ना, आपको किसी दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
0: हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने।
1: हाँ।
0: और देखिए बरसात के मौसम में ना हमें साफ सफाई का तो ध्यान रखना ही है, साथ ही साथ हम अपने घरों में गमले भी बहुत रखते हैं।
1: हाँ, पेड़ पौधे है ना लगाते हैं,
0: तो उनकी इस बरसात के मौसम में साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। आपके घर में आप कूलर यूज करते हैं तो उसका पानी कोशिश करें कि डेली चेंज करें, और बरसात के मौसम में मुझे नहीं लगता कि पानी पर एसी चलाना जरूरी है, बिना पानी के भी आप चला सकते हैं।
1: चला सकते हैं, एग्जैक्टली राइट। और हाँ रीना, ऐसा भी होता है ना कि मैंने बहुत सारे मतलब ऐसा काफी जगह देखा है कि टेरेस पे छत पर ना बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम यूज नहीं करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उन चीजों में क्या होता है ना, पुराना जो कबाड़ होता है उसमें पानी भर जाता है, और जब पानी भर जाता है तो फिर उसके बाद क्या होता है, मच्छर पनप जाते हैं।
0: और इस मौसम में ना डेंगू मलेरिया हैजा वॉमिटिंग का जो प्रॉब्लम है ना, ये आपको बार बार देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए मच्छरों से बचकर रहिए, क्योंकि मच्छरों की जो बारात है ना वो बरसात आते ही शुरू हो जाती है। तो इसमें भैया जितना हो सके आप बच के रहेंगे उतने आपके लिए बेनिफिट रहेगा। बारिश के साथ साथ एक और मेहमान घर में आने की कोशिश करता है, जैसा कि मैंने बताई दी आपको मच्छर, और इससे दोस्ती बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो आपके पास आते हैं बिनर बिनर करके कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बहुत प्यारा दोस्त हूँ, अगर तुम्हारी मतलब अगर तुम नहीं उठ पाते हो जल्दी तो मैं हूँ ना उठाने के लिए तुम्हें, ये ऐसा वाला दोस्त होता है, लेकिन ये अस्पताल पहुंचा देता है।
1: बाकी दोस्तों होटल लेकर जाते हैं, रेस्टोरेंट लेकर जाते हैं, पर ये मच्छर है जो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं।
0: हाँ, ये बिल्कुल सही कहा तुमने। घर के आसपास पानी जमा ना होने दे, कूलर गमले बाल्टी छत और ऐसी जगहों को चेक करते रहे जहाँ बारिश का पानी जमा हो सकता है। अगर घर के किसी कोने में पानी जमा होता है तो उसे तुरंत हटाइए, खिड़की दरवाजे पर जाली का इस्तेमाल करें, और सुरक्षित और बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से बचा कर रखें। याद रखिए मच्छरों से बचाव सिर्फ घर के अंदर नहीं बल्कि घर के आसपास की साफ सफाई भी जरूरी होता है, इससे आप सुरक्षित रह पाएंगे। अदरवाइज तो भैया आपको पता ही, ऐसा इंजेक्शन लगा कर जाते हैं ना जिसका असर 15 दिन तक रहता है,
1: 15 दिन तक रहता है। और मैं ये कहना चाहती
0: हूँ धीरे धीरे होता है इसका असर।
1: हाँ, मैं कहना चाहती हूँ जी, जब रात को सोते हैं तो उस समय ना फुल स्लीव के कपड़े,
0: हाँ, बाहर निकले मतलब शाम होते फुल स्लीव का कपड़े पहन लीजिए,
1: और सोते वक्त मच्छरदानी का प्रयोग करें, एंड
0: घर के बाहर कूड़ा ना इकट्ठा होने दे, क्योंकि भैया आज के टाइम में ना बहुत होता है कि मैं इसके घर के तरफ सफाई नहीं करूंगी, बस इधर उधर झाड़ू लगाए वो उसके कोने में, वो उसके कोने में ऐसे ही कर देते हैं।
1: घर की
0: तो देखिए आप तो झाड़ू लगा के इधर उधर कर देते हैं, लेकिन बीमारियां भी तो आप सभी के पास आती है ना, तो इसीलिए ऐसा ना करे कि ये पड़ोसन है वही साफ करेगी, ये पड़ोसन है वही साफ करेगी, अरे 2 मिनट लगता है आप ही हटा दीजिए इस कूड़े को।
1: हाँ, अब आपने घर की साफ सफाई की बात छेड़ी है तो मैं बताई देती हूँ कि घर में मानसून में घर की साफ सफाई का तरीका भी थोड़ा बदल जाता है, नमी ज्यादा होने के कारण कपड़े देर से सूखते हैं, और कई जगह डीपनेस हो सकती है, इसीलिए घर को जितना संभव हो वेंटिलेशन रखें, गीले कपड़ों को लंबे समय तक कमरे में ना टांगें, कचरा समय पर बाहर करें, और किचन में पानी जमा ना रहने दें, खाना बनाने की जगह साफ सफाई रखें और खाने की जगह को हमेशा ढककर रखें। अगर कहीं सीलन या फंगस दिखाई दे तो
0: इनफैक्ट फ्रिज में भी जब खाना रखते हैं ना उसको भी ढककर रखना चाहिए।
1: ओके, फ्रिज में ऐसे ही खाना रख देते हैं?
0: हाँ, बहुत रख देते ना यार, यहाँ कौन मच्छर क्या जाएगा, धूल क्या ही जाएगा, ऐसे ही रख देते हैं। तो फ्रिज में कभी भी ऐसे
1: खुली चीजें
0: ना
1: रखें,
0: मतलब जो भी आप जिस कटोरी में आप सब्जी रखते हैं, चावल रखते हैं, उसके ऊपर प्लेटें मतलब ढककर रखें।
1: ओके, कहने का यही है कि कुल मिलाकर उसको खुला ना छोड़ें, ढककर रखें और खाना बनाने की जगह साफ सफाई रखें और खाने की चीजों को ढककर रखें। जैसे रीना जी ने भी कहा ही है दोस्तों, चाहे फ्रिज हो या किचन हो, अगर कहीं सीलन या फंगस दिखाई दें तो उसकी सफाई पर विशेष ध्यान दें। घर साफ रहेगा तो वातावरण भी बेहतर रहेगा और बारिश का मौसम ज्यादा आराम से एंजॉय किया जा सकेगा। तो चलो दोस्तों, अभी हमने बहुत सारी बातें की हैं, अब एक छोटा सा एड ब्रेक भी लेते हैं क्योंकि म्यूजिकल ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है। तभी लाइफ हो या फिर शो हो, इंटरेस्ट तभी आता है जब एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं।
0: और गाना मैं ऐसे सुनाने वाली हूँ आपको ना, मतलब बरसात के मौसम में आपने ये वाला गाना नहीं सुना तो मतलब कुछ भी नहीं सुना आपने।
1: मतलब बारिश अधूरी है कहीं ना कहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मौसम का मजा नहीं ले पाएंगे। सही बात है।
1: चलो ठीक है, हम भी सुनते हैं। कौन सा गाना रीना जी सुनाने वाली है?
0: बिल्कुल, लेकिन सुनाने से पहले देखिए, मौसम मतलब मुझे लगता है कि इस टाइम बारिश इतनी नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो खेतों में फसलें

0: जो दाने हैं ना वो आने स्टार्ट हो गए हैं, मतलब धान आना स्टार्ट हो गया
1: अच्छा।
0: खेत में। हाँ, तो इस टाइम जैसे बारिश होगी तो वो फसल खराब हो जाएगा, क्योंकि हम तो घर में बैठे बैठे के सोच रहे हैं कि भैया मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, कितना अच्छा वेदर है, लेकिन उस किसान की मेहनत को भी सोचिए जो इतनी मेहनत में भी अपने खेतों में जाता है, फसल उगाता है, और मौसम बारिश भी ऐसे टाइम पर होती है ना जो फसलों को खराब कर देती है।
1: और इन्हें ऐसा भी होता है कि जहाँ बारिश की नीड नहीं होती ना वहाँ बारिश होती है, और जहाँ बारिश की नीड होती है वहाँ बारिश आती ही नहीं
0: आती है, क्योंकि इस टाइम फसलें भी उगने शुरू हो गए हैं, धान उगना शुरू हो गया है, और जब बारिश ज्यादा रहेगी तो जो फसल है वो एकदम अजीब तरीके से हो जाते हैं, जिनसे उनकी ग्रोथ में प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी हम इस गाने के बाद मिलते हैं आप सभी को।

0: श्रोताओं, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है और फिर से मैं आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई हूँ। देखिए, मॉनसून में सुकून भी जरूरी है। बारिश का मौसम सिर्फ शरीर नहीं बल्कि मन को भी प्रभावित करता है। कभी लगातार बारिश के कारण घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है, रूटीन बदल जाता है। ऐसे में अपने दिन में छोटी छोटी खुशियां शामिल करें, पसंदीदा संगीत सुनिए, किताबें पढ़िए, परिवार के साथ बैठिए या बालकनी में बारिश का आनंद लीजिए। महिलाओं के लिए ये खास तौर पर जरूरी है कि वे सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही नहीं बल्कि मेंटल वेल बिगनिंग का भी ध्यान रखें। हर दिन कुछ समय ऐसा जरूर रखें जिसमें आपको किसी काम की जल्दबाजी ना हो, बस आप हो और आपकी पसंद की कोई छोटी सी एक्टिविटी, ताकि देखिए आप कभी मन खुश होना चाहिए, क्योंकि बरसात में हर किसी का ध्यान रखते हैं, ऊपर से आप सभी की जो काम है वो दुगना बढ़ जाता है। अभी झाड़ू लगा के निकले थे, अभी पोछा लगाया था, बारिश आ गई तो फिर वाइपर लेके भाग लेते हैं
1: यार,
0: अभी
1: ये तो सही कह रही
0: हो। जट से उन्हें कपड़े धोके छत पर सुखा के फिर भाग के जाओ
1: फिर लेकर उतार के लेकर आओ।
0: तो बारिश जितना हमें सुकून देता है उतना काम बढ़ा भी देता है, क्योंकि जो काम हम कर हटते हैं वो दोबारा कहते हैं भाई करो इस काम को तुम। और इस टाइम में ना कपड़े सुखाने की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत परेशानी हो जाती है बरसात के मौसम में। और साथ ही साथ जो अनाज धोकर खाते हैं, गेहूं धोकर खाते हैं, जिनके घर में अनाज खत्म हो गया उनका क्या हाल होता है?
1: वो एडवांस में रहते हैं, एडवांस चलते हैं रीना, वॉश करके पहले सुखा के रख लेते हैं। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात जो बहुत जरूरी है, बारिश के मौसम में अगर किसी को लगातार तेज बुखार, उल्टी, दस्त, बहुत कमजोरी या कोई गंभीर परेशानी महसूस हो तो उसे नजरअंदाज ना करें। हर बीमारी का इलाज घरेलू नुस्खों से करना सही नहीं होता, जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लें और खुद से दवाई लेने से बचें। बच्चों, बुजुर्गों और पहले से किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे लोगों के मामले में विशेष सावधानी रखें। सबसे जरूरी बात, लक्षण ज्यादा हों या हालात बिगड़ने लगें तो मेडिकल हेल्प लेने में जरा भी देरी ना करें। ठीक है श्रोताओं, तो इन्हीं बातों के साथ अब हम चलते हैं, आपसे जाने की अनुमति लेते हैं। आप भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

तेरा इंतजार बड़ी शिद्दत से कर रही है मेरी मोहब्बत की सरगर्मियां। तेरे मेरे फासलों के बीच छुपी हुई है बहुत सी नजदीकियां।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, यानी बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी।
1: और आज की हमारी कहानी पहुंचती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस

0: शहर में जिसने इतिहास में क्रांति की चिंगारी जलाई, खेल के मैदानों में देश का नाम रोशन किया और आज विकास की नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: जी हाँ, बात हो रही है मेरठ की।
0: मेरठ यानी 1857 की क्रांति की ऐतिहासिक धरती, देश के खेल सामान उद्योग की बड़ी पहचान और आज एक ऐसा शहर जहां परंपरा और आधुनिक विकास दोनों साथ साथ कदम बढ़ा रहे हैं।
1: बिल्कुल, और मेरठ की सबसे खूबसूरत बात क्या है जानती हो?
0: बताइए।
1: यहाँ विकास सिर्फ सड़कों, इमारतों और उद्योगों की कहानी नहीं है। विकास तब पूरा होता है जब सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे आम परिवार के जीवन में खुशियाँ लेकर आए।
0: और इसी सोच को केंद्र में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं समाज के अलग अलग वर्गों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने का प्रयास कर रही हैं।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार की प्राथमिकताओं में जन कल्याण और विकास को साथ लेकर आगे बढ़ने पर जोर दिखाई देता है।
0: और इसी क्रम में सरकार की योजनाएं कोशिश कर रही हैं कि विकास का लाभ समाज के उन परिवारों तक भी पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
1: इन्हीं में से एक है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना।
0: सोचिए, एक परिवार के लिए बेटी का विवाह सिर्फ एक रस्म नहीं होता, वो वर्षों का सपना होता है, जिम्मेदारी होती है और कई बार आर्थिक चिंता भी।
1: ऐसे परिवारों के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एक सहारा बनकर सामने आती है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पात्र जोड़ों का सामूहिक विवाह कराना और उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
0: योजना के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार पात्र जोड़े को सरकार की ओर से कुल 1,00,000 रुपए तक का प्रावधान है। इसमें 60,000 रुपए की आर्थिक सहायता, 25,000 रुपए की विवाह सामग्री और 15,000 रुपए का आयोजन संबंधी खर्च शामिल है।
1: यानी मदद सिर्फ चेक तक सीमित नहीं बल्कि बेटी के नए जीवन की शुरुआत को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश है।
0: और यही तो है जन कल्याण की असली तस्वीर, जब सरकारी योजना फाइलों से निकलकर किसी परिवार की मुस्कान बन जाए।
1: अब जरा सुनते हैं मेरठ की दो ऐसी युवतियों की आवाज़ जिनके लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि उनके परिवार की खुशियों का हिस्सा बनी। हमारा एक खास कार्यक्रम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और इसमें लाभार्थियों की जो कहानियां हैं वो आपके बीच हम साझा करते हैं। मेरे साथ इस वक्त दो लाभार्थी यहां पर मौजूद हैं, एक का नाम है दीपांशी और दूसरी का नाम है छवि, और दोनों को लाभ मिला है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का, जो एक बहुत ही अच्छी योजना है। बहुत युवतियां, बहुत युवक इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो सबसे पहले छवि और दीपांशी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: थैंक यू।
1: छवि, आप मुझे बताओ कि ये जो योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, इसके बारे में आपको कैसे पता चला?
2: हमारे गांव के पंचायत घर से हमें पता चला इसके बारे में, तो वहां से हमने जानकारी ली इस योजना के बारे में।
1: ओके, तो जब योजना के बारे में आपको पता चला तो आगे की प्रक्रिया कैसे की आपने, क्या किया फिर?
2: इसके लिए एक फॉर्म भरा जाता है जो जन सेवा केंद्र पे जाके हमने भरा है, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो वो तैयार किए, फिर हमने जन सेवा केंद्र पे जाके फॉर्म भरवाया है।
1: तो जब आपका फॉर्म भरा गया था छवि, तो फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे आपके?
2: डॉक्यूमेंट तो आधार कार्ड और जी
3: बैंक की किताब लगी थी और पैन कार्ड की और फोटो लगे थे और राशन कार्ड की लगी थी।
1: अच्छा, कब हुई है आपकी शादी?
3: 27 जुलाई।
1: ओके, तो क्या क्या लाभ मिले हैं इस योजना से आपको?
3: सम्मान मिला है और पैसे आने खाते में।
1: क्या क्या सामान मिला है
3: उसमें? कम्बल है और मतलब 51 बर्तन है और उसमें तके हैं, गद्दे हैं और इटैची है, मतलब उसमें सारा सामान है।
1: और कितना कैश आएगा आपका?
3: 64,000
1: खाते में आएगा। छवि, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कौन सी डेट को आपकी शादी हुई?
2: 27 जुलाई को हुई थी हमारी शादी।
1: तो शादी के बाद क्या पॉजिटिव चेंज आए हैं आपकी जिंदगी में?
2: अच्छा लग रहा है, काफी चेंजेस आए हैं, तो सही चल रहा है, मतलब सब
1: लाइफ आसान हो गई है। हाँ। पहले से। छवि, हमारे श्रोताओं को बताओ कि क्या क्या सुविधा आपको इस योजना के अंतर्गत मिली है?
2: तो हमें सामान मिला है, कुछ जरूरत की चीजें मिली है और कैश मिला है।
1: कौन से गांव में आपकी शादी हुई है?
2: चंदसारा
1: में। हस्बैंड ठीक है आपके?
2: हाँ ठीक है।
1: कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
2: नहीं, कोई दिक्कत नहीं है।
1: तो इस तरह की जो स्कीम है यूपी गवर्नमेंट की, कितनी सहायक हो सकती है ये समाज के लिए या फिर उन वर्ग के लोगों के लिए जो थोड़े से गरीब वर्ग के लोग हैं?
2: हाँ, बहुत सहायक है ये और लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए, सभी सेवाओं का फायदा उठाना चाहिए जो चल रही हैं, जो गवर्नमेंट ने ये निकाली है।
1: छवि, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का फॉर्म भरने के बाद क्या प्रक्रिया हुई, आगे कैसे हुआ सब?
2: फॉर्म भरने के बाद फिर सबमिट कर दिया वो ब्लॉक में जाके, और उसके बाद फिर डेट मिली है हमको कि 27 तारीख को आपको वहाँ पे जाना है। कार्ड आया था उससे पता चला, फिर वहाँ पे गए हम लोग, फैमिली गई है हमारी और जो मेरे हस्बैंड उनकी फैमिली गई है, वहाँ पे जाके फिर हुआ है।
1: छवि, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जितनी शानदार योजनाएं दे रहे हैं आप सभी लोगों को, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगी?
2: हाँ, वो ही मतलब अच्छा कर रहे हैं, वो योगी भी और मोदी जी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो गरीब फैमिली है उनको काफी योजना निकाल रहे हैं, नई नई योजना आ रही है, तो अच्छा ऐसे चलता रहना चाहिए।
1: और भी बहुत सारी ऐसी युवतियां हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है बहुत वक्त से, या फिर पैसे की तंगी है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, उनको क्या संदेश आप देना चाहोगी?
2: इनको बस यही कि उनको जानना है इस चीज के बारे में, या नहीं पता होता बहुत से लोगों को कि क्या योजना आ रही है सरकार की तरफ से, तो बस उनको इस चीज का पता करना चाहिए प्रधान से या फिर किसी भी पंचायत घर में जाके इस चीज के बारे में पता करना चाहिए। ये तो हमारा अधिकार है, तो हमें नहीं डरना चाहिए इस चीज से, पूछना चाहिए सबसे।
1: छवि, आप क्या संदेश देना चाहोगी?
3: योगी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ।
0: आपने सुना, किसी भी योजना की सबसे बड़ी सफलता उसके आंकड़ों में नहीं बल्कि उन चेहरों की खुशी में दिखाई देती है जिन तक उसका लाभ पहुंचता है।
1: वैसे मेरठ की बात हो और खेलों का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है?
0: बिल्कुल नहीं, मेरठ को देश की स्पोर्ट्स सिटी के रूप में पहचान मिली है। यहाँ क्रिकेट बैट, बॉल, हॉकी स्टिक, बैडमिंटन और दूसरे खेल उपकरणों का बड़ा उद्योग है।
1: और यही तो है उत्तर प्रदेश की खासियत, हर शहर की अपनी पहचान, अपनी क्षमता और अपनी कहानी।
0: सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP पहल के तहत मेरठ की पहचान स्पोर्ट्स प्रोडक्ट से जुड़ी है, जिससे स्थानीय उत्पादों और उनसे जुड़े कारोबार को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।
1: यानी मेरठ के मैदानों में खिलाड़ी पसीना बहाते हैं और मेरठ की कार्यशालाओं में कारीगर अपने हुनर से खेलों का सामान तैयार करते हैं।
0: वाह, क्या बात कही आपने।
1: क्योंकि विकास वही है जहां हुनर को पहचान मिले, रोजगार के अवसर बढ़े और स्थानीय पहचान को नई उड़ान मिले।
0: और यही वजह है कि जब हम विकास का प्रदेश कहते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट से नहीं होता।
1: इसका मतलब है किसी बेटी के विवाह की चिंता कम होना, किसी कारीगर के हुनर को बाजार मिलना, किसी युवा को आगे का अवसर मिलना और किसी परिवार के चेहरे पर भरोसे की मुस्कान आना। दोस्तों, फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको मिलाएंगे मेरठ की CDO यानी कि मुख्य विकास अधिकारी, जो कि 2023 से मेरठ शहर में कार्यरत हैं। मैम एक IAS ऑफिसर हैं और मैम ने मेरठ की तरक्की को, यहाँ पर हो रही प्रगति को बहुत ही करीब से देखा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन के कारण और CDO मैम के नेतृत्व के कारण मेरठ लगातार आगे बढ़ रहा है। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका।
4: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
1: मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि मेरठ में चल रही हैं इस वक्त, जो मुख्य योजनाएं हैं?
4: इस वक्त मेरठ में बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मेरठ आई थिंक एशिया का एक इकलौता ऐसा, SRTS भी चल रही है और मेट्रो भी चल रही है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे भी मेरठ में ही आया और अभी गंगा एक्सप्रेस वे का भी हाल फिलहाल में ही इनॉग्रेशन हुआ। इसके साथ में बहुत सारे ऐसे रोड्स का जाल यहाँ मेरठ में बिछाया जा रहा है और जा चुका है, जिससे आज के टाइम पे कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो मेरठ इज आई थिंक नंबर वन व्हेन इट कम्स टू उत्तर प्रदेश ऑन द होल। साथ ही में जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर स्कूल्स को मॉडल स्कूल्स बनाना, जहाँ पर हमारी सरकारी स्कूल्स में भी वही सारी फैसिलिटीज के लिए हम ट्राई कर रहे हैं जो सारी प्राइवेट स्कूल्स में दी जाती है बच्चों को, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी ऑफ टीचिंग के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। इसके साथ में अगर हम किसानों की बात करें तो किसान सम्मान निधि और बहुत सी ऐसी अलग परियोजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, जहां उन्हें सब्सिडी दी जाती है, उन्हें फर्टिलाइजर्स उर्वरक उपलब्ध कराया जाता है। अगर हम युवा की बात करें तो PMGP एक बहुत अच्छी योजना सामने आई है
1: जी।
4: जिसके अंदर उन्हें लोन दिया जाता है सब्सिडाइज रेट पे। इसके साथ ही हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ में आयुष्मान कार्ड एक ऐसा गोल्डन कार्ड है जो 5 लाख तक का फ्री उपचार मरीजों को उपलब्ध कराता है किसी भी प्राइवेट अस्पताल में भी। और इस मेरा मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो ऐसे पिलर्स हैं जिनके ऊपर ही एक मजबूत और विकसित प्रदेश की नींव रखी जा सकती है। और हमारे यहाँ पर आप किसी भी सेक्टर की बात कीजिए तो सभी में ही काम लगातार किया जाएगा।
1: जी मैम, एक योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, तो इस योजना के बारे में थोड़ा सा आप सभी को जानकारी दें मैम।
4: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बेसिकली ऐसे निर्धन परिवारों की बच्चियों की शादी कराई जाती है जिसे खुद सरकार कराती है। इसके अंदर हाल फिलहाल में अभी जो धनराशि दी जाती है उसे भी बढ़ाया गया है, उसे भी बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दिया गया है, जिसके अंदर सरकार ना सिर्फ उनको कुछ सामग्री देती है जैसे उन्हें ब्रीफ केस, गद्दा, चुनरी, कुछ साड़ियाँ, बेडशीट्स, कुकर, एक डिनर सेट, ये सब देती है। साथ ही साथ उनके खाते में भी डायरेक्ट पैसे दिए जाते हैं और इसके साथ में ही एक सामूहिक रूप में एक बहुत अच्छा वेडिंग हॉल तैयार किया जाता है जिसमें उन सभी को हम लोग प्रोत्साहित करते हैं कि वो वहाँ पर आए, शादी करें और साथ ही में उनके परिवारजन, लड़कियों के परिवारजन और लड़कों के परिवारजन दोनों ही वहाँ आते हैं, विवाह संपन्न होता है और साथ ही में वहाँ पर उन सभी के लिए एक प्रीति भोज भी रखा जाता है जिसके अंदर ये एक धर्मनिरपेक्ष चीज है जहाँ पर दोनों ही हिंदू भी और मुस्लिम परिवार दोनों की ही शादियाँ करवाई जाती
1: है। जी मैम, क्योंकि आपको 3 साल हो चुके हैं मेरठ में आपके कार्यकाल को, तो आपके अनुसार मैम जो मेरठ के लोग हैं खासकर जो ग्रामीण लोग हैं किस प्रकार इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, वो क्या आपके पास आते हैं वो बताने के लिए कि मुझे ये योजना मिली है और इससे मुझे फायदा हुआ है?
4: बिल्कुल, जब हम ग्रामीण परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सीधा सीधा गवर्नमेंट की स्कीम्स का फायदा मिला है। जब हम पेंशन की बात करें, चाहे हम कोई भी पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन हो, निराश्रित महिला पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, इन सभी का लाभ उन लोगों के द्वारा लिया जा रहा है। शिक्षा की बात करें तो आज हर एक गांव में एक बहुत अच्छा स्कूल स्थापित किया गया है, एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर हर एक गांव में बसाया गया है। वहाँ सर जो गांव की सड़कें हैं वो बहुत अच्छी हो गई है। हर एक गांव में आज एक पंचायत घर बनाया गया है, एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है। और मैं खासकर ये बात बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ मेरठ में जो डिजिटल लाइब्रेरीज या जो पंचायत घर में लाइब्रेरीज बनाई गई है उसमें आज के दिन में टोटल 1231 बच्चे ऐसे है जिन्होंने अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, चाहे वो पुलिस भर्ती हो या फिर SSC CGL हो या फिर UPSC हो, इन सब में उत्तीर्ण हुए हैं, वो उन्होंने सफलता पाई है। तो मेरा मानना है कि ये जो सरकार की सारी स्कीम्स है, शासन की सारी परियोजनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सरकार लोगों तक पहुंचाती है और हम सब लोगों का भी यही एक ट्राई हमारा रहता है, कोशिश रहती है कि हम सब उन सभी लोगों तक जा सके और उन सभी लोगों की मदद कर सके जो इनके इच्छुक है। जैसे अगर बात करें तो यहाँ पर गांव में समूह की महिलाएं भी बहुत अच्छा काम कर रही है। एक हमारे यहाँ पर समूह की महिला है जो फूलों की खेती कर रही है खेरकौदा में, एक समूह की महिला है जो बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स बना रही है, उसको अलग रेसन कोट करके वो जयपुर में अपना माल सप्लाई करती है। तो हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी दीदियां हैं जो आज लखपति दीदी बन गई
1: है।
4: यहाँ मेरठ जनपद में हमने ना सिर्फ इन सब बट आशा बहुओं का भी बहुत ध्यान रखने की कोशिश की। यहाँ पर DM सर के नेतृत्व में एक आशा पेकट के प्रोग्राम चलाया गया जिसके अंदर आज के दिन हमारी जो एक एवरेज आशा जो सैलरी पा रही है, जो एक पैसे पा रही है मंथली, वो लगभग 9,000 के लगभग पहुंच गए हैं, जिसके अंदर अभी हाल फिलहाल भी DM सर के द्वारा हमारे यहाँ पर 4 ऐसी आशाओं को सम्मानित भी किया गया था वॉशिंग मशीन देकर जो सबसे ज्यादा पैसे पा रही थी। और मैं ये बहुत खुशी के साथ कह सकती हूँ कि वो चारों ही आशा 14,000 से 15,000 रुपए प्रति महीना वो कमा रही थी। तो ये सभी चीजें दर्शाती है कि कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कैसे हम लोग एक अच्छी दिशा में आगे प्रगति कर रहे हैं।
1: जी मैम, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा जो गांव के लोग होते हैं, मैम बहुत सीधे साधे लोग होते हैं, आपके ऑफिस में भी काफी लोग आते हैं, मैम सारी योजनाओं का तो सभी को नहीं पता होगा, तो लोगों तक योजनाओं के बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए मैम विभाग की तरफ से मैम क्या क्या प्रयास किए जाते हैं, क्या क्या कार्यक्रम किए जाते हैं?
4: हर एक सेक्टर अपना अलग अलग कार्यक्रम करता है और साथ ही में हमारे द्वारा भी एक कन्वर्जेंस भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि समय समय पर यहाँ पर ग्राम चौपालों का आयोजन किया जाता है जिसके अंदर पूरा पूरा प्रशासन उठ के वो गांव में जाता है और वहाँ सभी लोगों को सभी स्कीम्स के बारे में बताता है। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स, बहुत सारे पैम्फलेट्स बांटे जाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स में उन्हें इन्वाइट किया जाता है। जैसे अगर मैं अगर कृषि की ही बात करूं तो कृषि में हमारे द्वारा ऐसी बहुत सारी चीजें की जाती है जहां पर यहां से साइंटिस्ट, जिले से साइंटिस्ट या हेडक्वार्टर से साइंटिस्ट, उनके गांव

0: में आपका रेडियो भी हमारी बहुत बहुत हेल्प करता है ये सब चीजें आम जनता तक पहुंचाने के लिए। तो मेरा मानना है कि जिस जिस प्लेटफॉर्म पर हम जैसे जैसे सोच सकते हैं हम लोग वैसे ट्राई करते हैं लोगों तक अपनी बात पहुंचाना। जैसे कल ही एक कॉन्क्लेव हुआ
1: हाँ जी
0: जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों को बुलाया गया जो कैटल फार्म चलाते हैं या जो पशुपालन से रिलेटेड है। तो ऐसे भी बहुत सारे कॉन्क्लेव यहाँ पर कराए जाते हैं।
1: जी मैम, क्योंकि हमारा जो एक कार्यक्रम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश जागरूकता के लिए है, लोगों तक हम योजनाओं को पहुंचा रहे हैं, बेसिकली मेन पर्पस है अवेयरनेस। तो हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी मैम?
0: हाँ, मैं सभी लोगों से यहाँ पर आपके माध्यम से एक अपील करना चाहूंगी कि आप सभी लोग जागृत रहिए। यहाँ पर आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी न्यूज़ भी फैलाई जा रही है जो भ्रामक है, जो सही नहीं है। तो एक बार प्लीज़ फैक्ट चेक कीजिए। कोई भी चीज़ जो आप सोशल मीडिया में पढ़ते हैं या अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे पढ़ते हैं वो सही नहीं भी हो सकती है। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनिए, देश के हित के लिए काम कीजिए और आप खुद तरक्की कीजिए ताकि देश भी आपके साथ तरक्की करे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि 2047 तक हमें भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, जिसके लिए हमें अपने प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है और उसके लिए हम सभी को बहुत अच्छे से एकदम एड़ी चोटी पर जोर लगा के काम करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारा देश वो हर बुलंदी पर पहुंचे जहां पर वो पहुंचने का हकदार है।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार विकास और जन कल्याण को साथ लेकर आगे बढ़ने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है
1: और इन प्रयासों की खासियत यही है कि प्रदेश के अलग अलग जिलों की स्थानीय जरूरतों और उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए विकास की नई संभावनाएं तलाशने पर जोर दिया जा रहा है।
2: मेरठ इसकी एक खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। एक तरफ इतिहास की विरासत, दूसरी तरफ खेल और उद्योग की ताकत और साथ में सामाजिक कल्याण की योजनाओं से जुड़ती नई उम्मीदें। मेरठ ने 1857 में बदलाव की एक चिंगारी देखी थी
1: और आज वही मेरठ नए भारत और नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में अपनी अलग पहचान बना रहा है।
2: मेरठ जहां खेल का हुनर है,
1: जहां उद्योग की ताकत है,
2: जहां इतिहास की विरासत है
1: और जहां जन कल्याण की योजनाओं से जुड़ती हैं उम्मीदें।
2: तो ये थी मेरठ से विकास की एक ऐसी कहानी
1: जिसमें आंकड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण है लोग, उनके सपने और उन सपनों को मिलती नई दिशा,
2: क्योंकि उत्तर प्रदेश बदल रहा है
1: और जब प्रदेश आगे बढ़ता है तो शहर की कहानी विकास की कहानी बन जाती है।
2: आप सुन रहे थे विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: हर वक्त तुम्हारे ही बारे में सोचता मेरा दिल है, नई राह है, नई मंजिल है।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आज जहां के पार हो जाए।

0: बॉम्बे टू बर्मिंघम न्यू दिल्ली से।
1: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
2: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

गुड इवनिंग मुरादाबाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। दोस्तों, मुरादाबाद की इस भीगी भीगी शाम में कुछ बूंदे आसमान से बरस रही हैं और कुछ बातें दिल से निकलने वाली हैं। जी हाँ, बिंदास पोल शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। समय हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 4:02। मैं आपके साथ आपकी खुशी हाजिर हूँ। दोस्तों, बाहर बारिश की बूंदे, हवाओं में ठंडक और मौसम इतना सुहाना कि बस एक कप गर्मा गर्म चाय खिड़की के पास बैठकर और कोई अपना साथ हो तो क्या ही कहने। लेकिन हाँ, बारिश जितनी खूबसूरत होती है ना, उतनी ही जरूरी है कि उसकी कद्र और सावधानी भी, क्योंकि ये हल्की बारिश चेहरे पर मुस्कान लाती है, लेकिन लगातार तेज बारिश रास्तों में परेशानी भी बढ़ा सकती है। और आज का मौसम कह रहा है भीगिए, जरा मुस्कुराइए जरा, लेकिन हाँ संभल कर, ओके। तो दोस्तों, आप क्या कर रहे हैं इस बारिश में? यहाँ गर्मा गर्म चाय बन रही है घर में। ओहो हो, हमें पकौड़ों की भी खुशबू आ रही है। अरे वाह, क्या बात है, इवनिंग का टाइम है, चाय पकौड़े ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। चलिए, आप चाय की चुस्किया लीजिए और मैं सुनवाती हूँ आपको एक बेहतरीन ट्रैक ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है बिंदास पोल, करेंगे बहुत सारी बातें आपके साथ।

बरसात की धुन तो आप सुन ही रहे हैं दोस्तों। हेलो हाय गुड इवनिंग, दिस इज मी आरजी खुशी, आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6। और बारिश में सफर कर रहे मेरे प्यारे श्रोताओं के नाम एक ब्यूटीफुल मैसेज। बाहर का मौसम बड़ा सुहाना और रोमांटिक है, लेकिन अगर आप इस वक्त कार ड्राइव कर रहे हैं तो इस खूबसूरत मौसम के साथ थोड़ी सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। बारिश में सड़क पर स्लिपरी रोड हो सकती है, इसलिए स्पीड थोड़ी कम रखें, आगे चल रही गाड़ी से सेफ डिस्टेंस बनाकर रखें और अचानक ब्रेक लगाने से बचें। गाड़ी की वाइपर और हेडलाइट्स ऑन रखें, और अगर सड़क पर ज्यादा पानी भरा है तो बिना सोचे समझे गाड़ी आगे ना बढ़ाएं। और हाँ, फोन पर आने वाले मैसेज और कॉल थोड़ी देर वेट कर सकते हैं, लेकिन आपकी लाइफ किसी मैसेज से ज्यादा कीमती नहीं है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, बारिश का म्यूजिक सुनिए, मौसम का मजा लीजिए और सेफली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचिए, क्योंकि सफर तभी खूबसूरत है जब मंजिल तक हम सुरक्षित पहुंचे। आप जहां भी हैं खुश रहें, सेफ रहें और बारिश की हर बूंद को मुस्कुराकर फील कीजिए। आप सुन रहे हैं अपनी आरजी खुशी और ये है आपकी शाम, आपकी बातें और आपकी अपनी आवाज, ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है बिंदास बोल, जहां पर बिंदास होकर बातें हम करते हैं। आप भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उसके लिए हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896।

और खूबसूरत कुछ ट्रैक मैंने चुने हैं आज की शाम आप सभी के लिए, तो एंजॉय कीजिएगा। ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6।

हे हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। देखिए मैं इसलिए बोल रही हूँ, जब जागो तभी सवेरा, और वक्त हुआ है 4:22। अभी आपने सुना अमेजिंग ट्रैक, शो का नाम है बिंदास पॉल, और वक्त हुआ है 4:22।

और दोस्तों आज तारीख है 6 सितंबर की। अब बात करते हैं उस फिल्म मेकर की जिनके निर्देशन में आई एक फिल्म ने बॉलीवुड में खूब सुर्खियां बटोरी। जी हां, हम बात कर रहे हैं अभिनव कश्यप जी की, जो 6 सितंबर को अपना जन्मदिन मनाते हैं। 1974 में जन्मे अभिनव कश्यप एक अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के रूप में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। एंड उन्होंने सबसे ज्यादा पहचान मिली है साल 2010 में आई फिल्म दबंग से। इस फिल्म का निर्देशन उन्होंने किया और इसकी कहानी को सह लिखने में भी उनकी भूमिका रही। फिल्म में सलमान खान का चुलबुल पांडे वाला अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आया और दबंग ने बॉक्स ऑफिस पर खूब शानदार सफलता हासिल की। एक फिल्म मेकर के तौर पर अभिनव कश्यप की पहचान उनके अलग अंदाज और मनोरंजन से भरपूर कहानी कहने की शैली के लिए बनी। बिंदास बोल शो में हमारी तरफ से पूरी एफएम की टीम की ओर से अभिनव कश्यप जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

और दोस्तों कुछ खूबसूरत गाने मैंने आज की शाम यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं। एवरीवन, आप इस समय क्या कर रहे हैं राइट नाउ? मुझे जहाँ तक लगता है कि कुछ श्रोता तो हमारे अंधवी कार में हैं, जो इस वक्त राइट नाउ कहीं ना कहीं नहीं जा रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं कि चलिए आज बाहर क्यों ना चाय पकौड़े हो जाए। संडे की शाम है, दोस्तों के साथ होते हैं, कैसे मिस कर सकते हैं शाम को। हाँ, और कुछ हमारे जो लिस्टर हैं वो अभी घर पर हैं आराम से फैमिली के साथ, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और एफएम मुरादाबाद सुन रहे हैं। तो मैंने भी कुछ गाने चुने हैं आपके लिए, आपकी शाम को और खूबसूरत बनाएंगे हम। बस आप जुड़े रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, रेडियो बजाते रहिए, गन गनाते रहिए। एंड एक गाना जो बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद है, तो मैंने सोचा जब मुझे पसंद है तो मेरे श्रोताओं को भी पसंद आएगा, फ्रॉम द मूवी मुझसे शादी करोगी। और ये गाना ऐसा है कि इस पर ना हर कोई परफॉर्म करता है, कोई ऐसा नहीं है जिसने परफॉर्म ना किया हो। तो चलिए सुनवा देते हैं आपको भी।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: मुरादाबाद तैयार हो जाइए हंसी के धमाके के लिए।
4: जैसे ही पापा गए मैंने प्रतिज्ञा ले ली, छोटे बच्चे बहुत फुद्दू होते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मैंने ऐलान किया पूरे घर में, मैं कहा सुनो ध्यान से सारे, ये जो आदमी अभी गया घर से बाहर, इसकी कमाई का एक दाना तक नहीं खाऊंगा मैं।
2: फैशन फार्मर्स लेकर आ रहे हैं इंदिर सहानी कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 12 सितंबर रात 8 बजे ड्राइव इन 24 में रेडियो पार्टनर एफएम मुरादाबाद 89.6। तो बनिए इस अनफॉरगेटेबल नाइट का हिस्सा। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896। मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
5: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

गुड इवनिंग मुरादाबाद, वेलकम है आपका एफ मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और दोस्तों, संडे की शाम ना अपने आप में बहुत खूबसूरत होती है। ये वो शाम होती है जब हम अपने अपनों के साथ होते हैं, क्योंकि एवरी डे तो हम किसी ना किसी काम में उलझे रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, चाहे ऑफिस का काम हो या फिर यू नो बिजनेस हो, सारी चीजों को हमें संभालना होता है, राइट? लेकिन संडे एक ऐसा होता है जब हम अपनी फैमिली के साथ होते हैं, फुल टाइम उनको देते हैं। और जब हम अपनों के साथ होते हैं ना, तो वक्त का बिल्कुल भी नहीं पता चलता है कैसे गुजर जाता है। ऐसा लगता है कि बस अभी तो सुबह हुई है, और कब सुबह से शाम हो जाती है बिल्कुल नहीं पता चलता है, है ना? यही तो होता है अपनों का प्यार, जहाँ वक्त नहीं देखा जाता। और मैं आपके साथ आपकी खुशी।

यहाँ पर लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ शानदार गाने एंड इन्फॉर्मेशन भी। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है अरुण जी का, गुड इवनिंग हमें पहुंचाते हैं, वेरी गुड इवनिंग सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर अभी राइट नाउ आया है प्रतीक्षा का, एंड ये हमें मैसेज पहुंचाती है न्यू मुरादाबाद से, हाय गुड इवनिंग मैम, वेरी गुड इवनिंग डियर। कहती हैं कि बाहर का मौसम बहुत ही औसम है मैम, और मैंने अदरक वाली चाय बनाई है गर्मा गर्म, आप भी आ जाइएगा। थैंक यू, आप लुत्फ उठाइए, हम यहाँ पर प्यारे प्यारे गाने आपकी शाम को और खूबसूरत बनाते हैं। बाकी आप भी कुछ कहना चाहते हैं मुझे एंड कोई मैसेज देना चाहते हैं तो फटाफट से मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है जिस पर आप मैसेज कर सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, वो आपकी च्वाइस है। तो ठीक है, आप अपने मैसेज पहुंचा दीजिएगा, मैं आप तक पहुंचाती हूँ एक पंजाबी गाना, बड़ा ही सोना सा है।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
3: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
6: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
7: Hey, you're tuned into FM Muradaba 89.6 FM.

इवनिंग, आपका वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और दोस्तों, अभी समय हुआ है 4:53। और हमारे पास यहाँ पर कुछ मैसेज भी आए हैं। त्रिशा का मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है और ये मैसेज हमें पहुंचाती है मुरादाबाद से। हाय, गुड इवनिंग मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन। कहती है बाहर का मौसम बहुत ही खूबसूरत है और अभी हम इस वक्त फैमिली के साथ हैं। और आज का दिन कैसे कंप्लीट हो गया मैम, आपने बिल्कुल सही कहा था कि जब हम अपनों के साथ होते हैं तो वक्त का पता नहीं चलता है। और मौसम भी बहुत ही औसम है और इस मौसम में हम खूबसूरत गाने भी सुन रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं। थैंक यू त्रिशा, अपना ब्यूटीफुल मैसेज पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर नेहा का आया है और नेहा कहती है, गुड इवनिंग मैम, इस ब्यूटीफुल शाम में आपने चार चांद लगा दिए हैं खूबसूरत गानों के साथ। थैंक यू इतना प्यार देने के लिए फिर मुरादाबाद को और सभी प्रेजेंटर्स को भी। और अब वक्त हो चला है आपसे गुड बाय कहने का, लेकिन जाने से पहले बस इतनी ब्यूटीफुल बात कहना आपसे कहना चाहूंगी कि जिंदगी की हर शाम सिर्फ दिन का डीएन नहीं होती, कुछ शाम हमें ये याद दिलाने आती है कि टुमारो इज ए न्यू बिगनिंग। तो आज की इस खूबसूरत शाम को एक प्यारी से स्माइल के साथ अपने दिल में रखिए, जो बीत गया उसे लेट इट गो कर दीजिए और जो आने वाला है उसके लिए खूब जरूर रखिए। मैं आपकी अपनी आरजी खुशी अब आपसे लेती हूँ जाने की परमिशन, लेकिन याद रखिए, खुश रहना कोई रीजन नहीं मांगता है, बस दिल में एक छोटा सा ना, दिल से एक छोटा सा लाइक खुश रहना कोई रीजन नहीं मांगता है, बस दिल से एक डेडिकेशन मांगता है। अपना ख्याल रखिए, कीप स्माइलिंग और अपने दिल में थोड़ी सी पॉजिटिविटी हमेशा बचा कर रखिए, ठीक है? फिर मिलेंगे नई बातों के साथ, नई स्टोरी के साथ, कुछ नए गाने के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा अनुमति एंड मुलाकात करेंगे आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, कीप स्माइलिंग। और एक शानदार ट्रैक आपके लिए जो बहुत ही प्यारा सा गाना है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा। एंड बाकी अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, ठीक है?

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
6: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM।

क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: राधे राधे ब्रजवासियों, जहाँ कड़कड़ में कान्हा की लीलाएं हैं, जहाँ यमुना की लहरों में भक्ति की मिठास है, जहाँ गलियों में आज भी राधे राधे की गूंज सुनाई देती है, वही है हमारी प्यारी मथुरा नगरी।
2: बिल्कुल, मथुरा सिर्फ एक शहर नहीं, आस्था, संस्कृति और विरासत की ऐसी धरती है जहाँ इतिहास और भविष्य एक साथ कदम बढ़ाते हैं। और आज इसी धरती से हम सुनेंगे विकास की वो कहानी जो सड़कों, रोजगार, गरीबी उन्मूलन, महिला बाल कल्याण और जन सुविधाओं के जरिए लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रही है।
3: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश और आज का खास एपिसोड है मथुरा में गूंजता विकास।
1: तो आइए बात करते हैं उस विकास की जो सिर्फ सरकारी फाइलों में नहीं बल्कि आम लोगों के अनुभवों में दिखाई देता है।
0: मथुरा में विकास का दायरा लगातार व्यापक हो रहा है। सड़क और आधारभूत ढांचे से लेकर पर्यटन जन सुविधाओं तक कई स्तरों पर काम आगे बढ़ रहे हैं।
1: मथुरा और ब्रज क्षेत्र में सड़क संपर्क को मजबूत करने, मार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण से लेकर ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग से जुड़े कार्यों तक विकास की तस्वीर लगातार बदल रही है।
0: और मथुरा वृंदावन जैसे धार्मिक और पर्यटन महत्व वाले क्षेत्र में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है स्थानीय लोगों का साथ साथ देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं।
1: यानी सोच सिर्फ आज की जरूरत पूरी करने की नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए मजबूत आधार तैयार करने की है।
0: अब बात उस युवा शक्ति की जो नौकरी खोजने के साथ साथ रोजगार देने वाला बनने का सपना देखती है।
1: उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान युवाओं में उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
0: यानी सरकार की सोच साफ है, युवा सिर्फ अवसर का इंतजार ना करे बल्कि अवसर पैदा करने की क्षमता भी हासिल करे।
1: और यही तो है दूरदर्शी सोच, युवा के हाथ में हुनर, हुनर से उद्यम और उद्यम से रोजगार। आइए सुनते हैं अब मुकेश की कहानी जो एक लाभार्थी है।
2: मेरा नाम मुकेश, मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के बाद मैं अपना एक रोजगार करना चाहता था। इसी बीच मुझे एक योजना के बारे में पता चला, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, जिसके अंतर्गत मुझे 5 लाख तक का 100% ब्याज मुक्त और गारंटी रहित ऋण मिला, जिसकी मदद से मैंने अपना रोजगार शुरू किया और आज मेरा रोजगार बहुत ही अच्छे से चल रहा है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं और ऐसी योजनाओं से मैं बहुत ही लाभान्वित हुआ।
0: मुकेश की कहानी इस बात की मिसाल है कि विकास की असली पहचान तब होती है जब योजनाओं का लाभ सीधे परिवार तक पहुंचे।
1: और जब किसी योजना की मदद से किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है तो उसका असर सिर्फ एक व्यक्ति तक नहीं रहता बल्कि पूरे परिवार और समाज तक पहुंचता है।
0: विकास का सबसे बड़ा अर्थ है समाज के सबसे जरूरतमंद व्यक्ति तक अवसर और सुविधाएं पहुंचाना।
1: और इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश में जीरो पॉवर्टी अभियान के माध्यम से अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान कर उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है।
0: यानी केवल आर्थिक मदद नहीं बल्कि परिवार को ऐसी सुविधाएं और अवसर से जोड़ना जिससे वह आगे बढ़ सकें।
1: यही दूरदर्शिता है, गरीबी को सिर्फ एक आंकड़ा मानकर नहीं बल्कि परिवार की जरूरतों को समझकर समाधान तक पहुंचने की कोशिश। आइए सुनते हैं रोशनी की कहानी जो एक लाभार्थी है।
3: मेरा नाम रोशनी है, मैं मथुरा के कोसी में रहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ राज्य सरकार को कि राज्य सरकार ने हमारी आर्थिक सहायता की। मैं और मेरा परिवार बहुत निर्धन परिवार है जिसके अंतर्गत हमें भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता था, लेकिन राज्य सरकार की जीरो पॉवर्टी योजना के माध्यम से मैं जिला विकास विभाग के संपर्क में आई और आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर हमें आर्थिक सहायता मिली जिससे हम अपना छोटा सा रोजगार शुरू कर पाए। धन्यवाद।
0: रोशनी की कहानी भी बताती है कि योजनाओं की सफलता का असली पैमाना है लाभार्थी के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव।
1: जब सरकारी प्रयास जमीन पर किसी परिवार के लिए नई उम्मीद बनते हैं तभी विकास की तस्वीर और साफ हो जाती है। आइए सुनते हैं अब हम मथुरा के जिला विकास अधिकारी गरिमा खरे को।
4: ग्रामीण क्षेत्रों में जो निर्धनतम व्यक्ति हैं उनको एक उस पर विकास की धारा में लेकर के आने का, तो उसके दृष्टि से जो विकसित भारत विजन 47 है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जीरो पॉवर्टी अभियान चलाया गया है। ये अभियान इस तरह से है कि इस पे प्रत्येक गांव में निर्धनतम जो परिवारों का चयन किया गया और वो चयन भी एक टीम, ऐसी टीम के द्वारा किया गया है जिसमें उन गांवों में जो लोग जैसे आंगनवाड़ी सहायिकाएं हैं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, इस तरह के लोगों को जोड़ा गया था जो वहां पर बराबर गांव में रहती हैं और वो बेहतर तरीके से जानती हैं कि कौन सा परिवार गरीब है, तो उनका चयन किया गया है। और इस तरह से यहाँ पर 9686 परिवारों का यहाँ पर जो है वो चिन्हांकन हुआ है। उसके बाद विभिन्न विभागों द्वारा अपनी अपनी स्कीम के जो क्राइटेरिया है उसके आधार पर उन परिवारों का सर्वेक्षण किया गया और उस हर परिवार में किसी भी पैरामीटर से, कहीं खाद्यान्न से अगर वो आच्छादित नहीं है, कहीं बच्चे स्कूली शिक्षा से अभाव में है या कहीं आवास में नहीं है, तो हर गवर्नमेंट विभाग की स्कीम ने अपने पैरामीटर्स के आधार पर उनके चयन करते हुए और फिर उनको लाभान्वित कराए जाने का कार्य चल रहा है। इसमें समाज कल्याण के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन के जो पात्र लाभार्थी उन परिवारों से हैं उनको उसमें लिया जा रहा है, विधवा पेंशन के अगर लाभार्थी हैं तो छूटे

0: क्रियान्वयन, पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाना और विकास कार्यों की लगातार निगरानी, यही वो कड़ी है जो सरकार की नीतियों को आम जनता के जीवन से जोड़ती है।
1: आज जब विकास की बात होती है
0: तो सिर्फ एक सड़क या एक भवन की बात नहीं होती।
1: बिल्कुल, आज की सोच है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रोजगार, निवेश के साथ उद्यमिता, विकास के साथ सामाजिक सुरक्षा और विरासत के साथ पर्यटन।
0: यही है फोरसाइट दूर की सोच।
1: आज जो सड़क बन रही है वह कल को कल की कनेक्टिविटी है, और आज जो युवा उद्यमी बन रहा है वह कल के रोजगार का स्रोत है। आज जिस बच्चे के पोषण पर ध्यान दिया जा रहा है वही कल प्रदेश की ताकत बनेगा।
0: और मथुरा जैसी सांस्कृतिक नगरी में तो यह सोच और भी खास हो जाती है, विरासत भी बचे और विकास भी बढ़े।
1: उत्तर प्रदेश के विकास की इस यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार की प्राथमिकताओं में इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, रोजगार, सामाजिक कल्याण और जन सुविधाओं को साथ लेकर चलने की सोच दिखाई देती है।
0: और तारीफ उस सोच की भी जिसमें विकास को सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित रखने के बजाय गांव, गरीब, युवा, महिला और बच्चे, हर वर्ग तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
1: एक तरफ एक्सप्रेसवे, कनेक्टिविटी और निवेश जैसी बड़ी परियोजनाएं,
0: तो दूसरी तरफ जीरो पॉवर्टी उद्यमिता, कौशल विकास और आंगनबाड़ी जैसी जमीनी पहल,
1: यानी बड़े विजन और जमीनी जरूरत दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश।
0: और यही उत्तर प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच की खासियत है, आज की जरूरत के साथ आने वाले वर्षों की जरूरतों को भी ध्यान में रखना। तो आज मथुरा से हमने सुनी विकास की कई आवाजें, लाभार्थियों की, प्रशासन की और उन युवाओं की जो अपने सपनों को उद्यम में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप सुन रहे थे विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश।
1: आज के एपिसोड का नाम था
0: मथुरा में
1: गूंजता विकास।
0: मैं हूँ आपका आरजे जय
1: और मैं हूँ आपकी आरजे तेजस्वी भारद्वाज।
0: दोनों मिलते हैं अगले एपिसोड में विकास की एक और कहानी के साथ।
1: जय हिंद।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।

0: मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।
4: मुरादाबाद 8 सितंबर को जमेगी हंसी की महफिल।
5: रात में 10 बजे के बाद मैं निकलता हूँ, मेरा खुद लूटने का मन करने लगता है। एक वाइब है, एक माहौल है यहाँ की हवा में, मन कर जाता है।
4: तैयार हो जाइए, क्योंकि आ रहा है वो इंसान जो कहता है कल की चिंता नहीं करता। रवि गुप्ता कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 8 सितंबर पंचायत भवन मुरादाबाद में शाम 4 बजे और रात 8 बजे। तो मुरादाबाद, हंसने के लिए हो जाओ तैयार। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: मुरादाबाद, तैयार हो जाइए हंसी के धमाके के लिए।
3: जैसे ही पापा गए मैंने प्रतिज्ञा ले ली, छोटे बच्चे बहुत फुद्दू होते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मैंने ऐलान किया पूरे घर में, मैं कहा सुनो ध्यान से सारे, ये जो आदमी अभी गया घर से बाहर, इसकी कमाई का एक दाना तक नहीं खाऊंगा मैं।
2: फैशन फार्मर्स लेकर आ रहे हैं इंदिर साहनी कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 12 सितंबर रात 8 बजे ड्राइव इन 24 में रेडियो पार्टनर एफएम मुरादाबाद 89.6। तो बनिए इस अनफॉरगेटेबल नाइट का हिस्सा। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: मुरादाबाद 8 सितंबर को जमेगी हंसी की महफिल।
1: रात में 10 बजे के बाद मैं निकलता हूँ, मेरा खुद लूटने का मन करने लगता है। एक वाइब है, एक माहौल है यहाँ की हवा में, मन कर जाता है।
0: तैयार हो जाइए क्योंकि आ रहा है वो इंसान जो कहता है कल की चिंता नहीं करता। रवि गुप्ता कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 8 सितंबर पंचायत भवन मुरादाबाद में शाम 4 बजे और रात 8 बजे। तो मुरादाबाद हंसने के लिए हो जाओ तैयार। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।
2: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम। पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841।

0: मुरादाबाद तैयार हो जाइए हंसी के धमाके के लिए।
1: जैसे ही पापा गए मैंने प्रतिज्ञा ले ली। छोटे बच्चे बहुत फुद्दू होते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मैंने ऐलान किया पूरे घर में, मैं कहा सुनो ध्यान से सारे, ये जो आदमी अभी गया घर से बाहर, इसकी कमाई का एक दाना तक नहीं खाऊंगा मैं।
0: फैशन फार्मर्स लेकर आ रहे हैं इंदिर साहनी कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 12 सितंबर रात 8 बजे ड्राइव इन 24 में रेडियो पार्टनर एफएम मुरादाबाद 89.6। तो बनिए इस अनफॉरगेटेबल नाइट का हिस्सा। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
1: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। आज का हमारा शो ये बेहद खास होने वाला है, यानी कि लीगल टॉक्स, जहां हम बात करने वाले हैं मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में, यानी सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी कानून। चाहे आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो या पैदल सड़क पार करते हो, ट्रैफिक नियमों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्या बिना हेट बाइक चलाने पर सिर्फ चलान होता है या और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है? अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? ओवर स्पीड, शराब पीकर गाड़ी चलाना और मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर कानून क्या कहता है? इन सब सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी। तो सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे रेडियो में। आप बताइए कि रेडियो में आकर आपको कैसा लगता है?
1: देखिए, मैं हर वीकेंड वेट करता हूँ कि कब आपका शो आए और मेरे को आप इनवाइट करो यहाँ पे, और मैं जो हूँ अपने प्यारे जो लिसनर्स है कम्युनिटी रेडियो के, हमारे लिसनर्स है, उनसे मैं बात कर पाऊँ, उनको अवेयर कर पाऊँ, उनकी परेशानियों को दूर कर पाऊँ।
0: श्रोता तो हमारा इंतजार ही करते रहते हैं,
1: हम वेट करते हैं उनका कि हमारी उनसे कब मुलाकात होगी। और जो है, मैं भी बड़ा बेताब रहता हूँ कि मैं अपने लिसनर्स के जो उनके डाउट्स हैं या उनकी कोई लीगल अवेयरनेस है या उनको कोई भी लीगल हेल्प चाहिए तो उसको मैं गाइड कर पाऊँ उनको।
0: तो श्रोताओं, हम बातें करते रहेंगे, बस आपने कहीं नहीं जाना है, रेडियो की सुई बिल्कुल नहीं घुमानी है, आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहने, क्योंकि शो होने वाला है बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खास, जिसमें आपको तरह तरह की जानकारियां मिलती रहती है। और मुझे लगता है कि हर चीज के बारे में जानकारियां हमें लेना हमारे लिए ही अच्छा है। कभी कभी किसी चीज के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में हमें नहीं पता होता है, जिसके खिलाफ हम नहीं बोल पाते क्योंकि हम डरते हैं, और जब आपको पूरी जानकारी होगी तो आप आसानी से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो सर, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट क्या है?
1: देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट भारत का एक वह कानून है जो सड़क पर चलने वाले सभी मोटर वाहनों, ड्राइवर, वाहन मालिक, लाइसेंस पंजीकरण, बीमा, सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियम और दुर्घटना से जुड़े जो भी अधिकार हैं, जो भी दायित्व को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना होता है और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित कराना होता है।
0: क्या हर वाहन चालक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है?
1: हाँ, बिना वह ड्राइविंग लाइसेंस के सार्वजनिक सड़क पर वाहन चलाना कानून का उल्लंघन है, और वाहन आपको डीएल तभी मिलता है जब आपको वाहन चलाना आता हो प्रॉपर, ठीक है, और बिना डीएल के अगर आप वाहन चलाते हैं तो गैर कानूनी है। तो लिहाजा जो है, अगर इसके लिए जो प्रावधान है, जुर्माना भी हो सकता है और कार्रवाई के तौर पे आपको सजा भी हो सकती है। तो आप कभी भी अगर कोई वाहन चलाते हैं तो वाहन के लिए आपको डीएल बनाना अनिवार्य है। आप पहले प्रॉपर परिवहन आरटीओ विभाग जाएं, वहाँ पे प्रॉपर आप अपने डीएल के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करें, डीएल बनवाएं, उसके बाद ही आप सड़क पे वाहन लेके आए। अधिकतर मैंने देखा आज की डेट में बच्चे स्कूल जाते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको स्कूटी दे देते हैं ऐसी।
0: हाँ, वही,
1: वो गलत है, वो इलीगल है। अगर आप बच्चा स्कूटी चलाते हुए किसी को हिट कर देता है या तो उसको भी चोट लग सकती है और सामने वालों को भी चोट लग सकती है, तो ये अपराध है।
0: लाइसेंस बनवाने के लिए सर एज लिमिट क्या होती है?
1: 18 प्लस होनी चाहिए।
0: अच्छा, 18 प्लस होना चाहिए,
1: बालिग होना चाहिए एटलीस्ट।
0: ओके, लेकिन तो आजकल अगर जेंजी की बात करूं तो वो 16-17 की एज में सड़कों पर ऐसे
1: इलीगल है, वो पेरेंट्स दे देते हैं, गलत है वो, तो आप ऐसे जो है बिना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के आप व्हीकल नहीं चला सकते।
0: क्या वाहन चलाते समय कौन कौन से दस्तावेज साथ होना चाहिए?
1: देखिए, सबसे पहले तो आपका डीएल होना चाहिए जो आपको इशू किया गया है, वो गवर्नमेंट आईडी होती है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप रोड पे अपना व्हीकल लेके नहीं जा सकते। फिर जो आप वाहन चला रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो आपके पास में होना चाहिए, ठीक है, उसको हम आरसी बोलते हैं। प्रॉपर जिस गाड़ी को आप चला रहे हैं उसका इंश्योरेंस होना चाहिए,
0: चाहे वो स्कूटी हो, बाइक हो, गाड़ी हो।
1: हाँ, उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, वैलिड इंश्योरेंस होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको पॉल्यूशन का पेपर होना चाहिए,
0: पॉल्यूशन,
1: हाँ, पॉल्यूशन, पीयूसी, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल बोलते हैं उसको, पॉल्यूशन, उसका डॉक्यूमेंट पॉल्यूशन चेक होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आप व्हीकल चला रहे हो, ठीक है। और आवश्यकता होने पे अगर कोई परमिट की, कोई हैवी आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको किसी स्टेट का परमिट है तो परमिट भी आपके पास में होना चाहिए। इन सबकी डिजिटल कॉपी मान्य है, ठीक है, आपको जरूरी नहीं नहीं है कि आपको ओरिजिनली अपने पास में रखना है। डिजिटल कॉपी भी मान्य हो सकती है यदि कानून के अनुसार स्वीकार है वो चीजें, तो आप उसकी डिजिटल कॉपी भी आप रख सकते हैं।
0: तो सर जैसे आपने बोला कि कॉपी होनी चाहिए तुम्हारे पास, वो चाहे स्कूटी चला रहे हो बाइक चला रहे हो, मतलब अपने साथ रखना,
1: सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए। आप उसकी सॉफ्ट कॉपी भी अपने मोबाइल पे रख सकते हैं, उसको आप दिखा सकते हैं।
0: अच्छा, फोन में भी है,
1: फोन में भी चल सकती है, गवर्नमेंट ने उसको वैलिड कर दिया, पहले नहीं था। तो अब आप अपनी डिजिटल कॉपी भी माने हैं, अगर कोई आप ट्रैफिक पे जा रहे हैं या आप स्कूटी से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं और वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है या चेकिंग हो रही है और वो आपसे कोई वैलिड आईडी मांगते हैं, आपका DL है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है या इंश्योरेंस है, तो आप उसको मोबाइल पे भी दिखा सकते हो। उनके पास सारा रिकॉर्ड्स होता है, आज की डेट में हर चीज ऑनलाइन है, वो प्रॉपर चेक कर लेंगे कि ये डुप्लीकेट तो नहीं है, अगर वो चीज ऑथेंटिक है सही है तो वो आपको जाने देंगे। वो
0: मान लीजिए सर कोई मेरा ही गाड़ी है, वो कोई और लेके जा रहा है तो
1: वो गलत है, कायदे में तो आपको गाड़ी नहीं देनी चाहिए अपनी। लेकिन अगर आपने गाड़ी दे भी दी है तो उस गाड़ी के पेपर उसको दे, आप पोल्यूशन का सर्टिफिकेट दे, इंश्योरेंस की कॉपी दे, और जिसको आपने गाड़ी दी है उसका DL बना होना चाहिए।
0: अच्छा, उसका भी बना होना चाहिए,
1: उसका भी DL होना चाहिए। अगर आपने DL उसका नहीं बना हुआ है, पेपर आपके पूरे हैं, DL आपका है और गाड़ी दूसरा चला रहा है जिसके पास DL
0: नहीं है,
1: तो वो भी गैर कानूनी है।
0: तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वो आजकल हर कोई भूल जाता है। क्या हेलमेट पहनना केवल चालक के लिए जरूरी है?
1: देखिए, अगर मैं अपने शहर की बात करूं तो यहाँ आप देखते हैं कि लोग जो है हेलमेट नहीं लगाना
0: नहीं
1: चाहते,
0: लगा चाहते,
1: तो हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, ठीक है। और जो है इससे आपकी सुरक्षा भी होती है, प्लस आप जो है दोपहिया वाहन चलाते वक्त जो चालक और पीछे व्यक्ति बैठा हो दोनों जो है हेलमेट पहने रहते तो सुरक्षा की दृष्टि से भी और ये एक कानून की निगाह से भी एक मैंडेटरी है, तो आगे आज आपको हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। तो कई परिस्थितियों में जो है कई बार ऐसा हो जाता कि हमने देखा कि अक्सर छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, हल्की सी टक्कर लग गई और डिसबैलेंस होकर गाड़ी गिर जाती है, तो क्या होता है सर पे बहुत ज्यादा गंभीर चोट लग जाती है उसकी वजह से, तो उसमें आपकी जान भी जा सकती है। तो कानून के हिसाब से भी हेलमेट आपको लगाना चाहिए और सुरक्षा की दृष्टि से भी हेलमेट जरूर लगाना चाहिए आपको।
0: बहुत से देखा होगा सर आपने बोलते कि अरे 2 मिनट का तो काम ही है, यही जाना है, 2 कदम पर ही जाना है।
1: 2 मिनट का काम होता है लेकिन अगर जरा कोई मिसहैपनिंग हो गई 2 मिनट के अंदर ही, तो आप क्या करेंगे?
0: करेक्ट। सो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर, सीट बेल्ट का क्या महत्व है?
1: सीट बेल्ट की भी यही मैंने प्रॉब्लम देखी है, लोग पता नहीं सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाते हैं।
0: एक तो बोल देते हैं हमने खाना खा लिया, पेट में दर्द हो जाएगा अगर उसको पहन लेंगे तो,
1: सीट बेल्ट
0: दबने लग जाएगा।
1: कानून के हिसाब से मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग भी आपको सीट बेल्ट जरूर लगानी चाहिए, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो उस पर आपकी गाड़ी का चालान कट सकता है, वो कानूनन अपराध की मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग वो जो है अपराध माना जाता है। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर सीट बेल्ट दुर्घटना के समय कोई दुर्घटना हो गई तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती तो कई ज्यादा गंभीर चोट आ जाती है, उससे क्या होता है कि जो है कई कैजुअलिटी डेथ तक हो जाती है। तो सीट बेल्ट अगर आप गाड़ी में लगा के ड्राइव कर रहे हैं और कोई मिसहैपनिंग होती है कुछ होती है तो हो सकता है साधारण चोट ही लगे, ज्यादा आपको चोट ना लगे और आपकी लाइफ बच जाए, तो सीट बेल्ट आपको कानून की दृष्टि से भी लगानी चाहिए और सुरक्षा की दृष्टि से भी लगानी चाहिए।
0: उसके साथ वाला जो बैठा होता है उसके लिए अनिवार्य है,
1: सीट बेल्ट सबके लिए अनिवार्य है तो लगानी चाहिए आपको।
0: सर कभी कभी जैसे कि मैंने ही देखा है कि वो सोचते हैं कि सामने पुलिस वाले तो है नहीं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, क्या ही हो जाएगा।
1: देखिए, आप ये सोचिए कि भाई ठीक है मेरे को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है तो आपको आदत डालनी पड़ेगी, है ना। तो आप ये सोचोगे से मुझे चलान से बचने के लिए हेलमेट पहनना है या चलान से बचने के लिए मुझे सीट बेल्ट पहननी है, तो ये गलत है, इसको आप प्रैक्टिस में लाइए।
0: ओके।
1: जैसे आप डेली प्रैक्टिस में लाते हैं ना, आप सुबह ब्रश करते हैं, नहाते हैं, आप ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ये भी प्रैक्टिस में लाइए कि मुझे जब जाना है तो पहले मुझे गाड़ी खोलनी है, फिर उसमें प्रॉपर बैठ के मुझे सीट बेल्ट लगानी है, तब मुझे आगे ड्राइव करना
0: है। आजकल तो कैमरे भी लगा दिए गए हैं ना कि सीधा पकड़े जाओ।
1: हाँ, तो जो ई चलान होते हैं वो आजकल ट्रैफिक पुलिस जो है वो ई चलान से भी अगर आपने गाड़ी में देखा कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो आपकी पिक्चर उसमें कैप्चर हो जाएगी, आपका चलान कट जाएगा उसमें,
0: यानी कि पॉकेट मनी कब उड़ जाएंगे।
1: टू व्हीलर पे भी ऐसी हो गया है कि आपने हेलमेट नहीं लगाया, आपकी गाड़ी का नंबर ट्रेस हो गया, चलान कट जाएगा आपका उसमें।
0: ओके।
1: तो आप ये मत सोचिए कि मुझे चलान बचाने के लिए चीजें करनी है, आप ये सोचिए कि मुझे सुरक्षा की दृष्टि से भी करनी है।
0: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर, शराब पीकर वाहन चलाने पर क्या परिणाम हो सकता है?
1: देखिए, शराब पीकर तो वाहन चलाना ही नहीं चाहिए, ये गंभीर अपराध है, इसके कारण कई एक्सीडेंट्स भी देखे होंगे आपने, अधिकतर सुना होगा कि भाई वो कोई कैजुअलिटी हो गई तो पता चला कि ड्रिंक कर रखी थी, उसने शराब पी रखी थी, इसके कारण भारी, अगर आप शराब पी के गाड़ी चलाते हैं तो बहुत हैवी पेनल्टी के साथ आपकी गाड़ी भी सीज हो सकती है, ठीक है, आपका व्हीकल भी सीज कर सकते हैं पुलिस वाले, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, प्लस आपको जेल भी हो सकती है, कारावास भी भेज सकते हैं वो, और प्लस आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है।
0: यदि सड़क दुर्घटना हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए?
1: देखिए, अगर सड़क दुर्घटना हो जाती है तो घायल व्यक्ति को आप कोशिश करिए कि सबसे पहले जो है, अगर कोई पास में कोई पुलिस वाला दिख रहा है आपको, तो आप उसकी उससे आप मदद मांग सकते हैं। एम्बुलेंस और पुलिस को आप सूचना भी दे सकते हैं, 112 नंबर पे आप कॉल करके पुलिस को भी बुला के सूचना दे सकते हैं। यदि संभव हो तो प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करें, कोई जैसे कोई ऑटो वाला जा रहा है उससे थोड़ी सी हेल्प मांग लीजिए, कोशिश करिए कि अगर वो बच सकता है तो उसे तत्काल हॉस्पिटल ले जाएं।
0: पर सर आजकल ये हो गया ना कि कोई किसी का हेल्प नहीं करता, उसके मन में एक ही डर होता है कि कहीं मैं ना फंस जाऊं।
1: देखिए, ऐसा होता है कि जब एक एक्सीडेंट होता है, अधिकतर भी हमने देखा, तो पहले तो था कि पुलिस थोड़ा सा पूछताछ करती थी कि भाई कब हुआ क्या हुआ, लेकिन अब जो है हमारे हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट्स की भी डायरेक्शंस आई हैं, अगर कोई घायल है या कोई दुर्घटना में घायल हुआ है तो ये तत्काल उसको मदद देनी है, पुलिस भी इसमें सहयोग करती है, और आपसे कुछ नहीं उसमें पूछा जाता है, आपसे कुछ कोई भी उसमें पूछताछ नहीं होती है, कुछ नहीं होती है, आप अगर उसकी मदद करते हैं तो बल्कि आपको अप्रिशिएट किया जाता है। आप सोचिए, आपने एक व्यक्ति के प्राण बचाए हैं, तो अब जो है बहुत लोगों में चेंजेस आए हैं, लोग मदद भी करते हैं एक दूसरे की, तो आप ये सोचिए कि अगर किसी की कोई दुर्घटना हुई है, किसी को कोई इंजरी हुई है, तत्काल उसको नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो शायद वो उसके घर वाले आपको दुआएं देंगे अगर उसकी जान बच जाएगी, और आप किसी व्यक्ति के प्राण बचा पाएंगे। क्योंकि अगर एक्सीडेंट के केसेस में अगर आप वक्त पे किसी को फर्स्ट एड दिला देते हैं, ट्रीटमेंट दिला देते हैं, तो उसकी लाइफ बच सकती है।
0: थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है?
1: देखिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बोलते हैं यदि आपके वाहन से किसी अन्य व्यक्ति या उसके वाहन या उसकी संपत्ति को नुकसान हो गया, तो थर्ड पार्टी जो होती है इंश्योरेंस, उस नुकसान की भरपाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो आपको नहीं देना पड़ता, जो आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया है वो इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम देती है, ये होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस।
0: यदि वाहन का बीमा नहीं हो तो क्या होगा?
1: देखिए, बिना वाहन के वैध बीमे के आप वाहन आपका सीज भी हो सकता है, ठीक है, और ये कानून का उल्लंघन है, इसके लिए जो भी दंडात्मक कार्रवाई है और फाइन है, पेनल्टी, वो भी पड़ सकती है। तो लिहाजा जो है आप वाहन का इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए आपको, और रिन्यूअल है तो रिन्यूअल भी जरूर कराएं।
0: तो श्रोताओं, यहाँ पर हम लेंगे म्यूजिकल ब्रेक, और आप सभी को मैं हमेशा बोलती हूँ कि हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है, और मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: क्या बात है श्रोताओं, आपने बहुत ही शानदार गाना एंजॉय किया है और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे रीना, जहाँ हम बात कर रहे हैं काम की। आज भी कई लोग बिना हेलमेट बाइक चलाते हुए खुद को बहुत बड़ा हीरो समझते हैं, लेकिन जरा सोचिए अगर एक छोटी सी दुर्घटना हो जाए तो सबसे ज्यादा दर्द किसको होगा? आपके परिवार को। असली हीरो वो नहीं जो बिना हेलमेट तेज रफ्तार से बाइक चलाए, असली हीरो वो होता है जो हेलमेट पहनकर ट्रैफिक नियमों का पालन करे, सुरक्षित अपने घर पहुंचे, क्योंकि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा होता है। याद रखिए, हेलमेट और सीट बेल्ट सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बचाने के लिए है। सड़क पर आपकी एक गलती किसी और की जिंदगी भी खतरे में डाल सकती है। तो जब भी आप घर से बाहर निकले, चाहे दो कदम के लिए निकले, चाहे आपको लॉन्ग सफर पर जाना है, आपने हेलमेट और सीट बेल्ट तो जरूर लगानी है, क्योंकि ये नियम है और इसका पालन करना हमारे लिए अनिवार्य है, क्योंकि इसमें हमारी ही भलाई है, किसी और की नहीं है श्रोताओं। तो चलिए अब सर से बात करते हैं, जो ये सिलसिला है इसको जारी रखते हैं। तो सर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है जो बहुत मुझे लगता है कि इसके ऊपर बात ना बहुत जरूरी है। आजकल के जो जेंजी है या फिर किसी और को भी सोच लीजिए, उनको रहती भैया हमें ना लेट हो रहा है, हमें जल्दी पहुंचना है, ओवर स्पीड क्यों गंभीर मानी जाती है?
1: देखिए, ये बहुत अच्छा आपने एक क्वेश्चन पूछा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ। अधिकतर हम भी अगर रोड पे जाते हैं तो मैंने बहुत से लड़के ऐसे देखा है, एक तो वो ट्रिपलिंग करके गाड़ी चलाते हैं, ऐसे उल्टा सीधा
0: वेव में चलाते हैं,
1: और फिर आप सिटी के अंदर देखिए वो इतनी हाई स्पीड में ओवर स्पीड में वो गाड़ी चलाते हैं कि सामने अगर कोई आ जाए तो उसको भी चोट लगेगी और इनको भी चोट लगेगी,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और उसमें किसी की जान भी जा सकती है। तो अधिक गति से वाहन चलाने पर अगर आप चलाओगे तो आपका बैलेंस नहीं बनेगा, सबसे बड़ी चीज अगर एकदम आपको ब्रेक मार लें तो, और आप ब्रेक मारोगे भी तो गाड़ी स्किप हो जाएगी, आपकी फिसल सकती है। तो ये भी एक कानून, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ये कानूनन अपराध है, उल्लंघन कानून का, तो इस पे भी फाइन हो सकता है और आपकी गाड़ी और आपका ड्राइविंग लाइसेंस दोनों कैंसिल भी हो सकते हैं। तो ओवर स्पीड आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप कहीं किसी गंतव्य तक जा रहे हैं तो आप ये सोचिए मुझे आराम से चलाना है, ड्राइविंग है ना, जिगजैग गाड़ी नहीं चलानी है आपको, और जो है आप अपनी भी केयर करिए, सामने वाले की भी केयर करिए।
0: सर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बाइक भी चला रहे होते ना तो एक बार हैंड फ्री होकर चलाते
1: हैं। हाँ, तो वो सब चीजें गलत हैं। वो एक स्टंट जो ये आजकल देखते हैं, जो बच्चे स्टंट वगैरह दिखाते हैं, तो ये गलत है। और इस पे हमारी, मैं तो एक अपील करूंगा हमारी मुरादाबाद पुलिस से भी कि तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं वो, अगर कहीं भी देखते हैं जो करते भी हैं वो लोग
0: स्टंट मारते
1: हैं। हाँ, ये गलत है। इससे कई सड़क पे बुजुर्ग बच्चे जाते हैं, उनको भी कई बार चोटिल होते हुए देखा गया है। तो निश्चित तौर पर ये गलत है और ये कानून का उल्लंघन है।
0: सो अगला भी क्वेश्चन सर बहुत इम्पोर्टेंट है, मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन चलाना कितना खतरनाक है?
1: देखिए, मोबाइल फोन पर अगर आप बात कर रहे हैं या कोई व्हाट्सएप पे कोई संदेश पढ़ रहे हैं तो आप सोचिए आप मोबाइल पे देख रहे हैं और एक तरफ आप व्हीकल भी चला रहे हैं, तो सामने से कोई आ रहा है तो आप कैसे उससे आप अपने आप को बचा पाओगे, कैसे डिफेंस कर पाओगे? तो मोबाइल पे चलाने देखते हुए करते हुए कभी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, है ना, उससे एक्सीडेंट का खतरा पैदा हो, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर इस पे भी जुर्माना है।
0: अच्छा, बहुत से सर ये कहते हैं कि अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आराम से चला लेंगे, मैं फोन भी दोनों कर लेता हूँ।
1: इस पे भी आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है, अगर आप मोबाइल बात करते हुए गाड़ी चला रहे हैं तो इस पे भी आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है, आपकी गाड़ी का जो परमिट कैंसिल भी हो सकता है, आपके ऊपर जुर्माना भी पड़ सकता है। तो उस समय जो भी नियमानुसार जो कार्रवाई होती है पुलिस करती है उसमें।
0: यदि ट्रैफिक पुलिस चालान काटे तो नागरिक क्या करे?
1: देखिए, ट्रैफिक पुलिस अगर चालान काट रही है तो आप पहले तो आपको शांत रहना है, कोई आपको एग्रेशन नहीं दिखाना है, ठीक है, कोई सोर्स लगाने की आपको जरूरत नहीं है, प्रॉपर एक जेन्युइन उनसे आप रीजन पूछिए कि आप मेरा चालान क्यों काट रहे हैं, क्या रीजन है। अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स आप उसको दिखाइए। अगर आप अपनी जगह ठीक है, आप प्रॉपर गाड़ी सही से चला रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, वो जो कागज मांग रहे हैं कागज अवेलेबल कराइए, और अगर आपको लगता है आपसे गलती हुई है तो आप कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए जो भी आपके ऊपर फाइन लगता है उसको आपको पे करना चाहिए।
0: ओके, मोटर दुर्घटना दावा अधिकार क्या है?
1: देखिए, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, इसे MACT बोलते हैं, MACT, ये एक न्यायिक मंच है जहां सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति या जो भी मृतक होते हैं, जो भी जिसकी डेथ हो जाती है, उसके परिजन जो होते हैं उनको मुआवजा मिल सकता है, उसमें आप क्लेम डालिए तो आपको क्लेम मिलता है उसमें।
0: सो हम

0: अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। दुर्घटना में मुआवजा किन लोगों को मिल सकता है?
1: देखिए, घायल व्यक्ति यदि कोई या कोई स्थायी विकलांगता से पीड़ित हो गया या व्यक्ति या दुर्घटना में मृत्यु होने पर कानूनी आश्रित जो भी होते हैं उसके जो भी उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है, परिस्थिति के अनुसार दावा कर सकते हैं, तो वो आपको कोर्ट में दावा करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्लेम मिलेगा।
0: सर अगला क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही शानदार है, क्या सीसीटीवी फुटेज और डैश कैम रिकॉर्ड साक्ष्य बन सकते?
1: हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही जरूरी है। आज की गाड़ियों में जो है जो हमने देखा डैश कैम तो सारी गाड़ियों में मोस्टली आ रहा है, इतनी एडवांस हो गई है, क्योंकि अगर आप कहीं जा रहे हो कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो डैश कैम से कई ऐसी चीजें हमें सामने वाले की गलती पकड़ में आ जाती है। अगर दो गाड़ियों की टक्कर लगती है तो दोनों बोल देंगे कि भाई मेरी गलती नहीं थी, उसमें हम गलती कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अगर आपकी गाड़ी पे डैश कैम लगा होता है तो डैश कैम क्या करता है, वो एक्चुअल जो आपकी जो जब आप ड्राइव कर रहे हो वो एक्चुअल सारी मूवमेंट्स को कैप्चर करता रहता है।
0: सर डैश कैम है क्या?
1: डैश कैम एक तरीके का कैमरा होता है, सीसीटीवी कैमरा होता है, वो आपकी गाड़ी में लगा होता है, वो रिकॉर्ड करता है प्रॉपर,
0: मतलब वो जो गाड़ी चला रहा है उसको पता है?
1: हाँ पता क्या, वो गाड़ी में इनबिल्ट फीचर होता है वो।
0: अच्छा,
1: वो गाड़ी में इनबिल्ट फीचर होता है, आजकल गाड़ियां ऐसी आ रही है उसमें डैश कैम लगा होता है, आप कहीं जा रहे हैं तो सामने से भी जो गाड़ी आ रही है उसको भी कैप्चर करता है, पीछे आपकी गाड़ी के वो भी कैप्चर होता है, तो अगर कोई भी मूवमेंट होता है ऐसा तो डैश कैम के थ्रू वो एज एन एविडेंस बन सकता है कि भाई किसने टक्कर मारी थी, किसकी गलती है, वो ऑन द मैटर ऑफ रिकॉर्ड होता है, अगर कोर्ट में केस जाता है तो उसको हम वहाँ पे क्लेम भी कर सकते हैं,
0: मतलब ऑटोमेटिक वो चालू हो जाता है जैसे गाड़ी
1: रिकॉर्डिंग, जैसे आपके सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं तो वैसे एक तरीके का गाड़ी में सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, तो उसमें मेमोरी होती है, वो प्रॉपर रिकॉर्ड करती रहती है, तो एज एन एविडेंस का काम करती है वो।
0: सड़क पर वाहन चलाते समय सबसे बड़ी कानूनी जिम्मेदारी क्या है?
1: देखिए, कानूनी जिम्मेदारी आपकी यही है कि जब आप गाड़ी चलाएं तो एक वैलिड आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी के प्रॉपर पेपर्स होने चाहिए, इंश्योरेंस पॉल्यूशन, और आप अपनी साइड पे ही चलें, कभी भी रॉन्ग साइड ना चलें और कभी भी ओवर स्पीडिंग ना करें, बस यही दो तीन चीजें हैं।
0: सर जो आजकल की जेन जी आम नागरिक है और जो गर्ल्स है विमेन है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए भाई, मैं तो यही बोलूंगा कि सड़क पर जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, आपको आराम से व्हीकल चलाना है, जिम्मेदारी दिखाइए, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए, नशे में वाहन ना चलाइए, ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, सुरक्षित सफर ही सबसे बड़ी मंजिल है, और अगर उसके बाद भी आप मेरी बात नहीं मानते तो मुरादाबाद पुलिस आपकी सेवा में तत्पर है।
0: वो तो है सर,
1: तो फिर उसके बाद फिर आप जो है आपको प्रॉब्लम आएगी तो आपको कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो बेटर है कि आप जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो भी लॉज है, उसको आप फॉलो करें।
0: तो चलिए श्रोता, ये शो हम यही खत्म करते हैं, उम्मीद है कि आज की बात से हमें यही समझ आई कि सड़क पर सुरक्षा हमारी अपनी जिम्मेदारी है, ट्रैफिक नियमों का पालन करना सिर्फ कानून का डर नहीं बल्कि अपने और दूसरों के जीवन का सम्मान करना है, घर निकलते समय हमेशा हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाए, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और कभी भी शराब पीकर वाहन ना चलाए, छोटी सी सावधानी आपकी और आपके परिवार की खुशियां हमेशा सुरक्षित रख सकती हैं। और सुनते रहे FM मुरादाबाद 9.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

0: आरंभ किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली स्टार्टअप और इनक्यूबेशन नीति पर आयोजित गोलमेज बैठक में कहा, बैठक का उद्देश्य स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है। और दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के प्रयासों में जन भागीदारी बढ़ाने को लेकर प्रदूषण मुक्त दिल्ली अभियान की शुरुआत की। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 2 लोगों की मौत हुई जबकि 7 लोग घायल हो गए। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज शाम दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली अग्निशमन विभाग और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समेत सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे तेजी से बचाव कार्य को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तालमेल बिठाकर काम करें। उन्होंने कहा कि स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जरूरतमंदों तक हर संभव मदद पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी एजेंसियां तालमेल के साथ काम कर रही हैं और सुरक्षित बचाव पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल NDRF के महानिदेशक से बात की और हालात का जायजा लिया। गृह मंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और NDRF मिलकर बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चला रहे हैं और घायलों को हर जरूरी मेडिकल सहायता दी जा रही है। मीडिया से बात करते हुए NDRF के महानिरीक्षक NS बुंदेला ने बताया कि 70 कर्मियों वाली NDRF की 2 टीमें अभी घटना स्थल पर काम कर रही हैं।
1: 2 टीमें करीब 70 लोग हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर और विक्टिम्स को हमने आइडेंटिफाई किया है और इसमें हमने अपनी कैनाइंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कटिंग इक्विपमेंट है, टेक्निकल इक्विपमेंट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक 4 लोगों को NDRF की टीम ने फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और जो भी लोकल कम्युनिटी है वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रही है, असिस्टेंस दे रही है, सबके कोऑपरेशन से हमने 4 विक्टिम्स को निकाला है।
0: दिल्ली पुलिस ने यह बताया है कि स्थानीय जांच में पता चला है कि इमारत 40 से 50 साल पुरानी थी। पुलिस ने कहा कि घटना के समय इमारत के बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था। दिल्ली अग्निशमन विभाग ने राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर 18 दमकल गाड़ियां तैनात की हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शाम शालीमार बाग और पीतमपुरा में कई विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में स्वच्छ व्यवस्था, पार्कों के सौंदर्यीकरण और सड़क संपर्क को और मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
2: शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ने शालीमार बाग स्थित BB ब्लॉक की स्कूल बिल्डिंग के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। श्रीमती गुप्ता ने विद्युत व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए AF ब्लॉक तथा शालीमार बाग के C और D ब्लॉक की मेन रोड पर खुले ओवरहेड कंडक्टर को अंडरग्राउंड केबल में बदलने के कार्यों का शुभारंभ किया। इससे क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने पीतमपुरा स्थित श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज से रिंग रोड तक नई सड़क के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने YP ब्लॉक के 3 और WP ब्लॉक के 10 पार्कों में होने वाले सौंदर्यीकरण तथा विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य विकास को केवल बड़े प्रोजेक्ट्स तक सीमित न रखकर हर गली, हर कॉलोनी और हर नागरिक तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाना है। आदित्य के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहें। expert@AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: राजधानी दिल्ली को देश की स्टार्टअप और इनोवेटिव राजधानी बनाने की दृष्टि को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली स्टार्टअप और इनक्यूबेशन नीति पर आयोजित एक विशेष गोलमेज बैठक में सहभागिता की। नई दिल्ली में प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा यूथ फॉर गवर्नेंस के सहयोग से आयोजित इस बैठक में देश के प्रमुख उद्योगपतियों, स्टार्टअप संस्थापकों, निवेशकों और उद्यमिता क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य दिल्ली स्टार्टअप और इंक्यूबेशन नीति को प्रभावी बनाने के लिए उद्योग जगत तथा स्टार्टअप समुदाय से प्रत्यक्ष सुझाव प्राप्त करना और राजधानी में एक मजबूत और उद्यमशील पारिस्थितिकी तंत्र को तैयार करना रहा। संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री

0: इस अवसर पर श्री चहल ने कहा कि लगातार 40 रविवार से चल रहा यह अभियान इस बात का एक प्रमाण है कि पर्यावरण संरक्षण अब केवल सरकारी प्रयास नहीं है बल्कि जन भागीदारी से जुड़ा एक सतत अभियान बन रहा है। श्री चहल ने कहा कि पौधा लगाना सिर्फ एक शुरुआत है, असल जिम्मेदारी उसे जीवित रखकर एक मजबूत पेड़ बनाना है। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय निवासियों और आवासीय कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने क्षेत्र से संबंधित विभिन्न नागरिक समस्याएं श्री चहल के समक्ष रखी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: दिल्ली सरकार ने आज वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के प्रयासों में जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदूषण मुक्त दिल्ली अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य राजधानी में वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई और नागरिकों तथा सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा संचालित यह अभियान इस महीने से मार्च 2027 तक साथ निभाएं प्रदूषण घटाएं विषय के अंतर्गत चलाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: इस अभियान के माध्यम से राजधानी के विभिन्न सरकारी विभागों, संस्थानों, उद्योगों, समुदायों और नागरिकों को एकजुट करते हुए स्वच्छ और स्वस्थ वायु के लिए एक निरंतर तथा सामूहिक जन आंदोलन तैयार किया जाएगा। सरकार ने बताया कि आने वाले महीनों में दिल्ली भर में जागरूकता, संवेदनशीलता और हितधारक सहभागिता से जुड़े विभिन्न गतिविधियां की श्रृंखला आयोजित की जाएगी। स्कूलों और कॉलेजों, उद्योगों, रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशनों, बाजारों, निर्माण क्षेत्र से जुड़े हितधारकों, किसानों, वाहन मालिकों और आम नागरिकों को लक्षित गतिविधियों के माध्यम से अभियान से जोड़ा जाएगा। जनसंपर्क को और व्यापक बनाने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन, काय तथा अन्य रचनात्मक संवादात्मक गतिविधियों का भी उपयोग किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रदूषण से संबंधित जानकारी और उससे समाधान को प्रत्येक नागरिक के लिए सरल बनाना है। इस अवसर पर दिल्ली पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिसा ने कहा कि दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए निरंतरता के साथ कार्य कर रही है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे।
3: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमताओं को दर्शाती है। दिल्ली पुलिस ने उत्तम नगर में अवैध रूप से रह रहे युगांडा के 2 नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये विदेशी नागरिक बिना किसी वैध यात्रा और पहचान दस्तावेज के अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। पुलिस ने बताया कि अवैध अप्रवासी को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के सामने प्रस्तुत किया गया और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा आज नजफगढ़ रोड स्थित राजौरी गार्डन मार्केट चौराहे में एक सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि इस कार्यक्रम में लगभग 2000 लोगों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई, साथ ही

0: सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। दिल्ली आबकारी विभाग ने लंबे समय से विभिन्न पुलिस थानों और उनके आसपास पड़े 2000 से ज्यादा जब्त वाहनों की सार्वजनिक नीलामी की है। इसके साथ ही विभाग ने आबकारी नियंत्रण प्रयोगशाला में लगभग 5000 से अधिक लंबित पुलिस मामलों से जुड़े रासायनिक विश्लेषण का पूरा बैकलॉग समाप्त कर सक्रिय लंबित मामलों की संख्या शून्य कर दी है। राजधानी के कई क्षेत्रों में आज सवेरे हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली के सत्य निकेतन क्षेत्र में एक बहुमंजिला इमारत ढही, 2 लोगों की मौत और 7 घायल। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग और पीतमपुरा में कई विकास कार्यों और परियोजनाओं का शुभारंभ किया। और दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के प्रयासों में जन भागीदारी बढ़ाने को लेकर प्रदूषण मुक्त दिल्ली अभियान की शुरुआत की। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाँ यार, अच्छा।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस टू, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
5: जरूरी नहीं होता है, कभी कभी ना भी कहना जरूरी होता है। अक्सर हम यही करते हैं ना कि हम दूसरे को खुशियों के लिए हमेशा जब भी वो कुछ काम बोलता है हम हाँ कर देते हैं। लेकिन देखिए, हाँ करना भी जरूरी है, लेकिन कभी कभी ना आपको जब लगे कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, वहाँ पर मुझे ना बोलना है, तो वहाँ पर ना बोलना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जो कहते हैं ना, जो ज्यादा अच्छे आप बनोगे ना, तो उतने अच्छे तरीके से चक्की में पीसे भी जाते हैं। तो इसीलिए ज्यादा अच्छा भी बनना जरूरी नहीं है, उनके साथ अच्छे रहिए जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, जो आप जब भी बोलते हैं वो आपके साथ खड़े रहते हैं। उनके लिए तो भैया देखिए, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी, उनके साथ तो आपको देना ही पड़ेगा। और कभी कभी हम दूसरों को खुश रखने की कोशिश में खुद को दुखी कर बैठते हैं। किसी ने मदद मांगी, हमने हाँ कह दी। किसी ने अपना काम हमारे ऊपर डाल दिया, हमने कहा कोई बात नहीं कर लेंगे। मन नहीं था फिर भी किसी की बात मान ली, थक गए थे फिर भी किसी के लिए समय निकाल लिया। और जब अपने लिए कुछ करने की बारी आई, तो हम खुद से ही कह देते हैं अभी नहीं बाद में। लेकिन श्रोताओं, आज के इस महिला मंच शो में आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगी, जो हमारी प्यारी बहनें हैं, सो देखिए काम करना जरूरी है हर किसी के लिए। जब भी कोई काम बोले आप करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ना खुद के लिए टाइम निकालिए, और कभी कभी ना बोलना भी सीखिए। क्योंकि अक्सर लड़कियां महिलाएं होती हैं, वो ना नहीं बोलती है, हमेशा काम के लिए तैनात रहती है, जिसने बोला काम करो तो कर देती है। लेकिन कभी कभी आपको अपने लिए डिसीजन लेना भी बहुत जरूरी है।
6: साथियों, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और क्या हर बार हाँ कहना हमें अच्छा इंसान बनाता है, या फिर कभी कभी अपने लिए ना कहना भी जरूरी है? क्योंकि दोस्तों, हर हाँ रिश्ता नहीं बचाती और हर ना रिश्ता नहीं तोड़ती। कभी कभी एक छोटा सा ना आपको खुद से दोबारा जोड़ देता है। तो आज बात करेंगे दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को पीछे छोड़ देने की। बात करेंगे अपनी सीमाओं की, अपने मान की, और अपने लिए ना कहना सीखने की। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला मंच, और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे खुशी। तो आज खुद से एक वादा कीजिए, हर किसी को खुश करने से पहले एक बार खुद से भी पूछेंगे, क्या खुशी, क्या तू खुश है? एंड एक बार आपका जो भी नाम है, आप खुद से पूछिएगा कि क्या आप खुद से खुश हैं? आखिर ना कहना इतना मुश्किल क्यों है? दोस्तों, ना सिर्फ दो अक्षर का एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसे बोलना कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है सामने वाला बुरा ना मान जाए, उसे लगेगा कि हम स्वार्थी हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैंने मना कर दिया तो शायद रिश्ता खराब हो जाएगा। और डर में हम अपनी इच्छा के खिलाफ बार बार हाँ कहते रहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, दूसरों की हर उम्मीद पूरा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप भी थक सकते हैं, आपका भी मन नहीं हो सकता है, आपके पास भी समय कम हो सकता है, और ये सब बिल्कुल सामान्य है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ एवरीवन, आप आखिरी बार कब सिर्फ इसलिए हाँ बोले थे क्योंकि आपको डर था कि सामने वाला बुरा ना मान जाए? और अगर आप उस समय ना कह देते तो क्या होता? मुझे अपने संदेश जरूर भेजिएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837896896।
5: तो देखिए श्रोताओं, अब हम बात करेंगे अच्छा इंसान बनने की गलत परिभाषा। हमारे मन में बचपन से ही एक बात बैठा दी जाती है, अच्छा बच्चा वही है जो सबकी बात, अच्छी बेटी वही है जो सबके काम आए, अच्छी पत्नी वही है जो सबको खुश रखे, अच्छा दोस्त वही है जो हर समय उपलब्ध रहे। लेकिन क्या ये सच है? अगर आप हर किसी के लिए मौजूद है, लेकिन खुद के लिए कभी कोई मौजूद नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी जिंदगी में संतुलन लाने की जरूरत है। अच्छा इंसान बनने का मतलब ये नहीं कि आप हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहे। अच्छा इंसान होना और खुद को भूल जाना दो अलग बात। और घर वाले तो अक्सर हमें सिखाते हैं कि हमेशा एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे के लिए खड़े रहो, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप उनके साथ खड़े रहो, उनको साथ दो जो आपके साथ, जैसे आप किसी के लिए एक बात पर खड़े हो जाते हो, बोलते हो कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, मैं काम करूंगी, तो जो बोलेगा मैं तेरे साथ हूँ, सामने वाला भी आपको वैसा रिप्लाई दे और आपके साथ वैसा ही रहे, तो बिल्कुल आप भी उनके साथ वैसा ही रहे, वैसा ही व्यवहार करें जैसा सामने वाला करता है। और कभी कभी हर विमनिया को ना भी कर देना चाहिए। शाम होते ही सुबह से लेकर शाम तक किचन में लगी रहती है, भाई कुछ बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, लेकिन कभी अपने पसंद के कुछ नहीं बनाती है। तो कभी कभी ना करके ये बोला करिए कि चलो आज बाहर खाना खाने चलते हैं, बाहर एंजॉय करके आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको भी जिंदगी जीने का मौका मिले, बाहर घूमने का मौका मिले। और बाहर घूमने का ये सबसे आसान तरीका है कि शाम के खाने के लिए ना कर दो, आज खाना नहीं, आज बाहर खा के आते हैं, एंजॉय करके आते हैं, तो देखिए आपको भी टाइम मिलेगा और अभी अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगी और बाहर के नजारे हैं, जो बाहर की देश दुनिया है, आप उसको भी एंजॉय कर पाएंगी, क्योंकि चार दीवारी में रहना और भाई थोड़ी सी घुटन भी हो जाती है, सफोकेशन हो जाती है, तो उससे थोड़ा बाहर निकलिए, ताजगी हवा लीजिए और अपने जीवन को एंजॉय करिए। फिलहाल हम लेंगे यहाँ पे श्रोता एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद मैं कनेक्ट होती हूँ आप सभी के साथ, एक बहुत ही शानदार गाना आप सभी के लिए है, तो इस गाने को एंजॉय करिए।

0: क्या बात है श्रोताओं, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है और मैं आपके साथ आपकी आरजे रीना और आप सुन रहे हैं महिला मंच शो। मेरे साथ आरजे खुशी भी है। सो अब मैं बात करने वाली हूँ, ना स्वार्थ नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि अपने लिए ना कहना स्वार्थ, लेकिन नहीं। अगर कोई आपसे कहता है आज मेरे साथ बाहर चलो और आपका मन नहीं है, तो आप प्यार से कह सकते हैं आज मेरा मन थोड़ा आराम करने का है। हर किसी और दिल मिलते हैं, इसमें स्वार्थ कहाँ है। अगर कोई आपसे ऐसा काम करने को कहता है जिसके लिए आपके पास समय नहीं है, तो आप कह सकते हैं अभी मेरे पास समय नहीं है कि बाद में करूँगी या फिर कर दूंगा। क्योंकि देखिए, जब आपका मन ना हो ना कोई काम करने के लिए और आप उसको जबरदस्ती करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो काम आप बेटर कर ही नहीं पाएंगे। आप बोल सकते हैं कि अभी मेरा मन नहीं है, मैं थोड़ी देर में आपका जो काम है वो कर दूंगी। शायद आप और बेटर उस टाइम कर पाए। और जब मन नहीं होता किसी काम को करने के लिए, तो आपका वो सारा काम गलत ही होता जाता है। आप उसको खुद भी अच्छा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका पूरा ध्यान तो कहीं और रहता है। बॉडी थकान हो चुकी होती है, तो वो आपसे आराम मांगती है, तो उसको आराम दीजिए, फिर थोड़ी देर बाद आप उस काम को कर सकते हैं। फिलहाल अब मैं खुशी से जानना चाहूंगी, कहाँ हो भैया तुम? बातें सुन रही है भैया, लड़के चुप चुप के। अरे बोलो भाई, तुम भी कुछ?
1: हाँ, मैं आपकी बातें सुन रही थी। बहुत ही अच्छे से आप सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करती हूँ, पहले आपको सुन लेती हूँ। और दोस्तों, मैं भी आपसे कुछ एक छोटा सा संवाद शेयर करना चाहती हूँ। क्या आपको ना कहने के बाद अपराध बोध होता है? मतलब आपने किसी को मना तो कर दिया, लेकिन बाद में मन में बार बार चलता रहता है शायद मुझे हाँ कर देनी चाहिए थी। ये मेरे साथ होती ना, मैं
0: हाँ, मेरे साथ भी होता है।
1: मुझे लगता है कि यार मैंने क्यों ना बोल दिया, मुझे हाँ बोलना
0: और
1: चाहिए।
0: वो मुझे लगता है कि वो पूरा दिन हमारे दिमाग में घूमता रहता है।
1: हाँ।
0: सामने भी जब जाते हैं ना उसके पास, तो मैंने कहा यार क्या सोच रहा होगा ये, क्या सोच रही होगी।
1: सेम सिचुएशन होती है। अगर ऐसा आपके साथ होता है, आज का हमारा महिला मंच बहुत खास है आपके लिए, तो आप हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों अब मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुना चाहती हूँ। कहानी है मीरा की। मीरा एक बहुत ही होनहार लड़की थी। घर में सबकी मदद करना, दोस्तों के काम आना, ऑफिस में दोस्तों का काम कर देना, मीरा के लिए सब सामान्य था। उसकी एक आदत थी, वह किसी को ना ही नहीं कह पाती थी। ऑफिस में कोई कहता मीरा मेरा ये काम कर दो, वह कहती हाँ। दोस्त फोन पर कहते मीरा मेरे साथ बाजार चलोगी, मीरा बोलती हाँ चलूंगी। घर में कोई कहता आज ये काम तुम कर देना, मीरा कहती हाँ मैं कर दूंगी। धीरे धीरे मीरा थकने लगी, लेकिन किसी से कुछ कहती नहीं थी। एक दिन वह बहुत थकी हुई घर लौट कर आई। उस दिन उसकी माँ ने पूछा बेटा क्या हुआ? मीरा ने कहा कुछ नहीं माँ। माँ ने मुस्कुरा कर कहा कुछ नहीं नहीं बहुत कुछ है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा माँ मैं सबके लिए इतना कुछ करती हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि मैं किसी के लिए पर्याप्त नहीं हूँ, मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं हूँ। माँ कुछ देर चुप रही, उन्होंने बहुत प्यार से कहा बेटा दूसरों के लिए अच्छा बनने की कोशिश में तुम खुद के लिए बुरी बन गई हो। मीरा चौंक गई। माँ ने कहा तुमने कभी किसी को मना नहीं किया, लेकिन कभी खुद से पूछा कि तुम क्या चाहती हो? मीरा के पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन ऑफिस में एक साथी ने फिर अपना काम मीरा को देते हुए कहा मीरा ये भी काम कर देना मीरा प्लीज। मीरा कुछ सेकंड चुप। पहली बार उसने मुस्कुरा कर कहा माफ कीजिएगा, आज मेरे पास पहले से ही बहुत काम है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। बस इतना ही कहा सामने वाला थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दुनिया खत्म नहीं हुई, बड़ा रिश्ता नहीं टूटा, ऑफिस बंद नहीं हुआ। मीरा को बस पहली बार महसूस हुआ अरे मैं मना कर सकती हूँ। उस दिन के बाद मीरा ने हर बात पर ना कहना शुरू नहीं किया। जहाँ सच में जरूरत है वहाँ मदद करो, लेकिन जहाँ आपकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा हो वहाँ अपनी सीमा तय करो। और दोस्तों, मीरा की जिंदगी में

सबसे खूबसूरत बदलाव तब आया जब उसने दूसरों को खुश करने से पहले खुद को भी इम्पोर्टेंस दी, खुद को भी महत्व देना शुरू किया। तो दोस्तों अभी मिलते हैं आपको एक म्यूजिकल ब्रेक के उस पार, आप कहीं मचाइए यूं ही मुस्कुराइए। लौट कर आते हैं हम आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है महिला मंच, जहां पर हम बात कर रहे हैं महिलाओं के बारे में। अक्सर क्या होता है ना, हमारी जो मेल्स होती है ना, जैसे रीना ने भी आपको बताया दोस्तों कि वो कभी लड़कियां भी ना बोलती ही नहीं है, हमेशा हर काम के लिए हाँ ठीक है मैं कर दूंगी। और मीरा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो आगे क्या हुआ है सब आपको बताऊंगी अभी एक प्यारे से गाने के साथ।

0: क्या बात है श्रोताओं, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। अपने तो अपने होते हैं, सच में अपने तो अपने ही होते हैं। फिलहाल इस महिला मंच में हम आगे बढ़ते हैं, आगे की जो बात है वो शुरू यानी कि जारी रखते हैं। रिश्तों में ना क्यों जरूरी है, अब एक बहुत जरूरी बात। कई लोग सोचते हैं कि ना कहेंगे तो रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन जो रिश्ता आपके एक सम्मानजनक ना होकर स्वीकार ना कर सकता, उस रिश्ते में कभी ना कभी संतुलन की जरूरत है। सच्चे रिश्ते में आप अपनी बात कह सकते हैं, आप कह सकते हैं आज मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे ये बात पसंद नहीं आई, मैं इस तरह बात नहीं करना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा समय चाहिए और सामने वाला आपकी बात समझने की कोशिश करे। यही स्वस्थ रिश्ता होता है, क्योंकि जो आपकी बात समझे, जो आपका अहमियत करे, मुझे लगता है कि वो रिश्ता सबसे बेस्ट होता है। और रिश्ता वो नहीं कि जो आपने हाँ कहा वो टूट गया और उसने अगले ने सोचा कि यार इसका तो यही काम है, ये ना कर देती, इसे बोलना ही बेकार है, आज के बाद मैं इसे कुछ काम बोलूंगा ही नहीं, तो वो रिश्ता किसी काम का नहीं है। मुझे ये लगता है वहाँ पर आपको ना करना बहुत जरूरी। जो इंसान आपको समझता है, जिस रिश्ते में आपको समझा जाता है, सम्मान दिया जाता है, प्यार दिया जाता है, वो आपको समझेगा, वहाँ पर आपकी बातें अच्छे से सुनी भी जाएगी, तो वो रिश्ता हमारे लिए बेस्ट होता है। ना कि ना कहा और टूट गया, वो रिश्ता रिश्ता नहीं होता है। सो महिलाओं के लिए यानी कि खास बात क्या है, जो आजकल की हमारी प्यारी विमेन है उनके लिए खास बात क्या है, और आज की ये बात खास तौर पर उन महिलाओं के लिए है जो घर में सबकी जरूरत समझती हैं, सबके खाने का ध्यान रखती हैं, बच्चों का ध्यान रखती हैं, पति का ध्यान रखती हैं, सास ससुर का ध्यान रखती हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो कहती हैं मेरे लिए क्या। याद रखिए, आप घर की जिम्मेदारी है, लेकिन सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, आपकी अपनी पसंद है, आपका अपना समय है, आपके अपने सपने हैं, घर वालों की देखभाल कीजिए, लेकिन खुद की देखभाल भी उतनी जरूरी है। अक्सर महिलाएं इस चीज को अवॉइड करती है, उनको अगर थोड़ी तबीयत भी खराब होती है ना तो बस एक ही बात कहती है, यार ठीक है दवाई लेके ठीक हो जाएगा, क्या ही जरूरत है, वो दवाई लेके दो एक दिन के लिए ठीक भी हो जाता, फिर से उनके साथ यही होता है। तो मुझे लगता है कि खुद के लिए कदम बढ़ाइए, आप अगर आप स्वस्थ रहेंगी ना तभी आप परिवार वालों को भी खुश रख पाएंगी, अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगी तो परिवार वालों को आप खुश नहीं रख पाएंगी। और जब आपकी लग रहा है कि आपको आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो बोल दो कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, थोड़ी देर बात कर लेंगे, क्योंकि हर समय हर टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल रहना जरूरी नहीं है। आप जितना अच्छा बन के दिखाएंगे आपसे उतना ही काम कराया जाएगा और आप उतने ही बेवकूफ बनते जाएंगे, इसीलिए थोड़ा दिमाग से काम करिए। देखिए हर किसी के साथ काम करिए, लेकिन थोड़ा खुद के लिए भी समय निकालना बहुत जरूरी। तो देखिए यहाँ पर अब मैं बच्चों के बारे में भी बात करने वाली हूँ। बच्चों को भी ना कहना सिखाइए, क्योंकि अक्सर माँ बाप यही सिखाते हैं हमें कि हर किसी के साथ रहो, हर किसी की बात मानो, जो भी तुम्हें कोई कहे मतलब जो तुमसे बड़ा है उनकी बातों का सम्मान करें, लेकिन मुझे लगता है कि उनको कभी कभी ना कहना भी सिखाना पड़ेगा। अगर आप उनको ना कहना नहीं सिखाते हैं तो यहाँ पर आप बहुत बड़ी भूल करते हैं। हम बच्चों को अक्सर कहते हैं बड़ों की बात मानो, लेकिन हमें उन्हें ये भी सिखाना चाहिए कि अगर कोई उन्हें ऐसी बात के लिए मजबूर करे जिसे वो असहज महसूस करे तो वो साफ शब्दों में ना कह सके और किसी भरोसेमंद बड़े को बता सके। ना कहना सिर्फ व्यक्तित्व की बात नहीं, कई बार ये अपनी सुरक्षा सम्मान की बात भी होती है। इसीलिए बच्चों को सिर्फ अच्छा बच्चा बनो मत सिखाइए, ये भी सिखाइए अपनी बात कहना भी जरूरी है, क्योंकि अक्सर जब हम बच्चों को सिखाते हैं ना कि हाँ बोलो हाँ बोलो, तो कभी कभी एक ऐसा अनजान व्यक्ति भी सामने आ जाता है जिसको नहीं जानता है बच्चा, और फिर भी वो बोलता है कि मैं तुम्हें चिप्स देता हूँ, कुरकुरे देता हूँ, वो ले लेता है और हमें नहीं पता उसमें क्या मिलावट है क्या नहीं मिलावट है, और बच्चे के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चे स्कूल भी जाते हैं और कभी ऐसा होता है कि रास्ते में अकेले भी आते हैं। तो ऐसी जगह पर यानी कि बच्चों को ना कहना भी सिखाना चाहिए कि जो अनजान व्यक्ति है जिसको नहीं जानते हैं उनको आप ना बोलो, अगर उनके साथ भी अगर आप बोलते हो तो आजकल आप सभी को पता है कि कितना स्कैम चला हुआ है, है, बच्चे के साथ भी धोखाधड़ी होती है, तो बच्चों को ना कहना सिखाइए और उन्हें ये भी सिखाइए कि जो अब आपके साथ अनजान व्यक्ति आता है तो उसे कम बात करें। और साथ ही साथ कोई अजनबी व्यक्ति आपके बच्चों को खाने के लिए कुछ दे रहा है और उसे कह रहा है कि बेटा चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, वैन में छोड़ देता हूँ, तुम पैदल चल रहे हो धूप में ना, तो वहाँ पर बच्चों को सिखाइए कि वहाँ पर आपको ना बोलें। और सबसे बड़ी बात, बच्चे बाहर जाते हैं और बच्चे लालच में भी आ जाते हैं, बच्चे होते हैं दिल के सच्चे, वो उनको लालच मिल जाता है कि चलो मैं तुम्हें चिप्स देता हूँ, कुरकुरे देता हूँ, तो ले लो और खा लो और मेरे साथ चलो, तो बच्चे चल भी देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को सावधान करिए, जो घर वाले दे रहे वो खाओ, लेकिन जब आपको बाहर दिया जा रहा है तो मत खाओ। और कोई भी कहता है कि दो कदम पर मेरे साथ चलो तो वो भी आपको ना कहना है, वहाँ पर बच्चों को सिखाइए, ये बच्चों को सिखाने के लिए बहुत जरूरी।
1: क्या बात है रीना, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है कि अगर कोई भी बच्चा बाहर जा रहा है, कोई अजनबी पर्सन उनको मिल रहा है, तो उनसे कोई चीज ना लें और उनके साथ कहीं भी ना जाएं, क्योंकि बच्चों को सुनना बहुत जरूरी होता है, बच्चे बड़े मासूम होते हैं। और बच्चों को ना ये भी बताइए आप अपना मोबाइल नंबर एंड अपने घर का एड्रेस, पूरा डिटेल्स में पेरेंट्स का नाम, ये सारी चीजें बच्चों को याद करवाइए, ताकि बच्चा कभी ऐसे सिचुएशन में अगर फंस जाए, कभी ऐसी कंडीशन, मैं तो कहूँ कि ना आए, लेकिन कभी ऐसा हो तो बच्चों को अगर सारी चीजें याद रहे तो वो अपनी फैमिली को कॉन्टेक्ट कर सकता है एंड अपनी सही अपने डायरेक्शन पर वो पहुंच सकता है।
0: और साथ ही साथ बच्चों को ये भी सिखाइए बैड टच और गुड टच।
1: हाँ एग्जैक्टली, ये बहुत मोस्ट था, क्योंकि चलो हमने बहुत सारे बच्चों के ऊपर बातें की है और अभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम थोड़ा सा ना फन भी करने वाले हैं, थोड़ी सी मस्ती भी करने वाले हैं, थोड़ा फन एक्टिविटीज हो जाए ना एवरीवन। तो चलो रीना, मैं तुम्हारे साथ एक मजेदार गेम खेलती हूँ, ठीक है? चलो रीना, हमने एक मजेदार गेम खेलते हैं, ठीक है? तो मैं आपको एक ऐसी सिचुएशन दूंगी जिसमें आपको हाँ या ना में जवाब देना है,
0: ठीक है?
1: और वो भी प्यार से, ठीक है? तो पहला सवाल मेरा ये है, आप बहुत थकी हुई हो और दोस्त आपसे कहें कि चलो आज पार्टी करते हैं, तो आप हाँ कहेंगी या ना?
0: अगर वो मेरे खास होंगे तो हाँ, अदरवाइज ना।
1: चलो दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, आपके पास पहले से ही बहुत काम है और कोई अपना आपको भी अपना काम दे दे, तो आप हाँ कहेंगी या ना?
0: ना।
1: चलो तीसरा सवाल, कोई आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहा लेकिन आप सिर्फ रिश्ता बचाने के लिए चुपचाप हैं, क्या यहाँ हमेशा हाँ सोचेंगी या आपने जवाब ना? ओके, इन्होंने सवाल से पहले ही जवाब दे दिया।
0: तुम क्या कहना चाह रही हो?
1: ठीक है,
0: आगे पूछो।
1: अरे वाह, क्या बात है, रीना तो हर सवाल का राइट आंसर दे दिया है और ये तो हमारे आज महिला मंच की बन गई है क्वीन, तो उनके लिए जोरदार तालियां। वैसे बड़ी खुशी होती है ना जब हमें कोई अप्रिशिएट करता है।
0: हाँ।
1: ना कैसे कहे ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है दोस्तों? अब सबसे जरूरी बात, अगर ना कहना है तो कैसे कहे, क्योंकि ना कहने का मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले को अपमानित करें, आप प्यार से कह सकते हैं मुझे माफ कीजिएगा, मैं अभी ये नहीं कर पाऊंगी, या मैं आपकी बात समझ रही हूँ लेकिन इस बार मेरे लिए संभव नहीं है।
0: मतलब वही बात है ना, मुस्कुरा कर कहनी है, गुस्से में नहीं कहनी।
1: हाँ, सिचुएशंस, और अभी मुझे थोड़ा अपने लिए समय चाहिए बस। तो चलिए एवरीवन, मिलते हैं आपको एक नए एपिसोड में नई बातों के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा हमें जाने की अनुमति। बाय बाय, टेक केयर, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सभी अपना ख्याल रखिए।
2: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स, यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
6: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
5: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681। मुरादाबाद 8 सितंबर को जमेगी हंसी की महफिल।
1: रात में 10 बजे के बाद मैं निकलता हूँ, मेरा खुद लूटने का मन करने लगता है। एक वाइब है, एक माहौल है यहाँ की हवा में, मन कर जाता है।
0: तैयार हो जाइए क्योंकि आ रहा है वो इंसान जो कहता है कल की चिंता नहीं करता। रवि गुप्ता कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 8 सितंबर पंचायत भवन मुरादाबाद में शाम 4 बजे और रात 8 बजे। तो मुरादाबाद हंसने के लिए हो जाओ तैयार। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896। एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आरजे आनंद को, और मेरे साथ इस प्रोग्राम में है हमारी प्यारी दोस्त आरजे रीना। श्रोताओं, प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ, ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम अलग अलग मुद्दे उठाते हैं, अलग अलग विषयों पर हम बात करते हैं ताकि हमारे समाज में और हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है वो अपनी सोच बदल सके। क्योंकि देखिए, जब उनकी सोच बदलेगी तो अपने आप ही समाज और देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा और हमारा देश और भी खूबसूरत बनेगा। क्यों आरजे रीना, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। बढ़िया
2: हूँ मैं तो, बहुत बढ़िया हूँ आनंद। तुम बताओ, तुम कैसे हो इस गर्मी में? इतनी ज्यादा गर्मी है यार कि पूछो मत।
0: ऊपर से लाइट जो है बार बार भागे जा रही है, तो यही कहने वाली थी।
2: हाँ, यही कहने वाली थी। हाँ,
0: इसकी और मेरे विचार इसलिए मैच कर रहे हैं क्योंकि रात को मच्छर और पसीना दोनों ही परेशान कर रहे हैं। ये ऊपर से एसी में चली आती है और मैं ऊपर से नीचे खुले चौड़े में चला हूँ सड़कों पे, रातों रात परेशान हो रहे हैं ना।
2: बिल्कुल सही।
0: और दोपहर में भी बहुत तेज गर्मी है श्रोताओं। इस वक्त देखिए दोपहर हो रही है और चिलचिलाती तगड़ी धूप है। हम कोशिश यही करेंगे कि हम तो स्टूडियो के अंदर ही रहें, लेकिन आपसे भी गुजारिश करेंगे कि इस धूप में बाहर ना ही निकलो तो अच्छा है।
2: और स्टूडियो में है ना तभी राहत मिल रही है, सच बताऊं। बाहर जाके तो ऐसा लग रहा है कि भाई क्यों ही आ गए बाहर, इतनी गर्मी मिर्ची वाली धूप लग रही है।
0: करेक्ट। और इस गर्मी में अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। खैर दोस्तों, आज सोच बदलो में हम एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से श्रोताओं, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं आप। और इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना फेवरेट सोच बदलो, जिसमें मैं और रीना आज एक कहानी के जरिए आपको समझा रहे हैं कि हमारी प्रकृति का ध्यान रखना कितना जरूरी है। आजकल तुम देखते हो रीना, बिना मौसम
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841।
5: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिल्म मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी अपनी खुशी और दोस्तों खुश शामें आवाज नहीं एहसास बनकर दिल में उतर जाती हैं। और आज की सुहानी सी शाम भी कुछ ऐसी ही है, हवाओं में ठंडक है, मौसम में मिठास है और कुछ आपके साथ होने से इस शाम की खूबसूरती कुछ और खास है। तो चलिए इस खूबसूरत शाम को संगीत के नाम करते हैं, जहां हर धुन में एक कहानी होगी, हर गीत में एक जज्बात होगा और हर एहसास होगा आपके नाम। मैं आपकी अपनी खुशी और आप सुन रहे हैं गीत आपके नाम से, जहां गीत सिर्फ बजते नहीं हैं, दिल से महसूस किए जाते हैं। और समय हुआ है स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ 9:06। और हमारे साथ हमारी कॉलर भी कनेक्ट हो गई है, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी, गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका? जी बताइए, गफरूज कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसे हो?
0: हाँ मैं भी ठीक हूँ, आप बताइएगा क्या कर रहे हैं आप?
1: कुछ नहीं, नहीं बस घूमने के लिए आए हुए थे।
0: अच्छा, कहाँ घूम रहे हैं आजकल आप लोग?
1: दरक्षा के घर पर आई थी मैं।
0: अच्छा, दरक्षा के घर आए हो, अरे वाह, अच्छी बात है, फ्रेंड्स से मुलाकात होना भी जरूरी है।
1: हाँ जी, बहुत दिनों से आई नहीं थी ना, तो मन कर रहा था।
0: अच्छा, तो आपने सोचा कि चलिए चलते हैं और वहीं से कॉल लगाते हैं। हाँ जी, बताएगा कैसे हैं सब?
1: बारिश हो रही है ना, तो मतलब जा तो रही थी आज, लेकिन बारिश की वजह से जा नहीं पाई।
0: अच्छा, अभी भी बारिश हो रही है?
1: हाँ अभी तो रुकी भी है, अच्छा, लेकिन पूरा दिन हो गया बारिश।
0: हाँ,
1: हो गया
0: है, आज
1: रही है लगातार,
0: कंटिन्यू बारिश हो रही है, वही ना बड़ा इशू हो रहा है। क्योंकि देखो हर चीज ना लिमिटेड ही अच्छी लगती है, अनलिमिटेड कोई भी चीज ठीक नहीं लगती है, और बारिश कभी कभी अच्छी लगती है। अब रेगुलर बारिश हो रही है, इंसान परेशान हो रहे हैं
1: बिल्कुल भी, क्योंकि पानी भी तो बहुत हो चुका है ना, तो इस टाइम मतलब बारिश की तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है।
0: लेकिन अभी ट्यूसडे तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है।
1: हाँ
0: आप बताइएगा, आज की शाम आपने कॉल किया है तो क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: जी तो आज मैं अपनी रेस्टी के लिए सॉन्ग सुनना चाहती हूँ।
0: हाँ जी बिल्कुल,
1: करने लगी है हम, इश्क करने लगी
0: है हम। ओ वाओ, बहुत ही प्यारा गाना है,
1: भी अच्छा लगता है।
0: तो आज यही रहने का प्लान है आपका?
1: नहीं अब तो मैं मतलब रात ही यहीं पर गुजारूंगी, सुबह को जाऊंगी घर अपने।
0: वही हम कह रहे हैं ना कि अब तो वहीं रुकने का प्लान होगा आपका।
1: हाँ जी,
0: चलिए अच्छी
1: तो
0: बात है।
1: घर
0: तो आज रात तो फिर आप सोने वाले नहीं हो, जब जहाँ लड़कियाँ मिल जाती है ना वहाँ बातें खत्म नहीं होती हैं।
1: जी जी बिल्कुल, क्योंकि रात भी मतलब बहुत लेट सोए हम।
0: हाँ।
1: और आज रात भी लेट ही सोएंगे।
0: ऐसा ही होता है जब हम अपनी बहनों के साथ अपनी दोस्तों के साथ होते हैं ना, तो इतनी ही बातें होती हैं, रात गुजर जाती है लेकिन बातें कम्प्लीट नहीं होती है।
1: नहीं बातें कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है, तो अच्छा लगता है,
0: अच्छा
1: बोलना
0: हंसना। और फिर ये टाइम भी ना बहुत यू नो स्पेशल होता है, क्योंकि फिर तो अपने घर ही रहना होता है ना, और कभी कभी ये मौका मिलता है तो दिल करता है कि ढेर सारी बातें की जाएं।
1: बिल्कुल भी, क्योंकि एंजॉय भी करना चाहिए इंसान को, है ना।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है, तो आप भी एंजॉय करो और एक प्यारे से गाना सुनो।
1: दीदी मैं एक शायरी सुनाना चाहती हूँ।
0: हाँ बिल्कुल सुनाइएगा। ओके सुनाइए।
1: गुलाब की पंखुड़ियों से भी नाजुक है मिजाज इनका, गुलाब की पंखुड़ियों से भी नाजुक है मिजाज इनका, जर्रा जर्रा महक उठता है जब आता है नाम उनका।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत शायरी है आपकी अफरोज।
1: दीदी अगर वो सुन रही हो तो वो कॉल करेंगी आज, वो कह रही थी गई थी अफरोज कॉल करना है जरूर आज।
0: अच्छा हम वेट कर रहे हैं।
1: हाँ
0: ओके, थैंक यू डियर कॉल करने के लिए, सुनाते हैं गाना, मोस्ट वेलकम। अभी तो हम सोने वाले नहीं है, अगर आप सोने वाले हो तो गुड नाइट, टेक केयर।
1: नहीं मैं तो अभी नहीं सोऊंगी, अभी 10 बजे के बाद ही सोऊंगी।
0: ओके एडवांस में गुड नाइट विश कर रहे हैं ना।
1: हाँ
0: ओके, सी मी डियर एंड ख्याल रखिए अपना और सुनिएगा ये गाना।
1: थैंक यू।
0: मोस्ट वेलकम, बाय। तो चलिए जी फ्रेंड्स, सुनते हैं अफरोज की रिक्वेस्ट पर ये प्यारा सा ट्रैक। और शो का नाम आपको याद है ना, गीत आपके नाम से। जी हाँ, आप भी कोई ट्रैक सुनना चाहते हैं, अपने सफर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, या अभी इस वक्त आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, कोई ऐसा गाना जो आपको इस मोमेंट को और स्पेशल बना दे, तो हमें कॉल कीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। मैं आपके साथ आपकी दोस्त खुशी।

0: Hey, hi everyone. Good evening. आप सभी का स्वागत है 89.6 पर. मैं आपके साथ आपकी दोस्त खुशी. और वक्त हुआ है अभी स्टूडियो की घड़ी में 9:16. और ये बेहतरीन ट्रैक अभी आपने सुना उदित नारायण जी और साथ में अलका याग्निक जी की बहुत ही मधुर आवाज में ये मधुर सा ट्रैक. शो का नाम है गीत आपके नाम से. अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से. कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं? हेलो.
1: हेलो, सबसे पहले खुशी जी को मेरा मोहब्बत भरा नमस्कार.
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर. क्या नाम है आपका?
1: मैम जिला रामपुर ग्राम जहांगीरपुर से मोहम्मद इफरत आप साथ कर रहा हूँ.
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप?
1: मैम बहुत अच्छी, आप कैसी हो?
0: हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ सर. आप बताइएगा.
1: मौसम कैसा है मुरादाबाद का?
0: मुरादाबाद का मौसम, हाँ जी, रिमझिम बारिश हो रही है फिलहाल. जब मैं स्टूडियो आ रही थी तब तो रुका हुआ था, बारिश नहीं हो रही थी, बट अभी का कुछ कह नहीं सकते हैं राइट नाउ.
1: इस बारिश में बुरे हाल कर रखे हैं, 6-7 दिन हो गए, पीछे छोड़ी नहीं रही भाई साहब बारिश.
0: हाँ जी, बारिश है. एग्जैक्टली राइट.
1: जो हमारे किसान भाई हैं काफी नुकसान पहुंच रहा है उन्हें, धानों की फसल है सब बह चुकी है मैम.
0: हाँ नहीं नहीं कहीं कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है ना, उस वजह से.
1: मैम 6-8 दिन में महीने में होती रहे, लगातार ही हो रही है, 6-7 दिन हो गए, कहाँ तक नुकसान नहीं होता.
0: बस सब प्रभु से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि उन्हीं के हाथ में सब कुछ है.
1: जी मैम, दुआ कर सकते हैं और क्या.
0: हाँ जी. और बताइएगा इर्शद जी, आप क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: मैम आज मूवी का नाम है जंगल लव. हाँ जी. बहुत ही प्यारा सॉन्ग है. हम तो थे अनजाने, हम दोनों ये न जाने. मैम आज के सॉन्ग में ये वाला सॉन्ग प्ले कर देना, ये वाला सॉन्ग कामिल भाई को डेडिकेट है.
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं ये ट्रैक आपको. थैंक यू कॉल करने के लिए.
1: थैंक यू. नमस्कार मैम.
0: नमस्कार आपको भी सर. तो चलिए दोस्तों सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक अनुराधा पौडवाल जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज. और मैं लौट कर वापस आती हूँ, तब तक आप भी मुझे कॉल कीजिएगा. हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896.

0: Hi everyone, good evening and a beautiful evening, happy evening Muradabad. शाम सुहानी है, मौसम दिलकश है और आपकी कंपनी इसे बना रही है और भी खास. Welcome to the most musical evening on FM Muradabad 89.6. मैं आपके साथ आपकी आरजी खुशी. और आज की खूबसूरत शाम है सिर्फ आपके नाम, क्योंकि जब साथ हो संगीत का तो हर शाम बन जाती है खूबसूरत एहसास. और बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुई है. हेलो.
1: हाय दी.
0: हाय, क्या नाम है आपका.
1: राबिया बोल रही
0: हूँ. जी बताइएगा राबिया, कैसे हैं आप.
1: मैं अच्छी हूँ मैम, आप कैसी हो.
0: हाँ जी मैं भी ठीक हूँ, आप बताइएगा. खांसी हो रही है आपको और बोल रही है मैं ठीक हूँ. हाँ
1: नहीं मैम, मैं तो ठीक हूँ माशाल्लाह से, मगर अम्मी को खांसी हो गई है.
0: अच्छा, आपकी मम्मा को खांसी हो गई है.
1: जी मेरे okay. पास में है ना, तो वो हंस रही है.
0: अच्छा, उनका अच्छे से ख्याल रखिएगा.
1: मैम अच्छे से ख्याल रख रही है.
0: वेरी गुड, लड़कियाँ बहुत ख्याल रखती हैं मम्मा का, मम्मा पापा का, सभी का, पूरी फैमिली का ध्यान अच्छे से रखती हैं.
1: जी मैम.
0: जी बताइएगा आप कैसे हैं फैमिली में और सब लोग.
1: सब अच्छे हैं.
0: ओके.
1: पर मम्मा खांसी हो रही है.
0: हाँ वो भी ठीक हो जाएंगे. जी नहीं अभी नहीं, एंड शो कंप्लीट करने के बाद डिनर करेंगी.
1: अच्छा
0: जी, आप बताइएगा क्या सुनना चाहती हैं आज की शाम.
1: चेहरा तेरा जब जब देखूं प्यार आए मुझे.
0: ओके okay, तो इस वक्त आपकी नजरों के सामने आपकी मम्मा बैठी हैं, उनका चेहरा देखकर आपको प्यार आ रहा है.
1: जी, और ये आपको साथी माँ है.
0: हाँ,
1: बड़ी सिस्टर बैठी है, मम्मा है मेरे पास.
0: और जब इतने प्यारे प्यारे चेहरे हम देखते हैं ना, तो सच में प्यार आता है.
1: जी मैम, तो मैं स्वादी हूँ, चेहरा ही देख के बता रही हूँ सॉन्ग.
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आप एंजॉय कीजिएगा, मैं सुनवाती हूँ ट्रैक आपको. ठीक है ओके, थैंक यू, मोस्ट वेलकम, बाय, टेक केयर. तो चलिए फिर फन करते हैं, ये प्यारा सा यू नो सॉन्ग अभी सुनते हैं राइट नाउ. एंड उससे पहले कुछ चैट ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आप भी मुझे कॉल कीजिएगा. हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896. मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी. रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए.
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी.
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना.
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना. आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त.
3: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा.
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई. जिग करो, स्वच्छता की जिद करो.

0: उत्तर प्रदेश अब निवेश प्रदेश के रूप में बना रहा है अपनी पहचान।
1: चौथे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से बढ़ेगा प्रदेश का मान।
0: इस महामंच पर 80 से अधिक देशों के 550 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार होंगे शामिल।
1: ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर इन मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले इस आयोजन में व्यापार के साथ दिखेगी यूपी की सांस्कृतिक विरासत की झलक। तो आइए जुड़िए और बनिए यूपी की सक्सेस स्टोरी का हिस्सा।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम। पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841।

0: दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुभ नाम है गीत आपकी नाम से और मैं आपके साथ आपकी खुशी। एंड हमारे नेक्स्ट कॉलर भी कनेक्ट हो गए हैं तो उनसे बात कर लेते हैं। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी बताइएगा, कैसे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, सब बहुत ही अच्छे हैं। बताइएगा आज की शाम आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? सो
1: आज की शाम सुनना चाहता
0: हूँ। ओके, ठीक है, गाना आपको सुनवा देते हैं सर।
1: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए श्रोताओ सुनते हैं ट्रैक, और आप भी कोई ट्रैक सुनना चाहते हैं, कोई हैपनिंग सा गाना, तो मुझे जल्दी से कॉल कीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सुनिएगा ये ट्रैक।

0: गुड इवनिंग है दोस्तों, बल्कि मैं आपका एफ मुरादाबाद 89.6 पर मैं आपके साथ आपकी खुशी। और अभी आपने ट्रैक सुना अनुराधा पौडवाल जी की आवाज में। और बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से। हेलो हाय गुंजन, कैसे हो आप? मैं भी ठीक हूँ। आपका कॉल बहुत जल्दी लग जाता है। हाँ कौन कौन लगा कर देता है आपको नंबर? आप लगाते हो या मम्मा लगा कर देती हैं आपकी?
1: खुद लगाती हूँ।
0: आपको शौक है कॉल करना, रेडियो पर बात करना अच्छा लगता है? ओके तो ये बताओ कब से ट्राई कर रहे थे आप नंबर?
1: पहले दीदी वो शादी सुनाना
0: सॉरी
1: शादी सुनाना चाहती
0: शायरी सुनाना चाहते हो? ओके सुनाइए गुंजन।
1: वर्क वाली यू वर्क प्ले वाली प्ले वाली यू प्ले, इसका मतलब हमें जब काम करना चाहिए तो काम करना चाहिए और जब हमें खेलना चाहिए तो खेलना चाहिए।
0: ओह नाइस, ये मम्मा ने याद कराई या आपने खुद की है?
1: खुद।
0: ओह वेरी गुड, गुड गर्ल। तो बताओ आज की शाम आप क्या सुनोगी? अच्छा ठीक है, सुनवाते हैं ये प्यारा सा ट्रैक आवारा गाने का। गुड नाइट, ठीक है। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक और लौट कर आती हूँ मैं। तब तक के लिए आपको कहीं नहीं है जाना, बने रहना है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी और एंजॉय कीजिएगा ये ट्रैक।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपके दोस्त आरजी खुशी। और आसमान में चांद तारे तो नजर आ रहे हैं, ये तो मुझे नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बादल जरूर नजर आ रहे हैं। और वक्त हुआ है अभी स्टूडियो की घड़ी में 9:56। शो का नाम है गीत आपके नाम से, एंड हमारी नेक्स्ट और लास्ट कॉलर भी कनेक्ट हो गई है, उनसे बात करते हैं। हेलो,
1: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
0: वेरी वेरी गुड इवनिंग, कैसे हाल है आपकी डियर?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: हाँ मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ, बात करके अच्छा लग रहा है।
1: थैंक यू, मुझे भी आपसे बात करके इतना ही अच्छा लगता है जितना आपको लगता है।
0: ये तो है,
1: मैं सोचती हूँ कि मैं डेली कॉल करूँ आपको, एंड सारे प्रोग्राम का टाइम मैं ही ले लूँ।
0: अच्छा जी। और बताइएगा लाइबा, कैसा मौसम है आपकी साइड?
1: मैम मौसम बहुत अच्छा है, मेरे यहाँ पे बारिश हो रही है, एंड मुझे बारिश का मौसम ऐसे भी बहुत पसंद है।
0: ओके, बारिश के मौसम में और क्या क्या पसंद है?
1: मुझे मैम पकौड़ी बनाना अच्छा लगता है।
0: बनाना और खाना?
1: वो तो बिल्कुल मैम लगता है अच्छा खाना।
0: ओके,
1: मैं पहले बनाती हूँ फिर सबको देती हूँ।
0: हाँ, सबको खिलाती हूँ फिर खुद भी खाते हो, है ना?
1: हाँ मैं तो बनाते बनाते ही खा लेती हूँ मैम, मेरी अच्छा। आदत रहती है।
0: अब क्या करें, वो इतनी टेस्टी यमी आप बनाते हो, खुद रह नहीं पाते हो, तो सोचते हो कि पहले मैं ही यू नो टेस्ट कर लेती हूँ कैसा बनाया है ना।
1: मेरी फैमिली भी यही चीज बोलती है कि लाइव तो बनाते बनाते ही खा लेती हूँ, उसको बाद में की जरूरत भी नहीं पड़ती।
0: हाँ अच्छी बात है, बताइएगा आज आपने कॉल किया है एंड क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: मैम मूवी का नाम है क्रिएशन, उसमें एक सॉन्ग है मोहब्बत बरसा देना सावन आया।
0: अच्छा, सावन तो मैडम जी चला गया है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन ये बारिश नहीं जाने का नाम ही नहीं ले रही है यार, इतनी बारिश हो रही है ना।
1: अरे मैं तो खुद चाहती हूँ मैम कि बारिश इतनी हो ना कि अलग ही वाइब आती है, मतलब मुझे देखकर इतना अच्छा लगता है ना जब बारिश होती है, और मैं उसको देखती हूँ तो मतलब मुझे बहुत खुशी फील होती है कि बारिश हो रही है, वेदर में टेम्परेचर चेंज हो रहा है।
0: हाँ ये तो है, लेकिन आपको पता है कंटिन्यू ज्यादा बारिश होना भी ठीक नहीं होता है, फिर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है।
1: वो तो मैं समझ सकती हूँ कि थोड़ा अगर बारिश ज्यादा होगी तो नुकसान भी हर चीज का वो तो होता है, जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज हो तो वो इफेक्ट करती है।
0: या एब्सोल्युटली राइट, तो ये
1: लेकिन थोड़ी सी बारिश चाहे बस इतना काफी है,
0: सुकून मिल जाता है ना बारिश को देखकर।
1: यस मैम, आपको भी तो अच्छा लगता होगा ना बारिश में, कभी आप भीगे हो?
0: मैं तो इवनिंग मॉर्निंग वीक कर ही आती हूँ, जब मैं ऑफिस के मेरे ऑफिस से आने का टाइम होता है ना तभी बारिश आ जाती है, तो फिर हल्का सा भीग भी लेते हैं।
1: आपको तो अच्छा फील होता होगा बहुत कि हाँ बारिश हो रही है और मैं जा रही हूँ, मतलब लड़की के तो ये ड्रीम्स होता है।
0: हाँ ये तो है, एंड कभी कभी तो मेरा मन करता है कि बारिश में मैं जम के नहाऊं डांस करूं, लेकिन क्या करूं ऑफिस का टाइम होता है तो नहीं कर पाते, और फिर इवनिंग में घर जाना होता है, फिर इवनिंग में नहा भी नहीं सकते वरना तबीयत खराब हो जाएगी।
1: वो सैटरडे में हो जाए बारिश, मैं दुआ करूंगी आप एंजॉय करें सैटरडे में खुल के।
0: कल सैटरडे में बारिश हुई थी लेकिन मैं इतना सोने में मशरूफ थी कि शाम में उठी।
1: हाँ मैम मैं संडे वाले दिन सोने में मशहूर रहती हूँ, मैं सोचती हूँ एक दिन ही मिला है मैं इसमें सो जाऊँ।
0: हाँ थोड़ा सा रेस्ट भी जरूरी, जरूरी होता है रेस्ट करना भी।
1: हाँ मैम आप वैसे भी पूरे वीक काम करती हो और यहाँ पे रहते हो तो मुझे लगता है कि एक दिन फ्री होना चाहिए, एंड बिल्कुल स्ट्रेस फ्री की कोई काम समय भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से करना है।
0: तो वो मेरे लिए सैटरडे होता है।
1: बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए एक दिन आपके लिए और आपकी लाइफ में, तो आप तो खुल के जीते होंगे सैटरडे वाले दिन कि हाँ सैटरडे आ रहे हैं, मैं फुल मोड में रहूंगी।
0: फ्राइडे की नाइट ना मेरे को नींद नहीं आती है खुशी की मारे कि कल सैटरडे है।
1: सेम मेरी तरह, यानी कि मैं भी ऐसी करती हूँ, जब मेरी छुट्टी लगने वाली होती है ना तो मैं पूरी रात जागती हूँ कि हाँ कल तो छुट्टी आराम से सोएंगे,
0: आराम से सोएंगे। हाँ बट पता है आपको जिस दिन हमारा वीकेंड होता है ना, छुट्टी होती है उस दिन हॉलीडे टाइम में ना कैसे टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है।
1: हाँ वो मतलब टाइम इतना कम होता है ना कि मतलब पूरा दिन ही पता नहीं चलता, फिर घर पे रहते हैं तो आप ये सोचते हैं कि फैमिली को टाइम दें,
0: हाँ फैमिली को टाइम दें,
1: फ्रेंड्स को टाइम दें,
0: बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती हैं।
1: आप तो मैनेज कर लेते हो, आपका नाम ही इतना क्यूट सा है खुशी, औरों को भी खुशी देते हो अपने आप को भी, तो मैनेज हो ही जाता होगा।
0: हाँ ये तो है, मैनेज कर लेते हैं हम, कभी कभी ऐसा होता है सिचुएशन हमारी कंट्रोल में नहीं होती है बट फिर भी करना पड़ता है, अब नाम का
1: लड़की का आदत होती है मैनेज करने की.
0: एग्जैक्टली. चलो बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब कल के लिए भी कुछ छोड़ देते हैं. अपना अच्छे से ख्याल रखना. ओके डियर.
1: बिल्कुल. नाम नहीं, नाम ले सकती हूँ मैं.
0: हाँ हाँ ठीक है. ओके.
1: मेरी बेस्ट फ्रेंड है अफरोज फातिमा, एंड स्पेशली उन्हीं के लिए ये सॉन्ग है.
0: ठीक है, एंजॉय कीजिएगा आप अपने दोस्त के साथ ये ब्यूटीफुल ट्रैक.
1: एंड गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स. बाय स्वीट हार्ट.
0: गुड नाइट, टेक केयर. एंड और क्या बोलूं, शब्द कम पड़ जाते हैं भाई जब हम आपसे बातें करते हैं. बाकी बस यही कहेंगे कि
1: आप मुझे पहले देते थे, आज वो भी नहीं मिल सकती है, तो मुझे अच्छा फील होगा. अच्छी गुड नाइट स्पेशल हो गई.
0: अच्छा, तो वो हम देंगे आपको टुमारो मॉर्निंग. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर. तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये ट्रैक. और अभी मुझे भी दीजिएगा जाने की अनुमति. मैं मिलूंगी आपसे टुमारो मॉर्निंग, ठीक है, सेम टाइम सेम जगह 10 बजे सुबह. और आपकी मेरी मुलाकात होगी, शायद उससे पहले भी हो सकती है. तब तक के लिए मैं आपसे कहूंगी कि आप भी अपने अपनों के साथ रहिए, खुश रहिए हमेशा. एंड बाकी इस मानसून में अपना विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है, अपने अपनों का भी, सीनियर सिटीजन का भी. एंड जो छोटे छोटे चाइल्ड है ना आपके घर में, छोटे छोटे बच्चे बहुत नटखट होते हैं, जितना उनको मना करते हैं ना कि वो पानी में मत जाओ, उतना ही वो पानी में भीगते हैं. उनको कंट्रोल करना, उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है. बट हाँ, मम्मा ये काम करने में सुपर होती हैं, कह सकते हैं कि वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती हैं. तो बस सबका ख्याल रखो, खुश रहो यार. और सुनते रहो एफएम मुरादाबाद 89.6. अभी मैं चलती हूँ, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, शुभ खैर, शुभ रात्रि.

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

अॼु समुझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के,

என்ன ஆயா இது?

0: గోళా చతుర బోల్లా
1: ఎక్క చతుర నార

0: उत्तर प्रदेश अब निवेश प्रदेश के रूप में बना रहा है अपनी पहचान।
1: चौथे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से बढ़ेगा प्रदेश का मान।
0: इस महामंच पर 80 से अधिक देशों के 550 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार होंगे शामिल।
1: ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर इन मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले इस आयोजन में व्यापार के साथ दिखेगी यूपी की सांस्कृतिक विरासत की झलक। तो आइए जुड़िए और बनिए यूपी की सक्सेस स्टोरी का हिस्सा।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।

आवश्यक सूचना 400 KV बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 KV उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: मुरादाबाद 8 सितंबर को जमेगी हंसी की महफिल।
1: रात में 10 बजे के बाद मैं निकलता हूँ, मेरा खुद लूटने का मन करने लगता है। एक वाइब है, एक माहौल है यहाँ की हवा में, मन कर जाता है।
0: तैयार हो जाइए क्योंकि आ रहा है वो इंसान जो कहता है कल की चिंता नहीं करता। रवि गुप्ता कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 8 सितंबर पंचायत भवन मुरादाबाद में शाम 4 बजे और रात 8 बजे। तो मुरादाबाद हंसने के लिए हो जाओ तैयार। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।

0: मुरादाबाद 8 सितंबर को जमेगी हंसी की महफिल।
1: रात में 10 बजे के बाद मैं निकलता हूँ, मेरा खुद लूटने का मन करने लगता है। एक वाइब है, एक माहौल है यहाँ की हवा में, मन कर जाता है।
0: तैयार हो जाइए क्योंकि आ रहा है वो इंसान जो कहता है कल की चिंता नहीं करता। रवि गुप्ता कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 8 सितंबर पंचायत भवन मुरादाबाद में शाम 4 बजे और रात 8 बजे। तो मुरादाबाद हंसने के लिए हो जाओ तैयार। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।

चंद्रमा सुबह पे जिस तरह शाम का वो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ ज्यादा।